शुभ प्रभात दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के भजनों के इस प्रोग्राम में। भजन क्यों किए जाते हैं, यूं तो सभी को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी भजन करने से जो मन की शांति हमें मिलती है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, सुबह सुबह जो हमारे चित्त को, हमारे स्वभाव को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन। आइए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं आज शंकर बाबा पापलकर से। सदियों पहले किसी ने कहा था कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अंधेरे में बैठे बैठे उसे बस कोसते रहते हैं, और दूसरे वो जो उठकर दिया जलाते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के वज्जर गांव में रहने वाले 81 वर्षीय शंकर बाबा पुंडलिक राव पापलकर को जब पिछले दिनों पद्मश्री देने की घोषणा हुई, तब एक बार फिर ये कहावत बस याद आ गई। पापलकर अंबादा संपत वैद्य मतिमंद मूक बधिर बेवारिस बालगृह नाम से एक अनाथालय चलाते हैं, जिसमें अपाहिज बच्चों की परवरिश और देखभाल की जाती है। लगभग 125 बच्चों की क्षमता वाले इस केंद्र में ज्यादातर बच्चियां हैं। पापलकर इन सब के पिता हैं, सामाजिक रूप से ही नहीं बल्कि वैधानिक रूप से भी। दरअसल नौजवान पापलकर 1970 के दशक से ही देवकी नंदन गोपाल नाम से एक मराठी पत्रिका निकाला करते थे। एक स्टोरी के दौरान उन्होंने

फौरन कोई कदम नहीं उठा सकते थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद 1990 में घटी दो घटनाओं ने उन्हें फिर से हिलाकर रख दिया। इन दोनों मामलों में जैविक माता पिता ने अपनी दिव्यांग संतानों को लावारिस छोड़ दिया था। पापलकर ने उसी साल ऐसे ठुकराए हुए बच्चों के लिए एक बाल गृह की शुरुआत कर दी। शुरुआत में मुंबई और नासिक की पुलिस ने दो विकलांग बच्चियों को उनके हवाले किया, पर अगले 5 सालों में ही इन नवजातों की तादाद 123 तक पहुंच गई, 98 बच्चियां और 25 लड़के। पापलकर ने उसके बाद हाथ जोड़ दिए, क्योंकि 18 साल के बाद भी ये विकलांग बच्चे उनके आश्रम में ही तो रहने वाले थे। ये कुछ अजीब सी बात है दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा। देश का कानून कहता है कि 18 साल की उम्र के बाद आश्रितों को अनाथालय छोड़ना होगा, मगर पापलकर उन्हें कैसे छोड़ देते, सोचिए तो। उन्होंने तो उन सबको अपनी संतान माना है। वो अच्छी तरीके से जानते थे कि एक बार जिस बच्चे को उसके घर वालों ने छोड़ दिया, वो पूरी उम्र लावारिस ही रहेगा। ऐसे में 18 साल के बाद अनाथालयों से निकलने की मजबूरी लड़कियों को वो दोजक में ही पहुंचा देती है, और लड़के सड़कों पर भीख मांगते हुए दुनिया के अंधेरों में खो जाते हैं। इसलिए पापलकर ने 20 लाख रुपए की सरकारी अनुदान को भी ठुकरा दिया, क्योंकि अगर वो उस अनुदान को ले लेते तो उन्हें सरकारी नियम मानना पड़ जाता। करीब करीब 25 एकड़ भूमि के बीचों बीच बने इस बाल गृह के मुखिया के तौर पर पापलकर के ऊपर 123 बच्चों के सुख सुविधा की जिम्मेदारी आ गई। ये सभी नवजात के रूप में यहां आए थे और अब सब करीब करीब 18 साल के ऊपर हो चले थे। सोचिए कितना कठिन होता होगा इन्हें संभालना, मगर पापलकर ने जिम्मेदारी उठाई तो एक उदार पिता की तरह इसे निभाया भी। हुआ यूं कि जो दृष्टि बाधित थे या गूंगे थे, उनमें से तो कई आज कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, और जो मानसिक रूप से अक्षम थे उनको कुछ इस तरीके से प्रशिक्षित किया गया कि वो उस बाल गृह के ही पेड़ पौधों की सिंचाई कर लेते हैं। उनके परिश्रम की बदौलत वहां 200 से ज्यादा किस्म की वनस्पतियां लहला रही हैं। बाल गृह की एक बच्ची माला ने तो पिछले साल महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ग्रुप बी और सी परीक्षा पास की। जन्म से ही अंधी इस बच्ची को उसके मां बाप ने जलगांव रेलवे स्टेशन पर कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। तब पापलकर ने उसे अपनाया और अनाथालय लाए। अमरावती के वीएमवी कॉलेज से कला स्नातक इस बच्ची माला ने 2019 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां शुरू की। उसकी प्रतिभा और प्रतिबद्धता को देखते हुए कॉलेज के कई शिक्षकों ने उसकी आर्थिक मदद भी की। नतीजन आज वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकी है। पापलकर के बाल गृह के अब तक 30 बच्चे बच्चियों की शादियां हो चुकी हैं। कई जोड़े तो माता पिता भी बन चुके हैं और उनकी संतानें बिल्कुल स्वस्थ हैं। दिसंबर 2020 में इस बाल गृह के एक जोड़े की शादी काफी चर्चा में आई। सूबे के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यहां की एक दिव्यांग बच्ची को गोद लिया और बड़े धूमधाम से उसका कन्यादान किया। जिला कलेक्टर ने पिता की भूमिका निभाई। इस विवाह का कर्मकांड तो एक पंडित ने पूरा कराया, लेकिन इस जोड़े को आशीष देने के लिए मौलवी, पादरी, ग्रंथी, जैन गुरु और बौद्ध भिक्षु भी उपस्थित थे। यही नहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लेकर नितिन गडकरी समेत महाराष्ट्र के कई मंत्री उस समारोह में आए। अंबादा संपत बेवारिस बाल गृह का खर्च दान दाताओं के चंदे और पापलकर के व्याख्यानों से मिलने वाली रकम से चल जाता है। यहां रहने वाले सभी विकलांगों की नियमित मेडिकल जांच कराई जाती है। सभी एक दूसरे के खाने पीने और दवा की खुराक का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो सब एक दर्द के रिश्ते से बंधे हैं। पापलकर कहते हैं कि शारीरिक रूप से पूरी तरह से सक्षम कर्मचारी इन विकलांगों की देखभाल ठीक से नहीं कर पाते।

क्योंकि वो उनकी भावनाओं से जुड़ ही नहीं सकते जैसे कोई एक विकलांग उनसे जुड़ सकता है। इसलिए इनके संरक्षण केंद्रों में हमें तरह तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं। इसलिए ये सारे विकलांग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं क्योंकि वो भावनात्मक तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वयोवृद्ध पापलकर की अब ये इच्छा है कि सरकार अपने कायदे कानूनों में संशोधन करे और अपनी अंतिम सांस तक ऐसे बच्चों को आश्रय गृहों में ही रहने की सुविधा दे। वरना सोचिए ना दोस्तों, हम उनके पुनर्वास का दावा कैसे कर सकते हैं? क्या होगा जब 18 साल के बाद ये बच्चे समाज में वापस जाएंगे?

रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के ये प्यारे प्यारे भजन। हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर कोई खतरा ना आए, बल्कि उनका सामना करने की हिम्मत हमारे अंदर आए।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

रात होने को थी। एक बस चलती हुई अचानक गहरी खाई की तरफ गिरने लगी। गनीमत थी कुछ ही दूरी पर एक पेड़ ने उन्हें बचा लिया, लेकिन कब तक? बस में बैठे सभी यात्रियों को अपनी मौत नजर आ रही थी। लगता नहीं था कि पेड़ उस बस को अधिक समय तक रोक पाएगा। सबके पास ईश्वर को याद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सब जान गए थे कि उनकी जीवन लीला जल्द ही समाप्त होने वाली है। गहरी खाई में कोई उनके मृत शरीर तक को उठाने वाला नहीं आ पाएगा। रह रहकर बच्चों की रोने की आवाजें भी बस में गूंज रही थीं। तभी उन्हें वही धोती वाले पंडित जी दिखाई दिए, जिनको मनहूस समझकर उन्होंने कुछ देर पहले बस से उतार दिया था। उनके साथ कुछ लोग भी थे। वे सब अपना अपना अलग अलग जत्था बनाकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े थे। रास्ते में बस में बार बार होने वाली खराबी के लिए लोगों ने उन्हें जिम्मेदार मानकर बस से उतार दिया था। बस की यह हालत देखकर पंडित जी अपने साथियों के साथ तुरंत हरकत में आ गए। उनके साथ जो भी रस्सियां और

सामान था। उनकी सहायता से वो एक एक करके यात्रियों को ऊपर लाने में जुट गए। जैसे तैसे भगवान की कृपा से उन्होंने जोड़ तोड़ करके बस में से सबको निकाल लिया। ये वही पंडित जी थे जो एक दिन पहले अचानक बस के सामने आकर बस यात्रियों से तीर्थ यात्रा पर खुद को ले जाने के लिए अनुनय विनय करके बस में बैठ गए थे। पर बस जब कई बार खराब होने लगी और रास्ता भी भटक गई तो लोगों को लगा इन सब मुसीबतों की जड़ जबरदस्ती बस में बैठे पंडित जी ही हैं। सबने बस एक मत होकर पंडित जी को बीच रास्ते में बस से उतार दिया। ये उन्हीं मनहूस पंडित जी की चमत्कारिक उपस्थिति और उनकी सूझबूझ का करिश्मा था कि बस के सभी यात्री सुरक्षित बच गए। जैसे ही स्थिति सामान्य हुई और लोग संयत हुए, उन्होंने आभार व्यक्त करने के लिए पंडित जी की खोज की, जो अचानक कहां चले गए किसी को नहीं पता। उनके सभी साथी भी नजर नहीं आ रहे थे। अब उनकी समझ में आया कि जरूर वो लोग उनके पूर्वज थे जो उनकी रक्षा के लिए ही बस में बैठे थे और बाद में उनके रक्षक बने।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, और आप हैं झाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

0: एक बार एक रेस्टोरेंट में कई बार देखा गया कि एक आदमी जो कि दरअसल भिखारी था वो आता था और भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता करके चुपके से बिना पैसे दिए खिसक जाता था। एक दिन जब वो खा रहा था तो एक आदमी ने चुपके से दुकान के मालिक को बताया कि ये भाई जी भीड़ का लाभ उठाएगा और देखिएगा बिना बिल चुकाए निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे बिना कुछ कहे जाने दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। हमेशा की तरह भाई ने इधर उधर देखा और भीड़ का लाभ उठाकर चुपचाप खिसक गया। उसके जाने के बाद उसने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि मुझे बताइए तो सही कि आपने इस व्यक्ति को भला जाने क्यों दिया। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, भाई आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने देखा है उसे और मुझे उसके बारे में बताया भी है। वो रेस्टोरेंट के सामने बैठा रहता है और जब ये देखता है कि भीड़ हो गई तो वो चुपके से खाना खाने आता है और खा के निकल जाता है। मैंने हमेशा उसे नजरअंदाज किया और कभी उसे रोका नहीं है, उसे कभी पकड़ा भी नहीं और ना ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ इसी भाई की वजह से है। कैसे? देखिए, वो मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए प्रार्थना ही करता रहता है कि जल्दी इस रेस्टोरेंट में भीड़ इकट्ठी हो तो मैं भी जल्दी से अंदर जाकर कुछ खा सकूं और निकल सकूं। और निश्चित रूप से जब वो अंदर आता है तो हमेशा यहां भीड़ ही होती है, तो ये भीड़ भी शायद उसी की प्रार्थना का असर है। शायद इसीलिए कहते हैं कि मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूं। क्या पता कि हम खुद ही किसी के भाग्य से खा रहे हों।
1: रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। बस एक बार प्रीत लगने की देर है, प्रभु से प्रीत लगते ही सारी दुनिया अपनी होती है। चलिए प्रभु से प्रीत लगाएं।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन FM रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, आज मैं आपसे प्यार, पॉलिटिक्स या वैलेंटाइन्स की बात नहीं करूंगी। आज मैं बात करूंगी एक फॉन्ट की। जी हाँ, एक फॉन्ट जो हम सभी यूज करते हैं, और बिलीव कीजिए, ये कहानी आपको किसी थ्रिलर से कम नहीं लगने वाली। लेट 1920s का लंदन इमेजिन कीजिए। सुबह होती थी, चाय के साथ एक चीज पर भरोसा सब करते थे, द टाइम्स न्यूज़पेपर। अथॉरिटी, रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी से भरा हुआ। अगर टाइम्स ने लिख दिया भाई, तो मतलब सच है। लेकिन एक आदमी था जो रोज पेपर तो पढ़ता था, बट इरिटेट हो जाता था। उसे आर्टिकल से प्रॉब्लम नहीं थी, उसे हेडलाइन से भी प्रॉब्लम नहीं थी, उसे प्रॉब्लम थी लेटर्स से, हाँ अक्षरों से। स्टैनले मॉरिसन, वो जर्नलिस्ट नहीं था, प्रिंटर भी नहीं था, आर्टिस्ट भी नहीं था, एटलीस्ट ड्रामेटिक पेंट स्प्लैटर्ड आर्टिस्ट टाइप तो नहीं ही था। वो था टाइपोग्राफ।

20s में कोई आदमी न्यूज़पेपर को क्रिटिसाइज करे, वो भी पब्लिकली, और फिर क्या हुआ? आज के जमाने में होता तो शायद ट्विटर वॉर बन जाता, लेकिन उस दौर में क्लास थी। द टाइम्स ने कहा, अच्छा आपको प्रॉब्लम है तो आइए सोल्यूशन दीजिए। इमेजिन दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। मॉरिसन को इनवाइट किया गया, एक नया टाइपफेस डिजाइन करो, ऐसा जो स्मॉल साइज में भी क्लियर हो, चीप पेपर पर भी एलिगेंट लगे, फास्ट प्रिंटिंग सरवाइव कर सके और डिग्निटी भी न खोए। अब ये सिर्फ डिजाइन का काम तो नहीं था, ये इंजीनियरिंग भी था, साइकोलॉजी भी था, फिलॉसफी भी था। मॉरिसन रेनेसो एरा के लेटर फॉर्म्स को स्टडी करते हैं, उनका बैलेंस, उनकी रीडेबिलिटी, उनकी सिमेट्री, लेकिन वो उन्हें कॉपी नहीं करते, वो उन्हें रिफाइन करते हैं, लेटर्स को थोड़ा नैरो करते हैं ताकि कॉलम में ज्यादा वर्ड्स आ सके, सेरिफ्स को शार्पन करते हैं ताकि इंक स्प्रेड होने पर भी क्लैरिटी बनी रहे, स्पेसिंग टाइटन करते हैं ताकि पेज क्लीन लगे। वो सिर्फ रिफाइन करते हैं और करते जाते हैं, हर स्ट्रोक कैलकुलेटेड, हर कर्व जस्टिफाइड। फिर आते हैं विक्टर लार्डेंट, टाइम्स के ड्राफ्ट्समैन। डिजाइन पेपर पर मेटल से आता है, लेटर्स को मेटल में कट किया जाता है, कास्ट किया जाता है, प्रेस पर टेस्ट किया जाता है, और फिर रिजेक्ट, फिर से ड्राइंग बोर्ड, फिर कास्ट, फिर प्रिंट, फिर रिजेक्ट, ओवर एंड ओवर एंड ओवर ओवर अगेन। क्यों? क्योंकि मेटल में जो सुंदर लगता था, प्रिंट में वो मेसी हो जाता था। ये वही स्टेज है जहां पर ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन मॉरिसन परफेक्शनिस्ट था। और फिर आई अक्टूबर 1932 की एक सुबह, द टाइम्स का एक नया इशू निकला, सेम पेपर, सेम हेडलाइंस, सेम जर्नलिस्ट्स, लेकिन लेटर्स एकदम नए, पेज क्लीनर था, वर्ड्स क्लियरर थे, कॉलम्स शार्पर थे, और रीडर्स, उन्होंने कुछ नोटिस ही नहीं किया। और दोस्तों, वही सबसे बड़ा ट्रायम्फ था। बेस्ट डिजाइन वो होता है जो चिल्ला चिल्लाकर अटेंशन नहीं सीख करे, वो क्वाइटली काम करता है। सालों बाद दुनिया को पता चला, हिस्ट्री का सबसे इन्फ्लुएंशियल टाइपफेस क्वाइटली लॉन्च हो चुका था। उसका नाम टाइम्स न्यू रोमन। हाँ, वही फॉन्ट जिसमें हम सब ने स्कूल प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, वही फॉन्ट जिसमें रिज्यूम्स बनाए जाते हैं, वही जिसमें लव लेटर्स टाइप हुए हैं, और वही जिसमें रेजिग्नेशन लेटर्स भी टाइप किए गए हैं। और शायद इस वक्त मैं जो कुछ बोल रही हूँ, आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, वो सभी उसी फॉन्ट में है। कभी सोचा है, एक फॉन्ट ने दुनिया का टोन डिफाइन किया, अथॉरिटी का लुक डिसाइड किया, सीरियसनेस को शेप किया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पर्सनालिटी दी, और लोगों को पता भी नहीं चला। इस कहानी का मॉरल, कभी कभी सबसे पावरफुल चीजें वो होती हैं जो स्पॉटलाइट में नहीं होती, जो क्वाइटली काम करती हैं, जो क्लैरिटी देती हैं, जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, और आप उन्हें नोटिस भी नहीं करते। तो अगली बार जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम करें या उसे ओपन करें और डिफॉल्ट फॉन्ट दिखे, तो सारा रिस्पेक्ट से देखिए। हो सकता है वो सिर्फ लेटर्स ना हो, हो सकता है वो डिजाइन की दुनिया का एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो। सोच के देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: आजकल डिलीवरी इतनी फास्ट हो गई है कि कभी कभी लगता है घर का दरवाजा खोलने से पहले ही राइडर बाहर खड़ा होगा। सर, आपने सोचा भी था ऑर्डर करने का? हम निकल पड़े। इंट्यूशन लेवल माँ से भी तेज।

दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, आप एक ट्रेन में बैठे हैं जापान की कंट्री साइड। विंडोज के बाहर ग्रीनरी ब्लर हो रही है, सिस्टम परफेक्ट, टाइमिंग परफेक्ट, सब कुछ डिसिप्लिन में चल रहा है। फिर अचानक ट्रेन रुकती है, डोर्स खुलते हैं, आप उतरते हैं और सामने ना कोई शहर, ना कोई मार्केट, ना कोई रोड, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, एक नदी, एक जंगल और ऊपर खुला आसमान। ये है जापान की सिरोमुराशी स्टेशन की कहानी। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो कहीं नहीं लेके जाता और जहां आप पैदल पहुंच भी नहीं सकते। आप सिर्फ ट्रेन से ही आ सकते हैं और ट्रेन से ही वापस जा सकते हैं। क्यों बनाया गया होगा ऐसा स्टेशन? प्रॉफिट के लिए? नहीं। टूरिज्म के लिए? नहीं। एडवर्टाइजमेंट के लिए? बिल्कुल नहीं। ये स्टेशन बना सिर्फ एक वजह से, ताकि लोग रुक सकें। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर एक चीज मेजर होती है। कितना प्रोडक्टिव हो, कितना कमा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो जीवन में। लाइफ एक डैशबोर्ड बन चुकी है, मीट्रिक्स और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के साथ। और उस दौर में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म क्वाइटली खड़ा है, जैसे कह रहा हो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ। सोचिए, ट्रेन आती है, आप उतरते हैं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई लाउडस्पीकर नहीं, कोई डिजिटल बोर्ड फ्लैश नहीं कर रहा, कोई एड नहीं कह रहा कि ये खरीदो वो खरीदो, और कोई नोटिफिकेशन नहीं कह रहा रिप्लाई करो भाई रिप्लाई करो। बस हवा है, पानी की हल्की सी आवाज है, पेड़ों का सांस लेना है, और आप, बस आप। ये स्टेशन ये याद दिलाता है कि कभी कभी एग्जिस्टेंस खुद ही इनफ होता है। जापान को हम एफिशिएंसी के लिए जानते हैं। बुलेट ट्रेन्स सेकंड्स की एक्यूरेसी से चलती हैं, सिस्टम्स हैं फ्लॉलेस और डिसिप्लिन है अनमैच्ड। लेकिन उसी प्रिसिशन के नीचे एक सॉफ्टनेस भी है। जापान में एक कॉन्सेप्ट है, मोनो नो अवेयर। इसका मतलब है चीजों के बीत जाने के बाद जो हल्की सी उदासी रह जाती है उसका एहसास। ये समझना कि ब्यूटी परमानेंट होती है और शायद इसीलिए प्रेशियस होती है, यही इसका सार है। जैसे चेरी ब्लॉसम जब पेड़ से गिरता है तो वो गिरना उसकी खूबसूरती है, सिरोमुराशी स्टेशन भी वैसा ही है। आप वहां हमेशा नहीं रह सकते, ट्रेन वापस आएगी, डोर्स बंद हो जाएंगे, लाइफ फिर से चल पड़ेगी। लेकिन उन कुछ मिनटों के लिए आप बेंच पर बैठकर बस देख सकते हैं नदी का फ्लो, हवा का मूवमेंट, आसमान का वो नीला रंग, और शायद अपने अंदर की नॉइस भी धीरे धीरे कम होती हुई महसूस होती है। सोचिए, एक रेलवे कंपनी ने डिसाइड किया कि वो ऐसा स्टेशन बनाएंगे जो उन्हें रिच नहीं बनाएगा, जो उन्हें आमदनी नहीं देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ये डिसीजन रहा कि ब्यूटी मैटर करती है, रुकना मैटर करता है, और साइलेंस, शांति सबसे ज्यादा मैटर करती है। आज के दौर में जब हर जगह हसल कल्चर का प्रेशर है, जल्दी चलो, ज्यादा कमाओ, थोड़ा सो, उस सभी के बीच में ये स्टेशन एक साइलेंट रिबेलियन है। ये कह रहा है कि लाइफ सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं होती, कभी कभी प्लेटफॉर्म भी होती है। हम सब अपनी अपनी ट्रेन्स में सफर कर रहे हैं, करियर की ट्रेन, रिलेशनशिप की ट्रेन, सोशल एक्सपेक्टेशंस की ट्रेन। कभी सोचा है आपने लास्ट टाइम कब बिना किसी रीजन के पॉज लिया था, कब बिना फोटो क्लिक किए सनसेट देखा था, कब बिना स्टोरी अपलोड किए कॉफी पी थी? सिरोमुराशी स्टेशन कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, वो एक फिलॉसफी है। वो याद दिलाता है कि हम सिर्फ मशीन्स नहीं हैं,
हम सब प्रोडक्टिविटी के यूनिट्स नहीं हैं, हम इंसान हैं, और इंसान को कभी कभी बस रहना होता है, बस होना होता है। शायद हमें जापान जाने की जरूरत नहीं, शायद हमें अपनी ही लाइफ में छोटे छोटे नो डेस्टिनेशन प्लेटफॉर्म्स बनाने की जरूरत है। 5 मिनट बिना फोन के, 10 मिनट बिना गोल के, थोड़ा वक्त बिना आउटकम के, क्योंकि आखिर में ब्यूटी का पर्पस सिर्फ देखा जाना होता है और एग्जिस्टेंस का सेलिब्रेशन सिर्फ महसूस किया जाना होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब लाइफ की ट्रेन भाग रही हो, कभी कभी एक ऐसा स्टेशन ढूंढ लीजिए जो कहीं नहीं जाता, हो सकता है वही आपको वापस खुद तक ले आए। जरा रुक के देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: पुराने बाजार में दुकानदार कहता था, अरे आज थके हुए लग रहे हैं, चाय पिला देता हूँ, पियेंगे? आज ऐप बोलता है, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस बिहेवियर यू मे ऑल्सो लाइक एंग्जाइटी।

तो जरा आंखें बंद कीजिए। सुबह का वक्त है, पुराने शहर की तंग सी गली है, पत्थर की दीवारें हैं, हवा में मसालों की खुशबू है, दूर कहीं चाय उबल रही है और आज दुकान के बाहर एक छोटी सी कुर्सी रखी है, बस एक कुर्सी, ना कोई बैनर, ना कोई डिस्काउंट बोर्ड, ना कोई फ्लैशी डिस्प्ले, सिर्फ एक कुर्सी। ये कहानी है पुराने सूख की, पुराने बाजार की, जहां हर सुबह दुकानदार अपनी दुकान खोलकर बाहर एक कुर्सी रख देते थे। वो कुर्सी फर्नीचर कम सिग्नल ज्यादा होती थी। अगर कुर्सी बाहर रखी है इसका मतलब है आज अभी तक कोई सेल नहीं हुई। अगर कुर्सी अंदर चली गई तो समझ जाइए दिन शुरू हो चुका है, पहली बोनी हो चुकी है, पहला ग्राहक आ चुका है। अब सोचिए, एक नया कस्टमर बाजार में आता है, एक दुकानदार उसे देखता है, लेकिन वो सिर्फ कस्टमर को नहीं देखता, वो दूसरी दुकानें भी देखता है, कौन सी कुर्सी अब तक बाहर है। अगर उसे दिखता है कि किसी और दुकान के बाहर कुर्सी अभी भी बाहर ही वेट कर रही है, तो हल्की सी मुस्कान के साथ वो कहता है, उधर चले जाइए साहब, उनके पास जो आप ढूंढ रहे हैं मिल जाएगा। सोचिए, अपना कस्टमर किसी और के पास भेजना, आज के जमाने में तो ये इम्पॉसिबल साउंड करता है, लेकिन वहां सूख में ये बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं थी, ये एक कम्युनिटी की बात थी, ये सर्वाइवल का शायद एक शेयर्ड मॉडल था। वहां कंपटीशन का मतलब था साथ साथ जीतना, आउटशाइन करना नहीं, अपलिफ्ट करना। सूख में प्रोस्पेरिटी एक रेस नहीं थी, एक जर्नी थी सभी के साथ। अब थोड़ा प्रेजेंट में आते हैं। आज हम ऐप खोलते हैं, एक क्लिक, एक ऑर्डर, फ्री डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी, 30 मिनट्स गारंटी, बेस्ट प्राइस गारंटी। कन्वीनियंस के नाम पर हम सभी ने स्पीड को वर्शिप करना एकदम शुरू कर दिया है, लेकिन इस स्पीड के पीछे क्या है? डिलीवरी राइडर जो ट्रैफिक में जान रिस्क पर डालता है, वो वर्कर जो मिनिमम वेज पर लॉन्ग शिफ्ट्स करता है, छोटी दुकान जो धीरे धीरे डिसअपीयर होती जा रही है। एल्गोरिथम्स डिसाइड करते हैं कि कौन दिखेगा कौन नहीं। वेंचर कैपिटल डिसाइड करता है कि किसकी ग्रोथ होगी, किसकी दुकान बंद होगी। और धीरे धीरे वो कुर्सियां गायब हो गई, वो हल्की सी मुस्कान, वो साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, वो बिलोंगिंग का एहसास, वो बातचीत का मजा, कॉमर्स का ह्यूमन फैब्रिक धीरे धीरे पतला हो गया। आज हम सक्सेस को मेजर करते हैं स्केल से, स्पीड से, फंडिंग राउंड से, लेकिन पुराने जमाने के बाजार में सक्सेस मेजर होती थी रिश्तों से। क्या आपने नोटिस किया है, जब आप लोकल दुकान पर जाते हैं, दुकानदार आपका नाम जानता है, आपके घर का एरिया जानता है, कभी कभी आपके बच्चों के एग्जाम्स भी याद रखता है। ऑनलाइन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहां से आते हैं, वो सिर्फ एक ऐप है और वो सिर्फ डेटा दिखाती है। सूख की कुर्सी एक सिंबल थी कि आज मेरी बारी नहीं आई तो कोई बात नहीं, कल आएगी, पर मेरे पड़ोसी की आज आ जाए, ये भी एक खुशी की बात ही है मेरे लिए। क्या हमने वो सोच खो दी है? ये कहानी सिर्फ बाजार की नहीं है, ये कहानी इंसानियत की है। हम सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं एक आइसोलेटेड आइलैंड की तरह, करियर की, रिलेशनशिप की, एम्बिशंस की। कभी कभी हमारी कुर्सी बाहर रह जाती है, दिन शुरू ही नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती, और तब घर का कोई पड़ोसी हल्की सी मुस्कान से अगर ये कह दे कि साथ हम आगे बढ़ा देते हैं तो क्या बात होगी? कभी सोचा है? शायद दुनिया थोड़ी और बेहतर हो जाए, शायद असली वेल्थ कभी गुड्स में थी ही नहीं, वो हाथों में थी जो उन्हें बेचते थे, वो दिलों में थी जो कस्टमर को गाइड करते थे, वो इनविजिबल टाइज में थी जो एक कम्युनिटी को बांध कर रखती थी। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी छोटी दुकान के पास से गुजरे,
या किसी लोकल वेंडर से खरीदारी करें, एक पल के लिए कुर्सी को याद कीजिए। वो कुर्सी जो कह रही थी, हम साथ जीतते हैं। और शायद हम सबको अपनी जिंदगी के बाहर एक छोटी सी कुर्सी रखनी ही चाहिए, क्योंकि बाजार सिर्फ सामान से नहीं, इंसान से बनता है। सोच कर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: आजकल तो ऐप इतनी स्मार्ट हो गई है कि कल मैंने बस अपना फोन उठाया ही था कि ऐप ने नोटिफिकेशन भेज दिया, मैम आप उदास लग रही हैं, आइसक्रीम भेज दें। और नीचे छोटा सा लिखा था, डिलीवरी पार्टनर ऑलरेडी इमोशनल सपोर्ट के साथ निकल चुका है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें।
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

0: हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ, कहीं का उल्लू का पट्टा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहें डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं। टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये तो साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त ना रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है, और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं, लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

0: तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: नमस्कार साथियों।
3: मेरा भी नमस्कार।
2: साथियों, राजस्थान की भूमि रणबांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
3: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
2: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियाँ ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
3: आप पूछेंगे, कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोग गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
2: तो चलिए हम बता देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
3: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
2: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खांट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
3: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
2: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरे ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
3: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी। सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
2: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
3: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
2: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली
3: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
2: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
3: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सिंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सिंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो।

0: मंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
1: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
0: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
1: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
0: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
1: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
0: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
1: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
0: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
1: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
0: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
1: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो।
0: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
1: सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
0: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
1: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई।
0: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
1: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
0: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
1: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
0: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
1: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
0: कालीबाई तुम्हें हमारा सलाम।
2: कालीबाई भारत की एक जनजातीय वीरांगना।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम

0: दुनिया रेडियो टंट्या भील 90.8 FM चाबुआ की आवाज।
1: सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता।
2: ये कहानी है प्राचीन यूनान की, लेकिन आइए कहानी सुनने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं यूनान की। आपको बता दें कि यूनान दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। अंग्रेजी में इसे ग्रीस भी कहते हैं।
3: ये देश भूमध्य सागर में स्थित बहुत से द्वीपों का समूह है। यहाँ के निवासियों को यवन या यूनानी कहते हैं। यहाँ की राजभाषा यूनानी है, अंग्रेजी में इसे ग्रीक कहेंगे। ग्रीक भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा है और यूरोप की लगभग सभी भाषाओं को इसने बहुत से शब्द दिए हैं। यहाँ की मुद्रा या करेंसी है यूरो। तो साथियों, लगभग सभी राष्ट्रों का कोई ना कोई राष्ट्र वाक्य होता है, जैसे हमारे देश का राष्ट्र वाक्य है सत्यमेव जयते। वैसे ही यूनान का राष्ट्र वाक्य है एलेफ्थेरिया थानाटोस, जिसका अर्थ है या तो स्वतंत्रता या मृत्यु, अन्य कोई विकल्प स्वीकार्य नहीं है।
2: यूनान की राजधानी है एथेंस, जहां से ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। उन दिनों आज की तरह ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक नहीं हुआ करते थे।
3: प्राचीन ओलंपिक खेलों में उन दिनों प्रथम आने वाले विजेता को जैतून की पत्तियों का मुकुट, द्वितीय आने वाले को जैतून के फलों की माला और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को जैतून के पत्तों की माला पहनाई जाती थी। तो साथियों, आइए अब सुनते हैं प्राचीन यूनान की ही एक बहुत ही प्यारी और प्रेरक कहानी। ये कहानी है प्राचीन यूनान के एक बहुत अच्छे चित्रकार की। उसके बनाए गए चित्रों की हर जगह बड़ी धूम थी।
2: एक बार की बात है, उसने एक नर्तकी का आदमकद चित्र बनाया। वो बेहद खूबसूरत चित्र था। जब इस चित्र की प्रदर्शनी की गई, तो समझिए कि तहलका मच गया। यूनान में हर जगह उस चित्र की चर्चा होने
4: लगी।
2: भीड़ की भीड़ उस चित्र को देखने के लिए आने लगी। ये इतना सुंदर और जीवंत चित्र था कि लगता था कि नर्तकी बस अभी बोल पड़ेगी।
3: नर्तकी का पूरा सौंदर्य इस पेंटिंग में मानो सजीव हो गया था। इस पेंटिंग की चर्चा उस देश के राजा के कानों में पड़ी। राजा भी ये प्रदर्शनी देखने आया और इस चित्र को देखकर वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने चित्रकार को बहुत से उपहार दिए।
2: इतना ही नहीं, राजा ने उस चित्रकार को शाही चित्रकार घोषित कर दिया। इस चित्र ने उस चित्रकार को रातों रात बहुत लोकप्रिय बना दिया। वो स्टार बन गया। इस चित्र की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल गई। अब वो बेनाम चित्रकार बहुत प्रसिद्ध हो गया था।
3: जहां भी वो जाता, लोग सम्मान से खड़े हो जाते, उसका अभिनंदन करते और उसकी प्रशंसा के पुल बांध देते थे।
2: कहते हैं कि सफलता का भूत कई बार सिर चढ़कर बोलता है। व्यक्ति के मन में अहंकार पैदा हो जाता है और वो अपने अलावा, अपने कौशल के अलावा कुछ और नहीं सोचता।
3: यही उस चित्रकार के साथ भी हुआ। अपनी कला से वो इतना प्रभावित हुआ कि अब वो दिन भर उस चित्र के सामने बैठा रहता था और उसे ही निहारता रहता था। वो बेसुध सा हो गया था। वो सबको यही बताता कि देखो, मैंने कितना महान काम किया है और मेरी बराबरी का और कोई कलाकार है ही नहीं।
4: क्या सुंदर चित्र बनाया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा चित्र कोई और कभी बना सकता है। शायद ऐसा चित्र कभी किसी ने नहीं बनाया है। वाह, कितनी महान कला है मेरे अंदर।
2: जी हाँ साथियों, इस मनोदशा में इंसान अपने आप से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे अपने सिवाय कुछ नहीं सोचता। अब तो ये होने लगा कि वो उस चित्र से उठते बैठते बात करता था। उसकी दीवानगी इतनी हद तक बढ़ गई कि वो अक्सर रातों को भी उठ जाता था और उस चित्र से बातें करने लगता था।
4: आइए देखने आइए। क्यों नहीं, देखिए है ना कमाल का चित्र। बिल्कुल, कितना सुंदर चित्र है ये। मैं जब जब इसे देखता हूं मुझे ऐसा लगता है ये और सुंदर होता जा रहा है। वाह, अथा सुंदर।
2: और सुबह जो भी उसे मिलता सबको यही बताता कि देखो मैंने कैसा महान कार्य कर दिखाया।
3: लोगों को शुरू में ये बात अजीब नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये तो असामान्य बात है। महीने बीत गए, अब उस चित्रकार ने दूसरी पेंटिंग्स बनाना भी छोड़ दिया था। वो बस अपने उसी चित्र को देखता रहता था।
2: एक दिन की बात है, वो सवेरे उठा और हर रोज की तरह अपनी उसी पेंटिंग को देखने चल दिया। उसे बहुत गहरा झटका लगा जब उसने देखा कि उसकी पेंटिंग पर किसी ने ढेर सारा रंग उड़ेल दिया है और किसी तेज चाकू से उस पेंटिंग को जहां तहां से काट दिया है। ये देखकर उस चित्रकार को मानो पागलपन का दौरा पड़ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा।
5: ये क्या हो गया? किसने किया है ये काम? किसने किया ये?
2: वो पूरे म्यूजियम में शोर मचाने लगा।
5: किसने किया
2: ये? सब सहम गए थे। अचानक पीछे से गंभीर आवाज आई।
6: मैंने किया है।
2: वो चित्रकार पीछे मुड़ा तो चौंक गया। पीछे उसके गुरुजी खड़े थे।
4: गुरुजी, आप? क्या ये आपने किया है?
6: हाँ, मैंने किया है ये काम।
5: लेकिन क्यों?
6: इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है। तुम अपनी कला से संतुष्ट हो गए हो।
5: लेकिन गुरुजी, वो मेरी सर्वोत्तम रचना थी। इससे अच्छा तो कुछ बन ही नहीं सकता।
6: नहीं, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया जिसे संपूर्ण कहा जा सके।
4: गुरुजी,
6: अब तुमने अभ्यास करना, कुछ नया बनाना सब छोड़ दिया है। अब तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुमने बनाया उससे अच्छा कुछ बन ही नहीं सकता। ये बात गलत है।
5: लेकिन गुरुजी, मैं जानता हूं कि अब मैं इस पेंटिंग से बेहतर कुछ बना ही नहीं सकता।
6: तुम्हारी यही सोच गलत है। तुम प्रसिद्ध तो हो गए हो, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुए। उठो, पेंट ब्रश लेकर अब फिर से शुरू हो जाओ। कुछ नया और बनाओ जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं।
2: दोस्तों, उस चित्रकार को बहुत पश्चाताप हुआ और फिर जब उसने दोबारा पेंट ब्रश उठाया तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक से एक ऐसी बहुमूल्य पेंटिंग्स बनाई जो आज यूनानी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। साथियों, सीखने का कोई अंत नहीं है।
3: जी हाँ, सीखते रहिए, प्रश्न करते रहिए, अवलोकन करते रहिए।
2: इस बात से संतुष्ट मत हो जाइए कि प्रकृति में या आसपास कुछ होता है। आप तब तक संतुष्ट न होइए जब तक ये न जान लें कि ऐसा क्यों होता है।
3: यदि आपने कोई काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, किसी विषय में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, संगीत के अभ्यास से बहुत निपुणता प्राप्त कर ली है, तो अब इतने में ही संतुष्ट ना हो जाइए कि अब और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है।
2: सीखते रहिए। किसी ने बहुत खूब कहा है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग।
3: यानी सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिंदगी कभी सिखाना नहीं छोड़ती।
6: सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
1: साथ है तो संभव है।
7: ये बात बहुत पुरानी है। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उन सब में गहरी मित्रता थी। वे सभी बड़े मेल प्रेम से रहते थे। जंगल में बड़े बड़े तालाब थे, जहां बहुत से जल जंतु भी रहा करते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा घना पेड़ था। उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं थीं, जिस पर बहुत से जंगली हंस बसेरा करते थे। वे हंस सुबह दाना पानी लेने के लिए उड़ जाते और शाम को उसी पेड़ पर वापस आ जाते। पेड़ के पास ही एक झील थी। उसके शीतल जल में वे खूब नहाते और किलोल करते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था।
2: एक दिन की बात है, जब पक्षी शाम को वापस आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ के पास एक छोटा सा पौधा उगाया है। उस पौधे में एक छोटी सी कोमल लता थी, जो पेड़ के तने से चिपकी हुई थी। उसे जब हंसों ने देखा तो आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक हंस, जो आयु में दूसरे हंसों से बड़ा था और बुद्धिमान भी, उसने कहा,
8: क्या तुम उस छोटे पौधे को देख रहे हो जिससे लता निकल रही है?
9: हाँ, देख तो रहे हैं, लेकिन इसमें कौन सी नई बात है?
10: ऐसे तो बहुत से पौधे निकलते रहते हैं।
11: ये तो कोई बड़ी बात नहीं है।
9: हाँ, बेकार ही ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता करते रहते हैं।
8: लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
10: अरे छोड़िए भी, हमारे पास बातें करने के लिए क्या अब यही बचा है?
9: हाँ, और कोई बात हो तो कहिए, वरना चुप रहिए।
11: मानते हैं कि आप हम सबसे बड़े हैं,
10: लेकिन हम भी कोई कम समझदार नहीं हैं।
9: हाँ।
7: सभी हंसों ने उस बुद्धिमान हंस की बात काट दी और उसका मजाक भी उड़ाया। खैर, दिन बीतते गए। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगा और उसकी लता पेड़ के तने का सहारा लेकर बड़ी होने लगी। अब वो लता इतनी बड़ी हो गई कि वो लगभग पेड़ की आधी ऊंचाई तक पहुंच गई।
2: उस पेड़ पर बसेरा करने वाले जंगली हंसों का झुंड रोज सुबह भोजन की तलाश में निकल जाता और शाम को हमेशा की तरह वापस आ जाता था। उन्हें वो पेड़ बहुत सुरक्षित लगता था, क्योंकि वो ऊंचा था और उसका तना इतना चिकना और सीधा था कि कोई भी इस पेड़ पर आसानी से चढ़ नहीं सकता था। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन की बात है, शाम को जब सारे हंस वापस आ गए तो बुद्धिमान हंस ने सबको बुलाया और कहा,
8: साथियों, आज मैंने एक बार फिर से उसी विषय पर बात करने के लिए आप सबको बुलाया है।
9: उसी विषय पर? अरे किस विषय पर?
8: उसी पौधे के बारे में जिस पर हमने एक दिन चर्चा की थी, लेकिन आप सब ने उसे टाल दिया था।
10: उफ हो, फिर वही बात? अरे ऐसा तो सारे जंगल में होता रहता है।
9: हाँ, पौधे उगते हैं, बड़े हो जाते हैं, आपको क्यों बेकार की चिंता हो रही है?
8: साथियों, मेरी चिंता व्यर्थ नहीं है।
9: ओहो,
8: ध्यान से देखो।
9: अरे देख तो रहे हैं,
8: वो लता पहले बहुत छोटी थी लेकिन अब धीरे धीरे बढ़कर वो इतनी ऊंची हो गई है कि हमारे पेड़ की डालियों तक पहुंच गई है।
7: बात आई गई हो गई, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। वो लता धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी और अब उसने एक मोटी रस्सी का रूप धारण कर लिया था। वो लता अब लगभग पेड़ की सभी शाखाओं तक पहुंच गई थी।
9: और वही हुआ जिसका डर था। एक सुबह जब सभी पक्षी भोजन की तलाश में निकल गए, एक बहेलिया वहां आया। उसने चुपके से कई बार देखा था कि उस पेड़ पर बहुत से जंगली हंस रहते हैं।
12: ये जगह ठीक है, यहाँ जाल बिछाता हूँ, यहाँ बहुत सारे पंछी फंस जाएंगे।
9: बहेलिया उस मजबूत लता की मदद से पेड़ पर चढ़ गया और अपना जाल बिछा दिया।
7: जाल बिछाकर वो चला गया। उसे पता था कि पक्षी अब शाम को ही आएंगे। शाम को पक्षी वापस आए। बहेलिये के बिछाए जाल पर उनकी नजर नहीं गई और जैसे ही वो डालियों पर बैठे, वे सब के सब उस जाल में फंस गए।
11: अरे कोई है, हमारी सहायता करो।
13: अरे हमें छुड़ाओ भाई, हमारी सहायता करो भाई।
8: अरे ये क्या हो गया?
13: फंस गए भाई,
10: हम सब जाल में फंस गए।
8: अरे ये कैसे हुआ? तुम लोग भी मेरी बात नहीं मानते हो ना? मैंने कहा था
13: ऐसे फंस गए हम लोग।
8: अरे क्या हो गया? मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुम लोग सुनते कहाँ हो?
9: वे सभी चिल्लाते रहे, पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन सब बेकार। संघर्ष करते करते वो थक गए। उन्होंने बुद्धिमान हंस से कहा,
13: हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपकी बात नहीं मानी।
10: काश हमने आपकी बात मानी होती तो आज का दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता।
13: अब आप ही कुछ कर सकते हैं। कोई उपाय बताइए।
8: शांत हो जाओ। मैंने बहुत पहले ही तुम सबको चेतावनी दी थी लेकिन तुम सब ने नहीं सुना। संकट के समय अब हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। ध्यान से सुनो, कल सुबह जब वो बहेलिया आएगा तो हम सबको ऐसा भी नहीं करना होगा मानो कि हम मर चुके हैं।
13: भला इससे क्या होगा?
8: कोई भी बहेलिया मरा हुआ पक्षी नहीं चाहेगा। वो एक एक करके हमें जाल से निकालकर भूमि पर फेंक देगा। जैसे ही वो आखिरी पक्षी को नीचे फेंकेगा और पेड़ से नीचे उतरेगा, इसी बीच हम सब एक साथ उड़ जाएंगे।
13: हाँ ये ठीक है,
10: उड़ जाएंगे हम सब।
7: और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन सुबह बहेलिया वहाँ आया। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि बहुत से पक्षी उसके जाल में फंस गए हैं, उसे बड़ा लाभ होने वाला है। वो तेजी से पेड़ पर चढ़ा और जाल के पास जा पहुँचा। लेकिन ये क्या,
9: बहुत से पक्षी फंसे हुए थे लेकिन वो निश्चल पड़े हुए थे। उनकी गर्दनें ढलकी पड़ी थी और कोई हरकत नहीं थी। उसने जाल को हिलाया भी लेकिन किसी पक्षी ने कोई हरकत नहीं की। बहेलिया बड़बड़ाने लगा,
12: अरे ये क्या, ये सब तो मरे पड़े हैं। हो सकता है इन्होंने कोई विषैला बीज खा लिया, पर अब तो कोई लाभ नहीं। अब क्या करूं, इन्हें नीचे फेंक देता हूँ, फिर जाल लेकर उतरना भी आसान हो जाएगा। हाँ ऐसा ही करता हूँ।
7: तो इस तरह बहेलिये ने एक एक करके पक्षियों को जाल से निकालना शुरू किया और वो उन्हें नीचे जमीन पर फेंकता चला गया। अब अंतिम पक्षी भी भूमि पर फेंका जा चुका था।
9: जैसे ही आखिरी पक्षी जमीन पर गिरा, योजना के अनुसार सभी उठे, अपने पंख फड़फड़ाए और पलक झपकते ही आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गए। बहेलिया हाथ मलता हुआ आश्चर्यचकित और ठगा सा उन्हें देखता रह गया।
7: आ... साथियों, प्रसिद्ध मोटर व्यवसायी हेनरी फोर्ड ने कहा था, यूनाइटेड वी स्टैंड बट डिवाइडेड वी फॉल। इसका भाव ये है, संगठित होकर हम सशक्त बनते हैं और विभाजित रहकर निर्बल। यानी
14: साथ है तो संभव है।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
15: वो आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
7: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
7: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगीं और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
16: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
17: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
16: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
17: यस।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
7: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
2: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
12: सू
16: जी,
12: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
16: जी हाँ।
12: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
16: जी डॉक्टर साहब।
12: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
16: मैं पूछती हूँ।
7: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
2: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
18: 15, 40,
16: क्या?
7: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
18: 13, 12, 11, अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। सू
17: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
18: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9। ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए।
16: क्या कम हो गए हैं?
18: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ। सू,
7: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था, जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
16: जॉन्से, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
18: 6, now it's 6, 5, 4। ओह,
16: जॉन्सी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
18: Only 4।
16: मेरी तरफ देखो
18: सू, ओनली 4। ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
16: क्या 3 बचे हैं? What's 3, dear?
18: 3 पत्तियां।
16: पत्तियां?
18: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
16: हाँ, हाँ।
18: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
16: क्या लगता है?
18: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
16: क्या जॉन्सी?
18: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
16: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
18: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
16: हाँ
18: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
16: जॉन्सी,
7: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
17: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
7: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
17: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
19: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ, जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
7: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए, तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
17: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
18: 2, अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
7: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
19: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा, मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
7: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
17: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
18: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
7: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
17: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
18: सू मेरी दोस्त।
16: हाँ जॉन्सी।
18: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
7: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
18: सू।
16: हाँ जॉन्सी।
18: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
16: हाँ बिल्कुल,
18: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
16: बिल्कुल जॉन्सी।
18: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
16: पत्ता?
18: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
16: हाँ,
18: हाँ,
16: मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
18: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
16: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
18: हाँ, हाँ।
17: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
19: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
17: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वहीं था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
16: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?

0: बेहतर।
1: ये लो कॉफी पियो।
0: थैंक यू
1: जॉनसी। एक बुरी खबर भी है।
0: क्या हुआ?
1: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
0: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
1: हाँ।
0: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
1: हाँ वही।
0: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
1: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
0: ओह गॉड,
1: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
0: क्या?
1: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
0: क्यों नहीं गिरा?
1: हाँ,
0: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सु?
2: जॉनसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
1: जॉनसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
0: ओह,
1: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
0: पेंटिंग?
1: हाँ।
0: कैसी पेंटिंग?
1: जो पत्ता तुम देख रहे हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
0: ओह, तो वो पेंटिंग है?
1: हाँ।
0: असली पत्ता नहीं है?
1: नहीं।
0: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
1: हाँ जॉनसी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
0: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा और सो उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉनसी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सो।
1: हाँ, उन्होंने बना दिया।
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सो, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सो।
1: हाँ
0: मास्टरपीस।
1: हाँ
0: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
3: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉनसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
3: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष,
2: लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए खेती किसानी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम खेती बाड़ी।
3: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में किसान साथियों के लिए हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं और खास तौर पर उन छोटे छोटे सेगमेंटों पर हम बातचीत करते हैं जो हमारे झाबुआ जिले के किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि खेती बाड़ी करना कितना मुश्किल हो गया है आज के इस जमाने में, क्योंकि इसमें लागत बहुत ज्यादा लगती है और मुनाफा बहुत कम होता है। और अक्सर देखा जाता है कि पथरीली इलाका, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो वहां पर पथरीला इलाका है और ऐसे में किसानों को खेती करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है।
2: बिल्कुल, तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान को लेकर रेडियो टांटिया भील आप सभी के लिए लेकर आया है ये खास कार्यक्रम खेती बाड़ी का।
3: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम तीन सेगमेंटों पर बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सेगमेंट हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सेगमेंट होगा कि हमारे किसान साथी मिश्रित खेती के बारे में किस तरीके से उनका रुझान है और किस तरीके से हमारे किसान साथी मिश्रित खेती कर सकते हैं, खासतौर पर पथरीले इलाकों में। अगर देखा जाए, यदि मिश्रित खेती पर हमारे किसान साथी ध्यान केंद्रित करें तो आने वाले समय में वो इससे लाभ ले सकते हैं। और दूसरा सेगमेंट होगा कि पशुपालन का हमारा सेगमेंट रहता है। पशुपालन पर भी हम खास तौर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान अपने पास में लगा हुआ है, गुजरात भी पास में लगा हुआ है, तो ऐसे में हमारे किसान साथी कौन सी नस्ल की हमारे गाय भैंस पालन कर सकते हैं, खासतौर पर गायों पर विशेष तौर पर आज ध्यान केंद्रित कराएंगे। और तीसरा सेगमेंट होगा कि अब मई माह में किस तरीके से पशुपालन की देखरेख हमें किसान साथी कर सकते हैं। और चौथा, हम अपने सफल किसान की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि हम ऐसे किसानों की कहानी लेकर आते हैं, उनसे सीखकर हमारे किसान साथी अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी में बदलाव कर सकते हैं।
2: बिल्कुल साथियों, तो आइए हम देर नहीं करते हैं और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम।
3: और लेकिन इस कार्यक्रम को सुनने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष
2: और आपकी आरजे वर्षा के साथ में।

0: साथियों, अभी आपने सुना इस वीर गाने को और आगे हम आपको बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं पहले सेगमेंट की ओर
1: और इसमें जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मिश्रित खेती को कर सकते हैं और किस तरीके से मिश्रित खेती से लाभ कमा सकते हैं। यदि हमारे किसान साथी इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे किसान साथियों की आय में जरूर वृद्धि होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे झाबुआ जिले में जो KBK बना हुआ है या फिर कृषि विभाग की जो ऑफिस है वहां पर जाकर हमारे कृषि विस्तार अधिकारियों से, वैज्ञानिकों से सलाह और संपर्क कर सकते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, सुनते हैं इस कार्यक्रम में मिश्रित खेती के बारे में।
2: कम जोत में भरपूर फसल लेने के लिए किसान मिश्रित खेती का सहारा लेते हैं। इस तकनीक में मुख्य फसल के साथ सहायक फसलें लगाई जाती हैं। इसमें किसान 3 से 4 फसलें तक ले सकते हैं। इस विधि की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो जाता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का सही इस्तेमाल लिया जा सकता है। मई माह से खरीफ फसलों की बुआई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किसान खरीफ की फसल में एक साथ 3 से 4 फसलें उगा सकते हैं, जिनकी पैदावार कम पानी में हो जाती है। जैसे तिलहन, अनाज, दलहन और एक मसाले वाली फसल लगाकर एक साथ 4 फसलें आसानी से ले सकते हैं। हालांकि मिश्रित खेती को जमीन के बड़े हिस्से में एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े हिस्से में फसलों की देखरेख थोड़ा कठिन काम होता है। इसलिए जब भी किसान मिश्रित खेती की शुरुआत करे तो जमीन के छोटे हिस्से में ही करे। इस तरह देखा जाए तो मिश्रित खेती छोटी जोत के किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। किसान बुआई करने से पहले फसल का चयन अपने स्थान के हिसाब से करें। जैसे तिलहन में मूंगफली और तिल, दलहन में मूंग, उड़द और अरहर, ज्वार, बाजरा, सूखा सहन करने वाली धान की प्रजाति जैसे सहभागी, हल्दी व अदरक। मिश्रित खेती में बुआई करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। किसान सीड ड्रिल विधि से तिलहन फसल में मूंगफली या तिल की बुआई करे। किसान अपनी सुविधा के हिसाब से भी फसल का चयन कर सकते हैं, जैसे मूंग और उड़द दोनों या किसी एक दलहन फसल या फिर कम पानी में होने वाली धान का भी चुनाव किया जा सकता है। सीड ड्रिल विधि से बुआई करने के भी लाभ है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में फसल को वातावरण से पोषक तत्व मिलते रहते हैं, खेत में बीज कम लगता है और उत्पादन ज्यादा मिलता है। सीड ड्रिल से बुआई करते समय दूसरी तरफ से लौटती सीड ड्रिल की दूरी 1.5 से 2 फीट का स्थान छोड़कर बची जगह की पहली कतार में अरहर जैसी फसलें लगाई जा सकती है, क्योंकि इस तरह की फसलें स्थान ज्यादा लेती है और लंबे समय तक खेत में बनी रहती है।

0: यानी फसल से करीब 2 फीट की दूरी पर मसाले फसलें लगाई जा सकती है, जैसे हल्दी और अदरक। ये मसाला फसलें 8 से 10 माह में तैयार हो जाती है। इनकी बुआई का काम हाथ से करना उचित होता है। इसके बाद सीड ड्रिल द्वारा छोड़ी गई हर अगली कतार में ऊंचे बढ़ने वाले अनाज जैसे बाजरा और ज्वार या तिलहन फसल, सूरजमुखी फसल लगाना चाहिए। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और खेत के हर हिस्से का समुचित उपयोग भी हो सकेगा।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: रेडियो टांट्या भील सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजी वर्षा।
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और इस वक्त सुन रहे हैं आप झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 FM।
0: जी हाँ साथियों, और अभी हम सुन रहे थे मिश्रित खेती के बारे में। आगे हम आपको और भी जानकारी देने के लिए हाजिर हैं और ले चलते हैं आपको कि कैसे आप पशुपालन करके अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं।
1: तो आइए दूसरा कंपोनेंट हम सुनते हैं और इसमें जानते हैं पशुपालन किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से गाय का रख रखाव और साथ साथ में मई माह का कैलेंडर पर भी विशेष तौर पर चर्चा करेंगे और इसमें जानेंगे किस तरीके से हम अपने जो हमारे गाय भैंस हैं उसका मई माह में, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, किस तरीके से उनका देख रेख कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस चर्चा को।
2: हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देसी गाय पालन करके पशुपालन में बेहतर मुनाफा कमाया जाता है। देसी गाय पालन में गिर गाय हर पशुपालक की पहली पसंद है। अर्धशुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक गिर गाय से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। उभरा हुआ सिर, अर्धचंद्राकार सींग, लंबे घुमावदार कान, पूर्ण विकसित थन इस गाय की मुख्य विशेषता है। इसका नाम गुजरात के गिर वन से लिया गया है जो कि इसका उद्गम स्थान है। गिर गाय मुख्य रूप से लाल रंग की होती है। लाल रंग लगभग 80% में पाया जाता है। गिर गाय राजस्थान में भी काफी लोकप्रिय हो रही है। इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की नज़र से। गिर गाय राजस्थान की जलवायु के लिए अनुकूलित, इसमें गाभिन होने की ज्यादा क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेहतर होती है। गिर गाय का दूध काफी पौष्टिक होता है। इस नस्ल में प्रजनन संबंधी समस्याएं नहीं आती। देसी गाय पालन से जहां दूध की उपलब्धता बनी रहती है, वहीं खेती के लिए जैविक खाद और जैविक कीटनाशक आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिससे खेती में भी अच्छा लाभ लिया जा सकता है। आहार और आवास के साथ साथ पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। समय समय पर पशु के स्वास्थ्य की जांच करते रहे।
0: साथियों, अभी आपने सुना इस रिपोर्ट को जिसमें हमें बताया गया कि पशुपालन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे हम इनसे अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। आगे आपको कार्यक्रम में हम सुनवाने वाले हैं अपने विषय विशेषज्ञ से और ज्यादा जानकारी इस विषय को लेकर, लेकिन उससे

0: पहले यहाँ पर हम एक गीत के साथ मनोरंजन करते हैं।
1: बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ
0: और आपकी आरजे वर्षा के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: भारत के देसी दुधारू नस्लों में गिर गाय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मूलतः गिर गायें गुजरात के गिर जंगलों तथा राजकोट के जिले के आसपास में इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है और गिर गायें अपने कई गुणों के कारण बहुत ही विशेष स्थान रखती है। जैसे अधिक गर्मी सहन कर सकते हैं, दूध उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है तथा पहली बार जो बछड़ियाँ गाभिन होने की उम्र है वो भी इसमें बहुत ही सामान्य है। साथ ही जो इनके जो लक्षण हैं गिर गाय के वो किसी अन्य नस्लों से बिल्कुल अलग हैं। आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये गिर गाय हैं या नहीं है। इस गाय की एक बड़ी विशेषता ये है कि ये गाय चरने के बाद अगर आप दिन में थोड़ी चराई करा दें तो इनकी दूध उत्पादन क्षमता में बहुत ही आप देखते हैं बहुत ही वृद्धि पाई जाती है। ऐसी इस नस्ल का जो इसके लक्षण हैं जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो भारत की दुधारू गायों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साथ ही गिर गायों में जो दूध देने की क्षमता है वो देसी गायों में बहुत ही विशेष स्थान रखती है। गिर गाय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन गायों का सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देसी गायें हैं और भारत की जो जलवायु है खासकर राजस्थान की जलवायु है उसमें पूर्णतः ये इनके अनुकूल हैं। साथ ही ये गायें अपने उत्पादन क्षमता को जैसे गुजरात में जो उत्पादन क्षमता है वही हमारे यहाँ इसकी उत्पादन क्षमता है। साथ ही इनके जो गाभिन होने की जो उम्र है या इनके मान लीजिए जो इनके ब्रीडिंग है वो बहुत ही लगातार है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है और यहाँ की आब हवा और यहाँ के वातावरण के बिल्कुल अनुकूल है। राजस्थान में बहुत से किसान आज गिर गाय को रख रहे हैं जिससे इनका संरक्षण हो रहा है और साथ ही आने वाले समय में गिर गाय को और अधिक महत्व मिलेगा और अधिक बढ़ावा मिलेगा क्योंकि गिर गाय का जो दूध है वह बहुत ही स्वादिष्ट और सभी को भाने वाला है। और कैलोरी की बात करें, विटामिन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट की बात करें, इसका जो दूध है वो बहुत ही सुपाच्य तथा स्वाद वाला है। गिर गायों की आज के समय में जो किसान रख रहे हैं जिसका बड़ा कारण है कि इनमें कोई भी प्रजनन संबंधी समस्या नहीं है, बीमारी की समस्या नहीं है। साथ ही उत्पादन जो उत्पादन क्षमता है वो किसान के लिए बहुत ही उनके लिए लाभकारी है।
2: किसान भाइयों बहनों आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर।
3: मई माह का पशु कैलेंडर 2021। मई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें।

0: रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने पशुपालन कैलेंडर और साथ साथ में जो हमारे विषय विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपने पशुओं की देखरेख करना चाहिए, कौन सी नस्ल हो हमारे किसान पालना चाहिए और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए इस कार्यक्रम में आगे हम सुनते हैं सफल किसान की कहानी। लेकिन सफल किसान की कहानी से सुनने से पहले एक छोटा सा विराम लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM अपना रेडियो अपनी बात है।
2: आधुनिकता की दौड़ में ज्यादातर किसान रासायनिक खेती से क्षणिक लाभ लेकर नुकसान का सामना कर रहे हैं। रासायनिक खेती से सेहत व पर्यावरण पर दुर्गामी नकारात्मक असर भी देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि किसान एक बार फिर जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। जैविक खेती से प्रकृति से सीधा तालमेल बैठाना आसान होता है, इससे खेती में आ रही कमियां दूर होती हैं और फसल में अच्छा खासा इजाफा मिलता है। सीकर के किसान बाबूलाल जैविक खेती करके अपने खेत की तकदीर बदलने में दिन रात प्रयास में जुटे हुए हैं। बाबूलाल पहले परंपरागत खेती किया करते थे, जिसमें सामान्य तरीके से खाद और उर्वरक का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उत्पादन में मिल रही कमी उन्हें जैविक खेती की तरफ ले आई। वो बताते हैं कि पिछले 4 साल से वो जैविक खेती कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद और जैविक कीटनाशक मिलता रहे, इसके लिए बाबूलाल ने 4 देसी गाय भी पाल रखी है। राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में कैसे सफल खेती कर रहे हैं और पानी की मुश्किलों को कैसे आसान बना रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं।
3: मैं किसान हूं, पारंपरिक खेती करते हैं और धीरे धीरे क्या है वो जैविक खेती के बारे में सुना है ऐसे लोगों से कैसे करते हैं क्या करते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को विचार है कि अपन भी खेती करेंगे। तो मैंने ऐसे बजाज ट्रस्ट की तरफ से थोड़ा उनसे मिला, उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ बताया कि ऐसा करो, और तो इस हिसाब से मैंने धीरे धीरे जीवामृत घन जीवामृत 10 परनियर वगैरह बनाना काम चालू किया। अभी क्या मैं 4 साल से खेती कर रहा हूँ, उन्होंने मैंने 4 साल से कुछ भी नहीं डाला, खाली जीवामृत घन जीवामृत और ये सब डाल के बना रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है और उनकी तरफ से हमारे को क्या प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है। धीरे धीरे ड्रिप इरिग्रेशन के बारे में ड्रिप लगाया तो उसमें कुछ सहयोग मिला।
4: राजस्थान में पानी की कमी है,
3: राजस्थान में ऐसे पानी की यहाँ सूखा है रहता है, तो पानी की जो क्या बूंद बूंद सिंचाई से पानी की बचत उसके हिसाब से, और फिर क्या वो बोला कि अपने देसी खेती करते हैं तो गाय चाहिए, तो हमने क्या वो गिर गाय खरीदी। अभी हमारे पास 3-4 गायें हैं, तो उनसे हम क्या देसी गाय से गोबर से गोमूत्र से उनको इकट्ठा करते हैं, उनसे जीवामृत घन जीवामृत 10 परनियारक वगैरह सब बनाते हैं, और तुरंत फुरुत खाद जो अपने हुमस इसके लिए बनाते हैं, जड़ों के लिए बनाते हैं, और इसमें बढ़िया रिजल्ट है। जो भी खाते हैं अपन तो अपन को भी शुद्ध मिलता है, गायों के लिए चारा शुद्ध मिलता है, तो उनसे क्या एक नई सिस्टम से अपना काम हो रहा है,
4: नई तकनीक और नई पद्धति
3: से अपना ऐसा हो रहा है और इसमें रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है।
2: बाबूलाल मानते हैं कि जैविक खेती से हमें मिलने वाली उपज शुद्ध और सेहतमंद होती है, जिससे मिलने वाला पशु आहार भी शुद्ध होता है, जो पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। खुले खेत में खेती के साथ साथ बाबूलाल पॉली हाउस में भी खेती कर रहे हैं, जिसमें वो टमाटर और खीरे की फसलें लेते हैं। इसके अलावा उनके खेतों में नींबू वर्गीय पौधे, गोभी वर्गीय सब्जियां, तरबूज और टमाटर जैसी फसलें लगी हुई है। जैविक तरीके से तैयार की गई फसलों का उन्हें बाजार दाम भी अच्छा मिलता है। वो कहते हैं कि उनकी उपज के लिए उन्हें ग्राहक नहीं तलाशने होते, क्योंकि उपज की गुणवत्ता ग्राहकों को खुद उनके खेत तक ले आती है।
3: सब्जी लगाने का तो ऐसे अपन बढ़िया उसके भाव में ऊंची रेट में बिक जाती है, अपना माल बिल्कुल लंबे टाइम तक 2-3 दिन तक खराब नहीं होता है, उसी हिसाब से जैविक रासायनिक वाला 2 दिन में सड़ जाते हैं सब्जी वगैरह, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। और अपने क्या तुरंत बिक जाते हैं, इसे माल भी गिराएगी भी अपने कहते हैं यार आपकी चीज बहुत अच्छी है हमको आपका माल ही चाहिए, इसी तरह वो भी ले देते हैं। मंडी में अपने भाव तेज रहते हैं, एक दो रुपया सबसे अलग बिकते हैं और क्वालिटी के हिसाब से भी सब टेस्ट वगैरह भी सब अच्छे होते हैं ना अपने आप बिक जाते हैं। किसानों को सलाह ये देंगे कि आगे चल के अपन को जैविक खेती की तरफ चलो सब, और वैसे भी करना है इतनी बीमारियां वगैरह फैल रही है तो उसके हिसाब से अपन को अपने स्वस्थ रहना है सुखी रहना है तो जैविक खेती अपनाओ और उसमें जैविक खेती से स्वास्थ्य सुधरेगा, देश सुधरेगा, अपन आगे बढ़ेंगे सब यही होगा।
2: बाबूलाल जैसे किसान जैविक खेती को अपनाकर अपने खेत ही नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथियों अभी आपने सुना सफल किसान की कहानी को कि किस तरह से उन्होंने खेती बाड़ी से अपनी आय को दोगुना किया है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं।
1: और साथियों एक चीज और बता देना चाहते हैं क्योंकि हम कार्यक्रम जो लेकर आते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी के माध्यम से हम आपको बता देना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातें जरूरी हैं और हमारे किसान साथियों के लिए आय को दोगुना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है, खासतौर पर उन किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके पास थोड़ी जमीन है और वो भी पथरीली इलाका उनके पास है और पानी रुकता नहीं है। तो सबसे पहले उनको हम बताने देना चाहते हैं कि अब आने वाले बरसात के दिनों में हम किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा झाबुआ जिले में समस्या है पानी को लेकर, तो किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, खेत का पानी खेत में कर सकते हैं, सरकार की स्कीम्स का सरकार की योजना का फायदा लेकर हम अपने आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में ऐसी खेती को हम विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान साथी ऐसी खेती करें, ऐसी जैविक पद्धति से खेती करें जिसमें कम पानी लगता हो, उत्पादन अच्छा होता है, लागत भी कम लगती है, उत्पादन अच्छा होता है। तो ऐसे किसान साथी जो हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं तो अधिक जानकारी के लिए हमारे कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाकर संपर्क कर सकते हैं, साथ साथ में केवीके भी है वहां पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। साथियों अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का, तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 94-25-41-36-03, इस नंबर पर कॉल करके आप हमें बता सकते हैं।
2: तो साथियों जी हाँ साथियों तो आज का ये कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा दिए गए नंबर पर फोन करके हमें जरूर बताएं। अब इस कार्यक्रम से जाने के दीजिए हमें अनुमति यानी कि आपकी आरजे वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत,
2: फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
1: और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से।

0: ईद को।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग में आपका फिर से बहुत स्वागत है। मेरा एक बहुत बहुत प्यारा मित्र, माय फ्रेंड, मेरे साथ है। इनका नाम है नीलेश काले। बाकी नीलेश बताएंगे कौन है ये, क्यों है ये, कहाँ है ये। नीलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सुनने वाले आपको सुन रहे हैं, अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं।
1: धन्यवाद समीर सर। मेरा नाम नीलेश काले है, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और मैं अभी सेलजन बायोफार्मा में पुणे रीजन में काम करता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं?
1: सर एक्चुअली आई एम बेसिकली फ्रॉम सातारा, विच इज 100 किलोमीटर फार फ्रॉम पुणे, बट मैं अभी पुणे में रहता हूँ विथ माई वाइफ एंड डॉटर। और सातारा में मेरे पिताजी, मम्मा और बड़े भाई रहते हैं वहाँ पे।
0: अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों देखिए, हिंदुस्तान के एक खूबसूरत कोने से नीलेश भाई हमारे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को और एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: निलेश भाई, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि लोग आपके बारे में कुछ गलतफहमी रखते हैं क्या? और ऐसी क्या गलतफहमी है? आपको पता होगा कि लोग जरा गलतफहमी हो गई उन लोगों को, फिर बाद में वो कहते हैं अरे नहीं निलेश भाई तो ऐसे नहीं थे। ऐसी क्या गलतफहमी हो जाती है उन लोगों को?
1: सर, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा इगोस्टिक और गुस्से वाला हूँ, लेकिन एज पर माय ओपिनियन मैं क्या करता हूँ सर, मुझे जो मतलब मेरे काम से काम रखता हूँ हमेशा, मैं ज्यादा मतलब लोगों के मतलब दूसरों के इसमें कभी इसमें नहीं पड़ता हूँ, तो उनको लगता है कि यार ये आके बात नहीं करता, लेकिन हाँ अगर कुछ उनको मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा पहले टाइम पे उनके पास जाता हूँ उस टाइम पे। तो बहुत लोग मतलब पहले बोलते कि यार, जब पहले एक दो विजिट में हमें लगा कि तुम थोड़ा सा ये करते हो, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो दिन मतलब कंटिन्यूअसली हो जाते हैं रेगुलर हम, तो बाद में उनको पता चल जाता है कि यार ये तो ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ज्यादा बात नहीं करता ऐसा मतलब
0: बहुत खूबसूरत बात
1: उसमें।
0: है। बड़ी मजेदार बात यह है कि अभी आपके दोस्त बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे, और वो कभी अगर उनके दिमाग में जरा जरा सी छोटी मोटी कोई गलतफहमी होगी तो आज वो दूर हो जाएगी। नीलेश भाई इगोइस्ट नहीं है, बहुत सरल, बहुत सीधे, बड़े सच्चे इंसान हैं, लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। मुद्दा यह है कि एक बार नीलेश भाई पर भरोसा तो करके देखा जाए। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, इसी तरज में, इसी लरज में, इसी रंग में एक गीत सुनते हैं।

0: बहुत प्यारी बात। नीलेश भाई, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर कोई छोटा बच्चा, मतलब यंग, छोटा बच्चा मतलब यंग, आपसे इन्फ्लुएंस होके, आपसे इम्प्रेस होके आप ही की फील्ड में काम करना चाहे, शुरू करना चाहे, अपना करियर बनाना चाहे, तो उसको क्या सलाह देंगे आप?
1: सर, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है और काम करना चाहता है तो उनको एक मेरी सलाह रहेगी, थोड़ा सा पेशेंट के साथ काम पे फोकस रखना और अपने काम को पूरे इज्जत से अगर आप करोगे

मोहब्बत हो, प्यार हो, पैशन हो, और फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा आपकी मंजिल पाने के लिए। फिर आप तय कीजिए कि आपकी मंजिल क्या है। बहुत बढ़िया, चलिए भाई आगे बढ़ते हुए मंजिल के ऊपर ही गीत सुनते हैं।

0: बहुत प्यारी बात। निलेश भैया हमें बताइए ना, जब आप छोटे थे आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: तो सर बचपन में तो सर हर साल मतलब वो बनने की इच्छा तो हर बार चेंज होती रहती थी।
0: वेरी नाइस।
1: लेकिन मतलब स्कूल के टाइम पे लगता था यार टीचर ही सबसे बढ़िया रहते, तो उस टाइम पे मैं टीचिंग लाइन में आना चाहता था।
0: गुड।
1: जब कॉलेज में गया तो देखा कि बहुत सारे मतलब जो सीनियर थे हमारे वो एमपीएससी यूपीएससी ऐसे बड़े एग्जाम की तैयारी करते थे।
0: ओके।
1: दैट टाइम लगता था कि यार यही सबसे बढ़िया है। तो मतलब ये किए है, लेकिन एक था मुझे एक्चुअली पहले से मेरे को ये चाहता कि अपने मतलब विद फैमिली के साथ रह के उनके सब पूरे सपने मतलब उनके भी कुछ तो अपेक्षा रहेंगी, अभी वो
0: बिल्कुल
1: हमको
0: रहेंगी।
1: मतलब बड़ा कर रहे तो उनके साथ रह के साथ में रह के मतलब सबको एक साथ लेके ऐसा आगे बढ़ने के लिए काम करना था उस टाइम पे।
0: बिल्कुल, मतलब फैमिली को साथ में लेके। नीलेश भाई कह रहे हैं फैमिली की अपेक्षाएं भी होती है। हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं होता, हमारे साथ बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं जिनकी जिम्मेदारियां हम पर होती हैं, जिनके प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो फैमिली के साथ चलते हुए खुश रहते हुए कुछ भी करें बस उसी का मतलब बढ़िया होता है। बढ़िया बात कही नीलेश भाई, बढ़िया बात कही। चलिए इसी बात पर एक गीत हो जाए।

0: निलेश भाई, बचपन की बात कर रहे हैं हम, तो अपने बचपन की कोई पसंदीदा याद के बारे में हमें बताइए, कोई मेमोरी प्यारी सी।
1: मतलब सर, बचपन में तो बहुत सारे ज्यादा प्यारे मेमोरीज थी।
0: जी
1: लेकिन उसमें था, मतलब जो दोस्त हमारे ग्रुप था, मतलब वो सब मेरा जो ग्रुप था वो, मतलब हम स्टार्टिंग अभी तक वो साथ में ही है हम लोग।
0: अरे वाह,
1: तो कॉलेज के टाइम पे और स्कूल के टाइम पे जो हम वो जो मस्ती करते थे एक्स्ट्रा, इसमें वो मतलब हर बार वही याद आती है। जब भी हम मिलते हैं अभी भी, तो ज्यादातर उसी दिनों में निकल मतलब जा जाते हैं सब लोग बहुत बार। मतलब उसमें हमारा सबसे फेवरेट था कि सर, सातारा एक छोटा सिटी है जहाँ पे मैक्सिमम एक या दो ही टॉकीज थे एक्चुअली मूवीज के, और फ्राइडे को नया मूवीज रिलीज होते तो हम सब फर्स्ट डे फर्स्ट शो कुछ भी होके देखने जाते ही थे सब
0: अरे
1: सब मिल
0: वाह,
1: के।
0: क्या बात है, अमेजिंग। देखो दोस्तों, निलेश जी बता रहे हैं कि बचपन में सारे दोस्त मिलकर मूवी देखने जाया करते थे। दोस्तों आज क्या बदल गया है? अगर आपका एक मित्र है, दो हैं, पांच हैं, मूवी हॉल्स तो अब भी है ना। माना कि सारी की सारी मूवीज हमें फोन पे दिख जाती हैं, शायद लैपटॉप पे दिख जाती हैं, नेटफ्लिक्स पे आ जाती हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन मुद्दा यह है, दोस्तों के साथ वापस मिलकर हॉल में जाकर मूवी देखने का मजा ही कुछ और है। एक बार करके तो देखिए, वापस से मजा आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: निलेश भाई, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी असफलता क्या रही और उससे क्या सीखा आपने? ये सवाल इसलिए पूछते हैं निलेश भाई कि हम लोग असफल होते हैं तभी तो सफल होते हैं, लेकिन
1: यस
0: पॉइंट इज कि हमें असफलता से कुछ सीखना है तभी तो। तो आपकी असफलता क्या रही और आपने क्या सीखा?
1: मतलब सर ये एक याद है एक्चुअली बचपन के टाइम पे मतलब मेरे को क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक था। मतलब मॉर्निंग इवनिंग में कंटिन्यूअसली क्रिकेट खेलता था, तो हर बार स्कूल के टीम में भी था और कॉलेज के टीम में भी मतलब रेगुलर मेंबर था मैं उसमें। लेकिन जब मैं लास्ट ईयर में था और हमारा एक्चुअली क्रिकेट टीम का सिलेक्शन होने वाला था, तो हम दो तीन बंदे उसी टाइम पे एक्चुअली फ्राइडे का दिन था तो एक इंग्लिश मूवी लगी थी तो हमको एक्चुअली वो देखना था। तो उस टाइम पे हमें लगा कि अरे हम तो इतने साल से खेल रहे टीम के लिए तो अपना तो सिलेक्शन होना ही है। तो हम वैसे ही सब लोग जाके बैठे थे। बाद में पता चला आने के बाद कि यार कॉलेज ने तो पूरा टीम सिलेक्ट करके उसमें हमारा नाम ही नहीं डाला। तो मतलब इतने साल खेलने के बाद एकदम लास्ट ईयर जब हमारा मतलब लास्ट ईयर था कॉलेज का, उस टाइम पे हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसके बाद ये पता चला कि भाई अपने को एक्चुअली एक मूवी तो हम बाद में भी देख सकते थे थोड़ा अगर ये कर लेते। तो एक्चुअली ये कि अपना जो फोकस है उस टाइम पे आप इधर उधर अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटका दिया जाओगे तो एक्चुअली आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हो। फिर उसके बाद मतलब वो थोड़ा क्रिकेट का फिर बाद में कमी होता चला गया। मतलब नहीं तो सर पहले वो पूरा फैशन ही था।
0: बहुत खूब नीलेश भाई, क्या बात बताई आपने, बहुत बढ़िया। दोस्तों समझिए इस बात को, हमें अपनी एम की तरफ, ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो हम पाना चाहते हैं, उसमें डिस्ट्रैक्शन को हटाना होगा। फिर वो चाहे मूवी हो, फोन हो, या इधर उधर दोस्तों के साथ मस्ती करना हो, जो भी हो, अगर हमने कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है तो उसमें हमें डिस्ट्रैक्शन को हटा के फोकस्ड रहना होगा, तभी वो मिलेगा। वरना जैसे नीलेश भाई ने कहा, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया टीम में, कितना खराब लगा होगा, लेकिन नीलेश भाई ने सीखा उससे कि अब मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहूंगा। बहुत खूब, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक गीत सुनते हैं।

0: नीलेश भाई, अगर आपको किसी एक बात के लिए याद किया जाए तो वो क्या होनी चाहिए?
1: तो सर अभी तो मतलब मैं लॉयल्टी बोल सकता हूँ कि
0: ओके,
1: यस सर,
0: कि नीलेश भाई को हम लॉयल बोल सकते हैं, कम्प्लीटली
1: यस सर,
0: लॉयल, उन पर
1: यस
0: कम्प्लीटली
1: सर,
0: भरोसा किया जा सकता है। अगर हमने उनको कोई बात कही, कोई काम कहा, कुछ करने के लिए कहा, तो हम भरोसा कर सकते हैं कि नीलेश करके लाके देंगे। बहुत
1: यस
0: खूब,
1: सर,
0: और इसी ना इसी बात से नीलेश भाई जाने जाते हैं। कमाल की बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात कही भाई आपने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: निलेश भाई
1: मुझे ये बताइए, आज तक की डेट में आपको सबसे अच्छी एप्रिसिएशन प्रशंसा क्या मिली है?
2: प्रशंसा मतलब एक्चुअली वो कॉलेज की यादें है। एक्चुअली कॉलेज के टाइम पे तो जैसे मैंने बताया था सर, मैं मैक्सिमम टाइम पे ग्राउंड पे ही रहता था खेलने टाइम पे।
1: ओके
2: और हमारे पूरे फैमिली में सब मतलब ग्रेजुएशन तक ही पढ़े थे उस टाइम पे। और मेरा ग्रेजुएशन के बाद एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम था, उसमें भी मैं ऐसे मतलब ग्राउंड से जाके एग्जाम दे के वापस आया था। लेकिन जब रिजल्ट आया और उसमें सिलेक्शन हो गया था, तो उसके बाद जो पिताजी की जो खुशी हुई थी पिताजी को, क्योंकि पूरे मतलब इसमें वो मतलब मैं पहला था कि एमएससी के लिए चुना गया था ये करके, तो उसमें जो उनको खुशी हुई थी और ये हुआ था, वो भी उनका फेवरेट सब्जेक्ट जो मैथ्स था कि जिसमें उन्होंने पूरा उनका ग्रेजुएशन किया था और उसमें उसमें वो सब्जेक्ट में हो गया था, तो उस टाइम पे जो खुशी उनको हुए थे, तो वो खुशी मेरे को लगा था कि यार कुछ ना कुछ तो हमने कर दिया करके ये करके उनके मतलब पिताजी के लिए। तो वो सब अभी तक का मेरे सबसे बेस्ट मतलब मोमेंट है।
1: बहुत खूब, बड़ी प्यारी बात, बहुत ही प्यारी बात बताई, सुन के भी बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक गीत सुनते हैं।

0: निलेश भाई, मुझे अपने जीवन के तीन सबसे प्रभावशाली लोगों के बारे में बताइए। ऐसे लोग जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो, इन्फ्लुएंस किया हो, किस तरीके से उन्होंने आपके ऊपर प्रभाव डाला। कोई जरूरी नहीं है कि वो तीन लोग आपके सामने ही हो, दूर भी हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटीज भी हो सकते हैं। तो कौन से ऐसे तीन लोग थे?
1: सर, फर्स्ट तो मेरे पिताजी ही है कि जो मतलब पहले से डिटरमाइन थे और वो हॉनेस बहुत है और हमेशा से मेरे को चाहते कि मतलब उनके राह, मतलब उन्होंने वो जैसे वो अभी तक उन्होंने किया वैसे ही मेरे को अभी करने का ट्राई ही कर रहा हूँ। अभी तक तो उनके पास मतलब मैं पहुंचा भी नहीं हूँ, लेकिन पहले से मेरे को मेरे पे उन पे बहुत ज्यादा मतलब मेरे पे पगड़ा है, उनके बातों का सब मतलब ये करते उनका बहुत ज्यादा पगड़ा है। दूसरी मेरी मम्मी है कि बहुत सारी प्यार करती है, मतलब मैं ही नहीं मेरे दोस्तों के साथ ही, मतलब मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि यार ये मम्मी हमको चाहिए। तो वही है कि आप अगर प्यार से सबसे बात करोगे रहोगे तो फिर सब लोग आपके साथ तो मतलब आराम से रह सकते हो। तो ये एक बात वो मैंने अपनी मम्मी से सीखी थी। बाकी कॉलेज के टाइम पे हमारे इधर कॉलेज में पाटिल सर करके थे, बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मतलब वो एक में वो टीचर थे कि सर वो लड़कों से प्यार करते थे और लड़के उनको सजा देते थे।
0: हमारे
1: तो हमारे इसमें सबसे फेवरेट थे, उनको एक ही था मतलब ये करके कि आप को जो पाना है वो आप अभी से डिसाइड कर लो, बाद में एक बार आप अगर इस तरह से निकल जाओगे तो भागते उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार भागना चालू किया तो आप कॉलेज के दिनों में डिसाइड करो कि आपको क्या करना और उसी के तरफ आप पीछा करो। तो मतलब वो एक थे कि लड़के उनको अभी भी मतलब जब भी सातारा में जो कॉलेज के जाते तो सर को मिलते ही मिलते है हमेशा।
0: अरे वाह,
1: अब तक ये करके तो ये तीन सर है कि जिनपे मतलब अभी मेरा है मतलब मतलब इस पे चलने की मैं कोशिश करता हूँ सर हमेशा।
0: बहुत खूबसूरत। चलिए दोस्तों, फिर अगला गीत सुनते हैं निलेश जी के ही इन टीचर के नाम, जो बहुत बहुत प्यार से इनको संभालते थे, बच्चों को मोटिवेट करते थे।

0: हवाओं पे लिख दो।
1: बहुत बढ़िया नीलेश भाई, मुझे ये बताइए अपने आप को फिट और एक्टिव रखने के लिए, फिट और सक्रिय रखने के लिए आप क्या करते हैं?
2: सर वैसे तो एक्सरसाइज तो नहीं कर पाता, लेकिन मुझे एकदम पूरी नींद लेना पसंद है। एक बार अगर मेरी नींद हो गई ना तो मैं पूरा मतलब काम पे अच्छे से रहता हूँ सर।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा क्यों लगता है आपको कि नींद पूरी होने से आप अच्छा काम कर सकते हैं?
2: सर एक बार नींद हो गई ना मतलब वो स्ट्रेस में रहता, और कभी कभी क्या होता है कि अगर कुछ ट्रैवलिंग में हूँ, कुछ हुआ, अगर नींद नहीं हुआ तो अगला दिन बहुत मतलब थोड़ा सा लेजी और टायर्ड निकलता ही है सर। लेकिन अगर उसी में हो तो एक्चुअली मॉर्निंग वैसे भी मेरे को घूमने की आदत है, मतलब मैं इसके लिए नहीं जाता जॉगिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे जाता हूँ मतलब बाकी सब चीजों के लिए मॉर्निंग में, तो वो तो मेरा रेगुलर रहता है। लेकिन नींद हो गई तो सर दिन अच्छा जाता ही है सर पूरा।
1: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। दोस्तों आपको पता भी है, लेकिन अगर कभी कभी हम भूल जाते हैं, नींद हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि नींद में हमारी बॉडी में रिपेयरिंग होती है। हम रेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ खा पी नहीं रहे होते हैं, जो भी टूट फूट हुई होती है, बीमारियां होती हैं, उनकी रिपेयरिंग हो रही होती है। दूसरा, पर्सनली मानना मेरा यह है कि जब आदमी सो रहा होता है तो बहुत मासूम होता है, वो किसी का कोई नुकसान नहीं कर सकता, किसी को गाली नहीं दे सकता, किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकता। तो देखा जाए तो जिस वक्त हम सो रहे होते हैं हम बिल्कुल भगवान की तरह होते हैं, पवित्र। तो नीलेश भाई थैंक यू सो मच इस बात को बताने के लिए। तो चलिए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: निलेश भाई, मुझे ये बताइए कि अगर आपको मैं एक अथॉरिटी दे दूं, एक ताकत दे दूं कि आप आज की डेट में जो सोशल मीडिया चल रहा है उसकी दुनिया में कुछ बदल डालें, तो क्या बदलना चाहेंगे आप?
1: सर, सोशल मीडिया का मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप समाज के प्रति कुछ अच्छा काम करने वाले हो तो उससे, मतलब जो अभी जो रील्स वगैरह होती है उससे एक्चुअली सर समाज पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर उनको एजुकेट कर रहे हो कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पता नहीं रहती, मतलब उस फील्ड बाकी फील्ड के, तो अगर आप उस तरह से अगर सोशल मीडिया का उपयोग कर पाओगे तो बहुत कम समय में आप बहुत ज्यादा लोगों के मतलब समक्ष जा सकते हो उससे। और उससे एक एक ही लोगों को बहुत, मतलब अभी हम भी करते हैं यहाँ पे कि जो रूरल एरिया में रहते हैं लोग, उनको मेडिकल फील्ड की जानकारी कुछ भी नहीं होती, तो हम बहुत मतलब हर अलग अलग स्पेशली के डॉक्टर लेते हैं हर संडे, ऑलमोस्ट 1 घंटे का उनको डिफरेंट टॉपिक पे एक ऐसा एक लेक्चर रखते हैं। 30 मिनट्स वो 60 मिनट का रहता है वो। लेकिन उससे अभी बहुत सारे लोग बोल रहे कि हमको तो ये पता ही नहीं था, एटलीस्ट पता तो चल जाए, तो वो आगे मतलब वो थोड़ा सा प्रिकॉशन ले सकते हैं, अपना जीवन शैली बदल सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ऐसे अगर एक जो समाज के लिए मतलब जो अच्छा रहता है, अगर ऐसे टॉपिक लेके अगर आप सोशल मीडिया पे जा पाओगे तो दैट्स विल बी द बेनिफिशियल फॉर द ऑल सर। मतलब ये
0: ओके,
1: है कि हाँ
0: बड़ी ही प्यारी बात कही दोस्तों। सुना आपने नीलेश जी, सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया को सही इस्तेमाल करने के बारे में जरूर जागरूक हैं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।

0: निलेश भाई, हमारे ऑडियंस से, आपके फ्रेंड्स से, आपके रिलेटिव से, आपके सुनने वालों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: की है कि आप पहले अपनी मंजिल तय करो और फिर उसे हासिल करने के लिए जी जान लगा के कोशिश करना भाइयों। फिर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
0: वाह, क्या बात है। बिल्कुल सिंपल मैसेज कि पहले मंजिल तय कीजिए, उसके बाद पीछे लग जाइए उसके। देखा जाए तो सभी लोग इस बारे में मानते हैं, जो भी सफल लोग हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, सभी यही मंत्र देते हैं। मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस मंत्र के अलावा दरअसल और कोई मंत्र है ही नहीं प्रकृति में। तो चलिए नीलेश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू
1: सर, थैंक यू सो मच सर।

दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं विनोद भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: दैट्स द स्पिरिट सर।

हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ, कहीं का उल्लू का पट्टा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम।

0: उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी? कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी? बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहे डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप? अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं। टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये दुस्साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त न रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

बढ़ जाता है कौन? समय। और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं। लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझा कर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: 1992 से लेकर 1993 यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं काजोल देवगन। शादी से पहले इनका नाम काजोल मुखर्जी था। अजय देवगन से शादी के बाद काजोल देवगन हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं काजोल की ही फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी माँ तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रहीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रहीं और हमेशा हिट ही रहीं। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

लीजिए दोस्तों, पेशे खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के।

दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम

0: गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज शाम गजलों के इस महकते हुए प्रोग्राम में जो शायर हमारे साथ हैं उनका नाम है मुकेश कुमार जी। बाकी की बातचीत हम मुकेश कुमार जी से ही करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। मुकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में
1: बहुत शुक्रिया।
0: अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, थोड़ी सी जानकारी दीजिए अपने बारे में।
1: जी मैं मुकेश कुमार सिंह, सरकारी महकमे में एक मुलाजिम हूँ और मैं रहने वाला हूँ भिलाई छत्तीसगढ़ का। तो मेरी पोस्टिंग यहीं पर है, नागपुर में ही हूँ मैं।
0: तो मुकेश जी आप किस तरह के कलाम या गजल या नज्में लिखते हैं?
1: मैं गजलें ही लिखता हूँ और कि मतलब फिलॉसफी पे ज्यादा बेस्ड रहता है मेरी गजलें।
0: बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पहली गजल हमको और हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
1: जी बिल्कुल। गजल का मतलब है कि इश्तिहारों की तरह ही वक्त की दीवार पर, इश्तिहारों की तरह ही वक्त की दीवार पर हर सजा लिखी हुई है जुर्म के आधार पर। इश्तिहारों की तरह ही वक्त की दीवार पर हर सजा लिखी हुई है जुर्म के आधार पर। पहले तो लहरों की हसरत को समझना चाहिए, पहले तो लहरों की हसरत को समझना चाहिए, फिर यकीन अपना जताएं नाव और पतवार पर। जीतना हर बात पे है क्यों जरूरी ये बता, जीतना हर बात पे है क्यों जरूरी ये बता, क्यों हमें अफसोस हो जाता है अपनी हार पर। और खुद ब खुद गुस्ताखियां किरदार सब करने लगे, खुद ब खुद गुस्ताखियां किरदार सब करने लगे, दोष हम मरते रहे जब जब कहानीकार पर। और मुत्तफिक हो आप हमको देते हैं जितनी खुशी, मुत्तफिक हो आप हमको देते हैं जितनी खुशी, टूटता है दिल भी उतना आपके इनकार पर।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो मुकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारी प्यारी सी गजल के लिए। कई शब्द और कई अल्फाज तो इस तरह के थे कि मैं बीच में वाह वाह करना चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि आपके फ्लो को ना रोकूं और बस कहने दूं आपको, तो इसलिए शांत रहा, चुप रहा। बहुत ही खूबसूरत गजल।
1: थैंक यू सर।
0: तो अब अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई एक गजल हमें बताएं जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं।
1: जी जी बिल्कुल। जगदीश सिंह जी की आवाज में है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है।
0: क्या बात है, क्या बात है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है,
1: वक्त तो लगता है।
0: आइए दोस्तों मुकेश जी की फरमाइश पर जगजीत सिंह जी का गाई हुई इस गजल को सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया मुकेश भाई, थैंक यू सो मच आपकी फरमाइश के लिए, आपकी चॉइस के लिए। तो अगला सवाल मैं छोटा सा पूछना चाहूंगा कि
1: जी बिल्कुल,
0: आपकी हॉबीज क्या हैं? आप जब भी खाली वक्त होता है तो क्या करते हैं उसमें?
1: इसके अलावा मैं थोड़ा सिंगिंग में भी हाथ आजमाते रहता हूँ, सीखा कहीं से नहीं है मगर घर में ही कोशिश करते रहता हूँ
0: जी।
1: और एक YouTube पर मेरा चैनल भी है
0: जी
1: उसमें मैं छत्तीसगढ़ी गानों को मतलब रिकॉर्ड करके वीडियो बना के उसका डालता हूँ, तो अभी 3-4 गाने हो गए हैं उसमें,
0: बहुत खूब, बहुत सुंदर।
1: खुद ही कंपोज करता हूँ, खुद म्यूजिक करवाता हूँ, फिर या तो खुद गाता हूँ या किसी सिंगर से गवाता हूँ गाने को अकॉर्डिंग।
0: अरे वाह, क्या बात है, ये तो काफी ज्यादा क्रिएटिव काम है, बहुत बहुत बढ़िया। तो मुकेश जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली गजल हमें सुनाएं।
1: अगली गजल के तौर पर मेरी एक छोटी बहर की गजल है। गजल का मतलब है कि गमों को यूं सताया कर हमेशा मुस्कुराया कर, गमों को यूं सताया कर हमेशा मुस्कुराया कर, करे तनकीद गर कोई, तनकीद कहते हैं आलोचना को
0: जी,
1: कि करे तनकीद गर कोई, दिल अपना मत दुखाया कर, करे तनकीद गर कोई, दिल अपना मत दुखाया कर, तुरख किरदार ही सारे मगर जिम्मा उठाया कर, कोई गर आजमाता है तो बाजी हार जाया कर, अगर अपना बनाना है भरोसा भी जताया कर, अगर होना है रोशन तो अंधेरों से निभाया कर, वो जो पत्थर उठाता है उसे शीशा दिखाया कर,
0: क्या बात है,
1: और बहाए अश्क जब कोई जरा सा भीग जाया कर, भाई अश्क जब कोई जरा सा भीग जाया कर, गमों को यूं सताया कर हमेशा मुस्कुराया कर। ये गजल थी मेरी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गजल।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया सर।
0: तो मुकेश जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंद के किसी गजल गायक की कोई एक गजल बताएं हमें।
1: जी सर बिल्कुल, गुलाम अली साहब की गाई हुई गजल है ये, कभी आह लब पे मचल गई,
0: कभी आह लब पे मचल गई।
1: मचल गई।
0: बहुत खूब, गुलाम अली साहब की ये गजल, आइए दोस्तों सुनते हैं।

0: ओके जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये गजल लिखने का और गजल कहने का शौक या आपके अंदर काबिलियत है, ये आपको कब पता चला और कब से लिख रहे हैं आप?
1: वैसे तो मैं कॉलेज के टाइम से लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने भोपाल से पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा किया है। वहां पर अच्छा माहौल था शायरी का, गजलों का, तो वहां से किसी

0: किताब में पढ़ लिया था मैंने कि ऐसे गजल होती है, ऐसे मतलब और ये होता है करके, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया था। मैं अपने आप से लिखता था। फिर बाद में लोगों ने 2017 में मुझे किसी ने पूछा भाई कि आपकी ये गजल किस मीटर पे है, तो मुझे समझ में नहीं आया कौन सी बहर पे, वो पूछा उन्होंने। तो मुझे बहर शब्द ही पहली बार सुना था मैंने, तो मैंने फिर गूगल में सर्च किया बहर क्या होती है। फिर बहर जब गूगल ने बताया 32 प्रकार के हैं ये, तो फिर वहां से मैंने थोड़ी जानकारी इकट्ठा की, और फिर जिसने पूछा था उनसे ही मैंने कहा, सरेंडर कर दिया कि मुझे नहीं आता है सब कुछ, पत कुछ भी नहीं मालूम है मुझे, आप सिखा दीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं सीख जाऊं। तो फिर उन्होंने मुझे सिखाया, और 2017 से ही मैं प्रॉपर मीटर में लिखना सीखा मैंने, मतलब।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मुकेश जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना अगला कलाम हमें सुनाए।
0: जी बिल्कुल, अब मैं जो भी सुना रहा हूं सब मीटर में ही है उनके हिसाब से।
1: जी
0: गजल का मतलब है कि
1: जी
0: वक्त से सीखिए खामोश गुजरने का हुनर, वक्त से सीखिए खामोश गुजरने का हुनर, सीखिए दर्द से जख्मों में उतरने का हुनर, वक्त से सीखिए खामोश गुजरने का हुनर, सीखिए दर्द से जख्मों में उतरने का हुनर, आप अल्फाज के काबू में रवानी को रखें,
1: जी
0: आप अल्फाज के काबू में रवानी को रखें, भूल जाएं न यूं जज्बात उभरने का हुनर,
1: क्या बात है,
0: आप अल्फाज के काबू में रवानी को रखें, भूल जाएं न यूं जज्बात उभरने का हुनर, और सांस रोके हुए जीने का हुनर आ तो गया, सांस रोके हुए जीने का हुनर आ तो गया, सांस लेते हुए आया नहीं मरने का हुनर,
1: वाह,
0: और खूबसूरत भी वही लोग हुआ करते हैं, खूबसूरत भी वही लोग हुआ करते हैं, आईना जिनको बताता है संवरने का हुनर, और कैसे घुलती है हवाओं में बिछड़ कर गुल से, कैसे घुलती है हवाओं में बिछड़ कर गुल से, कौन खुशबू को सिखाता है बिखरने का हुनर, कि वक्त से सीखिए खामोश गुजरने का हुनर, सीखिए दर्द से जख्मों में उतरने का हुनर।
1: बेहद खूब, बेहद खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही
0: बहुत
1: प्यारी,
0: बहुत शुक्रिया
1: बहुत
0: साहब,
1: ही
0: बहुत
1: प्यारी
0: बहुत
1: गजल।
0: शुक्रिया।
1: मुकेश जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगली गजल का हुक्म करें। कौन से गायक की कौन सी गजल हम सुनवाएं?
0: एक उस्ताद मोहम्मद हुसैन अहमद हुसैन की गजल है ये,
1: जी
0: मैं हवा हूं कहां वतन मेरा।
1: जी आइए दोस्तों, मुकेश जी के आदेश पर, मुकेश जी के हुक्म पर यही गजल हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: मुकेश जी, अगला एक सवाल पूछना चाहूंगा इस प्रोग्राम को,
1: बिल्कुल
0: थोड़ा सा
1: जी
0: ट्विस्ट देते हुए, थोड़ा सा प्रोग्राम को बदलते हुए, जिससे कि आपको भी मजा आए और सुनने वालों को भी मजा आए, क्योंकि आप लफ्जों के खिलाड़ी हैं, लफ्जों से खेलना आता है आपको। तो सवाल मेरा यह है कि अगर फर्ज कीजिए आपको आपकी तीन इच्छाएं पूरी करने वाला एक जिन्न कहीं से मिल जाए, तो क्या तीन ख्वाहिशें मांगेंगे आप उससे?
1: ऐसी बात तो ऐसी है सर कि ख्वाहिश एक यही है, मेरी सबसे पहली ख्वाहिश यही है
0: जी,
1: वो मैं बता नहीं सकता कि गजल भी मतलब एक बड़ा एक मुकाम है जो हासिल करना चाहता हूं मैं
0: जी,
1: और इसी के बारे में सोचता रहता हूं हमेशा कि वो वहां तक कैसे पहुंचना है मुझे, कौन आगे रास्ता दिखाएगा या कौन मेरी उंगली थामेगा। तो वो एक जो है, और साथ में ये भी है कि एक वहां तक पहुंचने के लिए अच्छा लिखना भी होगा, तो वो सारे अनुभव जो जिंदगी से मिलता है उन्हें याद रखना और दिमाग में रखना और उनको शायरी में ढालना कैसे है, ये सब कोशिश करते रहता हूं मैं। तो बस मेरी मतलब ख्वाहिश एक ही है मेरी, बाकी और तो कुछ इच्छा है नहीं मेरी, मतलब मैं कुछ और नहीं सोचता हूँ, मतलब बस अपनी नौकरी जो है उसको ईमानदारी से कर लूं, ये ख्वाहिश रहती है कि बस ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करूं जो जिसकी मैं तनख्वाह लेता हूं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुकेश जी,
1: और
0: मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली गजल हमें सुनाएं।
1: जी जी बिल्कुल, इसी गजल मैं अपनी सुना रहा हूं आपको
0: जी।
1: इसे मैंने मुंबई में सुनाया था एक प्रोग्राम में, तो वहां पर लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था। हम पर यूं एतबार भी अच्छा नहीं लगा, हम पर यूं एतबार भी अच्छा नहीं लगा, हद से ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं लगा, हम पर यूं एतबार भी अच्छा नहीं लगा, हद से ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं लगा, कुछ हैं शिकायतें मेरी लेकिन खुदा मुझे, कुछ हैं शिकायतें मेरी लेकिन खुदा मुझे, सांसों पे इख्तियार भी अच्छा नहीं लगा। इख्तियार मतलब कंट्रोल, नियंत्रण जो है
0: जी, जी,
1: कि कुछ है शिकायतें मेरी लेकिन खुदा मुझे, सांसों पे इख्तियार भी अच्छा नहीं लगा, और हमने नहीं कहा कोई हमसे मिले मगर, हमने नहीं कहा कोई हमसे मिले मगर, करना यूं दरकिनार भी अच्छा नहीं लगा, और खुशियों के दौर में किया दुश्मन को भी मुआफ, खुशियों के दौर में किया दुश्मन को भी मुआफ, गम में तो गमगुसार भी अच्छा नहीं लगा।
0: क्या बात है,
1: गमगुसार मतलब हमदर्द जो अपना होता है
0: जी,
1: वो कि खुशियों के दौर में किया दुश्मन को भी मुआफ, गम में तो गमगुसार भी अच्छा नहीं लगा, और हमने किसी से भीख तो मांगी नहीं मगर
0: जी,
1: हमने किसी से भीख तो मांगी नहीं मगर, लेते हुए उधार भी अच्छा नहीं लगा।
0: अच्छा जी,
1: और हम पर यूं एतबार भी अच्छा नहीं लगा, हद से ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं लगा।
0: वाह वाह,
1: क्या बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बड़ी प्यारी गजल। तो मुकेश जी, आपसे गुजारिश करूंगा कि अगली गजल का हुक्म करें, कौन सी गजल हम अपने सुनने वालों को सुनवाएं।
1: जी बिल्कुल, एक फिल्म में इसमें ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है,
0: बहुत प्यारी, बहुत प्यारी गजल। आइए दोस्तों, यही गजल सुनते हैं मुकेश जी के आदेश पर।

0: बहुत बढ़िया मुकेश जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बचपन में क्या बनना चाहते थे आप?
1: बचपन से मैं सोचता था कि एक मतलब मैं रेलवे में ही नौकरी करना चाहता था। मैं आपको मैं बताऊं तो मेरे दिमाग में, मैं छोटे से गांव से हूं तो है ना, तो मैं वहां जब भी ट्रेन से जाता था तो पीसी लोग को देखता था ना, काले कोट में बहुत अच्छा सा बढ़िया, तो मुझे लगता था मैं भी यही बनूंगा एक दिन। बहुत बड़ी बहुत बड़ा ख्वाब नहीं था मेरा, लेकिन इत्तेफाक से मेरी जितनी भी नौकरियां लगी रेलवे में ही लगी।
0: अरे वाह,
1: मतलब तीन चार नौकरियां मैं रेलवे की छोड़ के अभी जो है वो कर रहा हूँ, रेलवे में ही कर रहा हूँ।
0: तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली गजल हमें सुनाएं।
1: मेरी एक गजल है, इसका मतलब है कि एक हम हैं सितारों को मनाने में लगे हैं, एक हम हैं सितारों को मनाने में लगे हैं, कुछ लोग चिरागों को बुझाने में लगे हैं। एक हम हैं सितारों को मनाने में लगे हैं, कुछ लोग चिरागों को बुझाने में लगे हैं। माना नहीं हमने तो मुसीबत को मुसीबत, माना नहीं हमने तो मुसीबत को मुसीबत, हम जिंदगी आसान बनाने में लगे हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: ये बात समंदर को पता है कि नहीं है, ये बात समंदर को पता है कि नहीं है, लहरों को किनारे ही छुपाने में लगे हैं। ये बात समंदर को पता है कि नहीं है, लहरों को किनारे ही छुपाने में लगे हैं। होता है हवाओं को भी तूफान से खतरा, होता है हवाओं को भी तूफान से खतरा, यूं ही नहीं वो शोर मचाने में लगे हैं। और नादान परिंदों को जो दाना हो मैसर, नादान परिंदों को जो दाना हो मैसर, तो तय है इन्हें लोग फंसाने में लगे हैं। एक हम हैं सितारों को मनाने में लगे हैं, कुछ लोग चरागों को बुझाने में लगे हैं।
0: बहुत प्यारी गजल, बहुत शुक्रिया गजल मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत प्यारी गजल के लिए। मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद के गजल गायक की कोई गजल हमें बताएं।
1: गुलाम अली साहब की है, हंगामा है क्यों बरपा।
0: ओहो क्या बात है, बड़ी ही खूबसूरत बड़ी ही प्यारी गजल, हंगामा है क्यों बरपा। आइए दोस्तों, पेशे खिदमत है ये गजल।

दोस्तों, आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आप लो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष,
1: लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए खेती किसानी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम खेती बाड़ी।
2: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में किसान साथियों के लिए हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं और खास तौर पर उन छोटे छोटे सेगमेंटों पर हम बातचीत करते हैं जो हमारे झाबुआ जिले के किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि खेती बाड़ी करना कितना मुश्किल हो गया है आज के इस जमाने में, क्योंकि इसमें लागत बहुत ज्यादा लगती है और मुनाफा बहुत कम होता है। और अक्सर देखा जाता है कि पथरीली इलाका, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो वहां पर पथरीला

0: इलाका है और ऐसे में किसानों को खेती करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है।
1: बिल्कुल, तो इन सब समस्याओं के समाधान को लेकर रेडियो टांट्या भील आप सभी के लिए लेकर आया है ये खास कार्यक्रम खेती बाड़ी का।
0: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम तीन सेगमेंटों पर बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सेगमेंट हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सेगमेंट होगा कि हमारे किसान साथी मिश्रित खेती के बारे में किस तरीके से उनका रुझान है और किस तरीके से हमारे किसान साथी मिश्रित खेती कर सकते हैं। खासतौर पर पथरीले इलाकों में अगर देखा जाए, यदि मिश्रित खेती पर हमारे किसान साथी ध्यान केंद्रित करें तो आने वाले समय में वो इससे लाभ ले सकते हैं। और दूसरा सेगमेंट होगा कि पशुपालन का हमारा सेगमेंट रहता है। पशुपालन पर भी हम खास तौर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान अपने पास में लगा हुआ है, गुजरात भी पास में लगा हुआ है, तो ऐसे में हमारे किसान साथी कौन सी नस्ल की हमारे गाय भैंस पालन कर सकते हैं, खासतौर पर गायों पर विशेष तौर पर आज ध्यान केंद्रित कराएंगे। और तीसरा सेगमेंट होगा कि अब मई माह में किस तरीके से पशुपालन की देखरेख हमें किसान साथी कर सकते हैं। और चौथा, हम अपने सफल किसान की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि हम ऐसे किसानों की कहानी लेकर आते हैं, उनसे सीखकर हमारे किसान साथी अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी में बदलाव कर सकते हैं।
1: बिल्कुल साथियों, तो आइए हम देर नहीं करते हैं और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम।
0: और लेकिन इस कार्यक्रम को सुनने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष
1: और आपकी आरजे वर्षा के साथ में।

0: आपने सुना इस व्हील गाने को और आगे हम आपको बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं पहले सेगमेंट की ओर
1: और इसमें जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मिश्रित खेती को कर सकते हैं और किस तरीके से मिश्रित खेती से लाभ कमा सकते हैं। यदि हमारे किसान साथी इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे किसान साथियों की आय में जरूर वृद्धि होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे झाबुआ जिले में जो KBK बना हुआ है या फिर कृषि विभाग की जो ऑफिस है वहां पर जाकर हमारे कृषि विस्तार अधिकारियों से, वैज्ञानिकों से सलाह और संपर्क कर सकते हैं। तो आइए देरी करते हैं, सुनते हैं इस कार्यक्रम में मिश्रित खेती के बारे में।
2: कम जोत में भरपूर फसल लेने के लिए किसान मिश्रित खेती का सहारा लेते हैं। इस तकनीक में मुख्य फसल के साथ सहायक फसलें लगाई जाती हैं। इसमें किसान 3 से 4 फसलें तक ले सकते हैं। इस विधि की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो जाता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का सही इस्तेमाल लिया जा सकता है। मई माह से खरीफ फसलों की बुआई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किसान खरीफ की फसल में एक साथ 3 से 4 फसलें उगा सकते हैं, जिनकी पैदावार कम पानी में हो जाती है, जैसे तिलहन, अनाज, दलहन और एक मसाले वाली फसल लगाकर एक साथ 4 फसलें आसानी से ले सकते हैं। हालांकि मिश्रित खेती को जमीन के बड़े हिस्से में एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े हिस्से में फसलों की देखरेख थोड़ा कठिन काम होता है। इसलिए जब भी किसान मिश्रित खेती की शुरुआत करे तो जमीन के छोटे हिस्से में ही करे। इस तरह देखा जाए तो मिश्रित खेती छोटी जोत के किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। किसान बुआई करने से पहले फसल का चयन अपने स्थान के हिसाब से करे, जैसे तिलहन में मूंगफली और तिल, दलहन में मूंग, उड़द और अरहर, ज्वार, बाजरा, सूखा सहन करने वाली धान की प्रजाति जैसे सहभागी, हल्दी व अदरक। मिश्रित खेती में बुआई करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। किसान सीड ड्रिल विधि से तिलहन फसल में मूंगफली या तिल की बुआई करे। किसान अपनी सुविधा के हिसाब से भी फसल का चयन कर सकते हैं, जैसे मूंग और उड़द दोनों या किसी एक दलहन फसल या फिर कम पानी में होने वाली धान का भी चुनाव किया जा सकता है। सीड ड्रिल विधि से बुआई करने के भी लाभ है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में फसल को वातावरण से पोषक तत्व मिलते रहते हैं, खेत में बीज कम लगता है और उत्पादन ज्यादा मिलता है। सीड ड्रिल से बुआई करते समय दूसरी तरफ से लौटती सीड ड्रिल की दूरी 1.5 से 2 फीट का स्थान छोड़कर बची जगह की पहली कतार में अरहर जैसी फसलें लगाई जा सकती है, क्योंकि इस तरह की फसलें स्थान ज्यादा लेती है और लंबे समय तक खेत में बनी रहती है। दलहनी फसल से करीब 2 फीट की दूरी पर मसाले फसलें लगाई जा सकती है, जैसे हल्दी और अदरक। ये मसाला फसलें 8 से 10 माह में तैयार हो जाती है। इनकी बुआई का काम हाथ से करना उचित होता है। इसके बाद सीड ड्रिल द्वारा छोड़ी गई हर अगली कतार में ऊंचे बढ़ने वाले अनाज जैसे बाजरा और ज्वार या तिलहन फसल, सूरजमुखी फसल लगाना चाहिए। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और खेत के हर हिस्से का समुचित उपयोग भी हो सकेगा।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: रेडियो टांट्या भील सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजी वर्षा।
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और इस वक्त सुन रहे हैं आप झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 FM।
0: जी हाँ साथियों, और अभी हम सुन रहे थे मिश्रित खेती के बारे में। आगे हम आपको और भी जानकारी देने के लिए हाजिर हैं और ले चलते हैं आपको कि कैसे आप पशुपालन करके अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं।
1: तो आइए दूसरा कंपोनेंट हम सुनते हैं और इसमें जानते हैं पशुपालन किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से गाय का रख रखाव और साथ साथ में मई माह का कैलेंडर पर भी विशेष तौर पर चर्चा करेंगे और इसमें जानेंगे किस तरीके से हम अपने जो हमारे गाय भैंस हैं उसका मई माह में, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, किस तरीके से उनका देख रेख कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस चर्चा को।
2: हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देसी गाय पालन करके पशुपालन में बेहतर मुनाफा कमाया जाता है। देसी गाय पालन में गिर गाय हर पशुपालक की पहली पसंद है। अर्धशुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक गिर गाय से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। उभरा हुआ सिर, अर्धचंद्राकार सींग, लंबे घुमावदार कान, पूर्ण विकसित थन इस गाय की मुख्य विशेषता है। इसका नाम गुजरात के गिर वन से लिया गया है जो कि इसका उद्गम स्थान है। गिर गाय मुख्य रूप से लाल रंग की होती है। लाल रंग लगभग 80% में पाया जाता है। गिर गाय राजस्थान में भी काफी लोकप्रिय हो रही है। इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की नज़र से। गिर गाय राजस्थान की जलवायु के लिए अनुकूलित, इसमें गाभिन होने की ज्यादा क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेहतर होती है। गिर गाय का दूध काफी पौष्टिक होता है। इस नस्ल में प्रजनन संबंधी समस्याएं नहीं आती। देसी गाय पालन से जहां दूध की उपलब्धता बनी रहती है, वहीं खेती के लिए जैविक खाद और जैविक कीटनाशक आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिससे खेती में भी अच्छा लाभ लिया जा सकता है। आहार और आवास के साथ साथ पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। समय समय पर पशु के स्वास्थ्य की जांच करते रहे।
0: साथियों, अभी आपने सुना इस रिपोर्ट को जिसमें हमें बताया गया कि पशुपालन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे हम इनसे अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। आगे आपको कार्यक्रम में हम सुनवाने वाले हैं अपने विषय विशेषज्ञ से और ज्यादा जानकारी इस विषय को लेकर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक गीत के साथ मनोरंजन करते हैं।
1: बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ
0: और आपके आरजे वर्षा के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: આપ્યા ભીલ 90.8 FM, આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: भारत के देसी दुधारू नस्लों में गिर गाय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है. मूलतः गिर गायें गुजरात के गिर जंगलों तथा राजकोट के जिले के आसपास में इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है. और गिर गायें अपने कई गुणों के कारण बहुत ही विशेष स्थान रखती है. जैसे अधिक गर्मी सहन कर सकते हैं, दूध उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है तथा पहली बार जो बछड़िया ग्यावन होने की उम्र है वो भी इसमें बहुत ही सामान्य है. साथ ही जो इनके जो लक्षण हैं गिर गाय के, वो किसी अन्य नस्लों से बिल्कुल अलग हैं. आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये गिर गाय हैं या नहीं है. इस गाय की एक बड़ी विशेषता ये है कि ये गाय चरने के बाद अगर आप दिन में थोड़ी चराई करा दें तो इनकी दूध उत्पादन क्षमता में बहुत ही आप देखते हैं बहुत ही वृद्धि पाई जाती है. ऐसी इस नस्ल का जो इसके लक्षण हैं, जो इसकी उत्पादन क्षमता है, वो भारत की दुधारू गायों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है. साथ ही गिर गायों में जो दूध देने की क्षमता है वो देसी गायों में बहुत ही विशेष स्थान रखती है. गिर गाय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन गायों का सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देसी गायें हैं और भारत की जो जलवायु है, खासकर राजस्थान की जलवायु है, उसमें पूर्णतः ये इनके अनुकूल हैं. साथ ही ये गायें अपने उत्पादन क्षमता को, जैसे गुजरात में जो उत्पादन क्षमता है वही हमारे यहाँ इसकी उत्पादन क्षमता है. साथ ही इनके जो ग्यावन होने की जो उम्र है या इनके मान लीजिए जो इनके ब्रीडिंग है वो बहुत ही लगातार है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है. और यहाँ की आब हवा और यहाँ के वातावरण के बिल्कुल अनुकूल है. राजस्थान में बहुत से किसान आज गिर गाय को रख रहे हैं जिससे इनका संरक्षण हो रहा है और साथ ही आने वाले समय में गिर गाय को और अधिक महत्व मिलेगा और अधिक बढ़ावा मिलेगा. क्योंकि गिर गाय का जो दूध है वह बहुत ही स्वादिष्ट और सभी को भाने वाला है. और कैलोरी की बात करें, विटामिन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट की बात करें, इसका जो दूध है वो बहुत ही सुपाच्य तथा स्वाद वाला है. गिर गायों की आज के समय में जो किसान रख रहे हैं, जिसका बड़ा कारण है कि इनमें कोई भी प्रजनन संबंधी समस्या नहीं है, बीमारी की समस्या नहीं है. साथ ही उत्पादन जो उत्पादन क्षमता है वो किसान के लिए बहुत ही उनके लिए लाभकारी है.
2: किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर.
3: मई माह का पशु कैलेंडर 2021. मई माह में ध्यान देने वाली बातें. इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है. पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें. गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें. पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें. पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें. दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए उसे संतुलित आहार दें. चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें. खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें. भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें.

0: स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने पशुपालन कैलेंडर और साथ साथ में जो हमारे विषय विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपने पशुओं की देखरेख करना चाहिए, कौन सी नस्ल हो हमारे किसान पालना चाहिए और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए इस कार्यक्रम में आगे हम सुनते हैं सफल किसान की कहानी। लेकिन सफल किसान की कहानी से सुनने से पहले एक छोटा सा विराम लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।
2: आधुनिकता की दौड़ में ज्यादातर किसान रासायनिक खेती से क्षणिक लाभ लेकर नुकसान का सामना कर रहे हैं। रासायनिक खेती से सेहत व पर्यावरण पर दुर्गामी नकारात्मक असर भी देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि किसान एक बार फिर जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। जैविक खेती से प्रकृति से सीधा तालमेल बैठाना आसान होता है, इससे खेती में आ रही कमियां दूर होती है और फसल में अच्छा खासा इजाफा मिलता है। सीकर के किसान बाबूलाल जैविक खेती करके अपने खेत की तकदीर बदलने में दिन रात प्रयास में जुटे हुए हैं। बाबूलाल पहले परंपरागत खेती किया करते थे, जिसमें सामान्य तरीके से खाद और उर्वरक का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उत्पादन में मिल रही कमी उन्हें जैविक खेती की तरफ ले आई। वो बताते हैं कि पिछले 4 साल से वो जैविक खेती कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद और जैविक कीटनाशक मिलता रहे, इसके लिए बाबूलाल ने 4 देसी गाय भी पाल रखी है। राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में कैसे सफल खेती कर रहे हैं और पानी की मुश्किलों को कैसे आसान बना रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं।
3: किसान पारंपरिक खेती करते हैं और धीरे धीरे क्या है वो जैविक खेती के बारे में सुनना, ऐसे लोगों से कैसे करते हैं क्या करते हैं उसके हिसाब से हमने को विचार है कि अपन भी खेती करेंगे। तो मैंने ऐसे बजाज ट्रस्ट की तरफ से थोड़ा उनसे मिला, उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ बताया कि ऐसा करो, और तो इस हिसाब से मैंने धीरे धीरे जीवामृत घन जीवामृत 10 परनियर वगैरह बनाना काम चालू किया। अभी क्या मैं 4 साल से खेती कर रहा हूँ, उन्होंने मैंने 4 साल से कुछ भी नहीं डाला, खाली जीवामृत घन जीवामृत और ये सब डाल के बना रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है और उनकी तरफ से हमारे को क्या प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है। धीरे धीरे ड्रिप इरिग्रेशन के बारे में ड्रिप लगाया तो उसमें कुछ सहयोग मिला।
4: राजस्थान में पानी की कमी है,
3: राजस्थान में वैसे पानी की यहाँ सूखा है रहता है, तो पानी की तो क्या बूंद बूंद सिंचाई से पानी की बचत उसके हिसाब से। और फिर क्या वो बोला कि अपने देसी खेती करते हैं तो गाय चाहिए, तो हमने क्या वो गिर गाय खरीदी। हमारे पास 3-4 गायें हैं, तो उनसे हम क्या देसी गाय से गोबर से गोमूत्र से उनको इकट्ठा करते हैं, उनसे जीवामृत घन जीवामृत 10 परनियारक वगैरह सब बनाते हैं और तुरंत फुरुत खाद जो अपने हुमस इसके लिए बनाते हैं, जड़ों के लिए बनाते हैं और इससे बढ़िया रिजल्ट है। जो भी खाते हैं अपन तो अपन को भी शुद्ध मिलता है, गायों के लिए चारा शुद्ध मिलता है, तो उनसे क्या एक नई सिस्टम से अपना काम हो रहा है,
4: नई तकनीक
3: और नई पद्धति से अपना ऐसा हो रहा है और इसमें रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है।
2: बाबूलाल मानते हैं कि जैविक खेती से हमें मिलने वाली उपज शुद्ध और सेहतमंद होती है, जिससे मिलने वाला पशु आहार भी शुद्ध होता है, जो पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। खुले खेत में खेती के साथ साथ बाबूलाल पॉली हाउस में भी खेती कर रहे हैं, जिसमें वो टमाटर और खीरे की फसलें लेते हैं। इसके अलावा उनके खेतों में नींबू वर्गीय पौधे, गोभी वर्गीय सब्जियां, तरबूज और टमाटर जैसी फसलें लगी हुई हैं। जैविक तरीके से तैयार की गई फसलों का उन्हें बाजार दाम भी अच्छा मिलता है। वो कहते हैं कि उनकी उपज के लिए उन्हें ग्राहक नहीं तलाशने होते, क्योंकि उपज की गुणवत्ता ग्राहकों को खुद उनके खेत तक ले आती है।
3: सब्जी लगाने का तो ऐसे अपन बढ़िया उसके भाव में ऊंची रेट में बिक जाती है, अपना माल बिल्कुल लंबे टाइम तक 2-3 दिन तक खराब नहीं होता है। उसी हिसाब से कि जैविक रासायनिक वाला 2 दिन में सड़ जाते हैं सब्जी वगैरह, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। और अपने क्या तुरंत बिक जाते हैं, इसे माल भी गिराएगी भी, अपने कहते यार आपकी चीज बहुत अच्छी है, हमको आपका माल ही चाहिए, उसी साथ वो भी ले देते हैं। मंडी में अपने भाव तेज रहते हैं, 1-2 रुपया सबसे अलग बिकते हैं, और क्वालिटी के हिसाब से भी सब टेस्ट वगैरह भी सब अच्छे होते हैं ना, अपने आप बिक जाते हैं। किसानों को सलाह ये देंगे कि आगे चल के अपन को जैविक खेती की तरफ चलो सब, और वैसे भी करना है, इतनी बीमारियां वगैरह फैल रही है, तो उसके हिसाब से अपन को अपना स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो जैविक खेती अपनाओ, और उसमें जैविक खेती से स्वास्थ्य सुधरेगा, देश सुधरेगा, अपन आगे बढ़ेंगे, सब यही होगा।
2: बाबूलाल जैसे किसान जैविक खेती को अपनाकर अपने खेत ही नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, अभी आपने सुना सफल किसान की कहानी को कि किस तरह से उन्होंने खेती बाड़ी से अपनी आय को दोगुना किया है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं।
1: और साथियों एक चीज और बता देना चाहते हैं, क्योंकि हम कार्यक्रम जो लेकर आते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी के माध्यम से, हम आपको बता देना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातें जरूरी हैं और हमारे किसान साथियों के लिए आय को दोगुना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। खासतौर पर उन किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके पास थोड़ी जमीन है और वो भी पथरीली इलाका उनके पास है और पानी रुकता नहीं है, तो सबसे पहले उनको हम बता देना चाहते हैं कि अब आने वाले बरसात के दिनों में हम किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा झाबुआ जिले में समस्या है पानी को लेकर, तो किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, खेत का पानी खेत में कर सकते हैं, सरकार की स्कीम्स का सरकार की योजना का फायदा लेकर हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, और साथ साथ में ऐसी खेती को हम विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान साथी ऐसी खेती करें, ऐसी जैविक पद्धति से खेती करें जिसमें कम पानी लगता हो, उत्पादन अच्छा होता है, लागत भी कम लगती है, उत्पादन अच्छा होता है। तो ऐसे किसान साथी जो हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए हमारे कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाकर संपर्क कर सकते हैं, साथ साथ में केवीके भी है, वहां पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। साथियों अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का, तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 94-25-41-36-03, इस नंबर पर कॉल करके आप हमें बता सकते हैं।
2: तो साथियों जी हाँ साथियों, तो आज का ये कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा दिए गए नंबर पर फोन करके हमें जरूर बताएं। अब इस कार्यक्रम से जाने के दीजिए हमें अनुमति, यानी कि आपकी आरजे वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत,
2: फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
1: और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से।

0: गीत को।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को, सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर बैठे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कब बारिश हो, और बारिश होने के बाद वो किसान साथी हमारे अगली फसल की तैयारी करेंगे। लेकिन साथियों, हमारे किसान साथियों को बता देना चाहते हैं, इससे पहले कुछ हमें अपनी जानकारी जुटाना चाहिए कि हमें कौन बीज अगली फसल में हमें बोना है। साथ साथ में हमें मेड़बंधान पर भी विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि झाबुआ जिले की बात करें तो पथरीला इलाका है। ऐसे में समतलीकरण अपनी जमीन को कर लेना चाहिए, अपनी खेती को कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक पानी उस खेत में नहीं रुकेगा तब तक नमी नहीं बनेगी और साथ साथ में पैदावार भी आपकी कम होगी। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जिस पथरीला चूंकि इलाका है, यहाँ पर पानी कितने सारे देते हैं तब पानी रुकता ही नहीं उसमें, तो कैसे अपने जो ढलान वाले खेत हैं, उबड़ खाबड़ वाले खेत हैं, उसको किस तरीके से उपजाऊ हम बना सकते हैं, समतलीकरण कर सकते हैं, चारों ओर मेड़बंधान कर सकते हैं, ये अभी खाली समय में हमारे किसान साथी काम कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो विशेष तौर पर उनको ध्यान देने वाली हैं। और यदि आपको लगता है कि हमें अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी जो झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं या फिर KBK बना हुआ है, वहां पर जाकर वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि हम कौन से बीज की तैयारी अभी से कर लें, उपचार के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम खेती को एक आधुनिक पद्धति से अपनी खेती को करना चाहिए, कैसे वैज्ञानिक ढंग से हमें खेती करना चाहिए जिससे हमारी लागत कम लगे और उत्पादन हमारा अच्छा हो। तो हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों बताते रहते हैं और हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारे फसल जो रहती है उस पर जो हम जो उत्पादन करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के जो फसल हम उत्पादन करके हम जो बेचते हैं, उसमें किस तरीके से GI टैग लगाया जाता है, इस पर विस्तार से आज जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। कौन सा कानून है, कैसे लगता है और इससे हमारे किसान साथियों को किस तरीके से लाभ हो सकता है, सारी जानकारी इस चर्चा में हम आप सुनेंगे। तो देर नहीं करते हैं, आपको सीधा इस चर्चा में ले चलते हैं और उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से GI टैगिंग हमारे भारत में की जाती है, कौन कौन से फसलों पर GI टैगिंग की जाती है और कैसे इसके GI टैगिंग का हमारे किसान साथी लाभ ले सकते हैं। तो आइए इस चर्चा को सुनते हैं, बने रहिए आपके RJ मनीष के साथ।

0: सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, अपना रेडियो अपनी बातें।
1: जीआई टैग या पहचान उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक में वहाँ की स्थानीय खूबियाँ मौजूद होती हैं। दरअसल जीआई टैग लगे किसी उत्पाद को खरीदते वक्त ग्राहक उसकी विशिष्टता और गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त रहते हैं। भौगोलिक संकेत टैग का मूल उद्देश्य दूसरे लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकना है। जीआई टैग के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को इस बात की सुरक्षा दी जाती है कि उनके उत्पाद की नकल कोई और व्यक्ति या संस्थान ना करे। देश में इसके लिए बाकायदा कानून है। ये कानून आश्वासन धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा देता है। यानी अगर कोई मलिहाबाद के नाम से बेचा जा रहा आम अगर मलिहाबादी नहीं है तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही धोखाधड़ी करने वाले पर कार्रवाई कर सकते हैं। और इस कानून के अंतर्गत किसी उत्पाद का पंजीकरण भौगोलिक उपदर्शन या संकेत कहलाता है। खेती के मामले में इसका फायदा किसानों को मिलता है। उपभोक्ता मशहूर जगह की असली कृषि उपज को ज्यादा भाव देने में गुरेज भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ की माटी का स्वाद, वहाँ की जलवायु की विशेषता और स्वाद की विशिष्टता इसमें समाहित होती है। इतना ही नहीं, ये टैग स्थानीय फसलों के संरक्षण का भी रास्ता साफ करता है। जीआई टैग मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, प्राकृतिक उत्पादों, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान के लिए दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत ने जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में उत्पादों का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को मंजूरी दी। ये अधिनियम 2003 से अमल में आया है। भारत में साल 2004-05 में दार्जिलिंग चाय से शुरू हुआ जीआई टैग का सफर करीब 370 उत्पादों तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि 370 में से 130 उत्पाद कृषि और खाद्य क्षेत्र के हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। अगर राज्यवार बात करें तो असम की तेजपुरी लीची, जोहार चावल, असम कार्बी एंगलोंग अदरक, बिहार का कतरनी चावल, भागलपुरी जरदालू, मगही पान और शाही लीची को जीआई टैग मिला है। छत्तीसगढ़ के जीरा फूल, गुजरात के गिर केसर आम, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय व हिमाचली काला जीरा और राजस्थान की बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग वाले उत्पादों से दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो रही है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग ने तब से और भी अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है जब से सरकार का ध्यान वोकल फॉर लोकल की ओर स्थानांतरित हुआ है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है।
2: तो अभी हम सब ने एक खास रिपोर्ट देखी जीआई टैगिंग यानी कि भौगोलिक पहचान के बारे में, थोड़ा बहुत तो जान लिया। तो फिर आइए इसके बारे में हमारे विशेषज्ञों से भी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर बजाज से यहाँ पर। जीआई टैगिंग की जब हम बात करते हैं, भौगोलिक पहचान की हम बात करते हैं, तो ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों है, इसके बारे में आप सबसे पहले जानकारी दें।
3: बहुत अच्छा सवाल पूछा आदिति आपने कि सबसे पहले जीआई यानी भौगोलिक पहचान की बात करते हैं। और शुरू में आपने कहा ही था कि असम की चाय और बनारस की साड़ियां, ये सब चीजें इतनी मशहूर होती हैं, जब भी कोई जाता है तो वो सोचता है कि इसको मैं जरूर खरीदूंगा, या अगर खाने पीने की चीज है तो इसका जरूर खाकर या उसका टेस्ट करके पता करूंगा कि ऐसा खास क्या है उसमें, और वाकई खास होता है। तो जीआई एक प्रोडक्ट, ये जो एक टैगिंग है, ये उरुग्वे राउंड के बाद जब ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था तब आर्टिकल 22 और 24 के तहत, तब ये कहा गया कि भाई हर भौगोलिक क्षेत्र की एक विशेष पहचान है, उस उत्पाद से जुड़ी हुई उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसकी एक खास विशेषता जुड़ी हुई है, तो उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, उसकी हमें उस पहचान को जो है वो बनाए रखना है कि हाँ ये जो उत्पाद है ये इस क्षेत्र का है और विशेष है, इसकी एक अपनी प्रतिष्ठा है। तो ये एक WTO के तहत एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत हुआ। अब उदाहरण जैसे आपने दिए, हमारे यहां अभी 415 के करीब जीआई टैग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए हमारा मलियाबादी आम है, केसर आम है, बैंगन पल्ली आम है, अल्फेंजो आम है, चाय है और इस तरह शाही लीची है बिहार की। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 415 के लगभग आज की डेट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 140 जो है वो कृषि उत्पाद है।
2: जी, तो 140 कृषि उत्पाद हम कह सकते हैं कि इनकी जीआई टैगिंग हो चुकी है। तो ऐसे में राजेंद्र कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे ये जीआई टैगिंग करता कौन है, इसके बारे में भी तो हमारे किसानों को पता होना चाहिए।
4: ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री
2: जी
4: ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की ब्रांच है
2: जी,
4: और वहां पर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अंडर द एक्ट, अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट, कोई भी एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स या बॉडी जो रिकग्नाइज्ड बाय लॉ है वो अप्लाई कर सकती है, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि हम एप्लीकेशन लेके चले गए और रजिस्ट्रार जो है उसको रजिस्टर कर देगा, उसके लिए अंडर द एक्ट काफी रिगरस रिक्वायरमेंट्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जो भी बॉडी जीआई रजिस्ट्री के सामने जाएगी वो एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, वो नॉन ट्रेडिंग न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, और दूसरी वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए। यानी कि एक एसोसिएशन है जिसके कुछ मेंबर्स रिकग्नाइज करते हैं उसको और कुछ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद एक इंस्पेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए। इंस्पेक्शन मैकेनिज्म सर्टिफाई करेगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे डॉक्टर बजाज ने बताया, एट्रीब्यूटेबल टू दैट रीजन है या नहीं
2: जी।
4: क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स जो लुक अलाइक होते हैं लेकिन वो उस रीजन से आते नहीं है, तो उसके लिए इंस्पेक्शन बॉडी जरूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जरूरी है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अब जब हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं तो हम पब्लिक राइट्स की बात करते हैं, वो राइट्स जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जैसे हम कोई ट्रेडमार्क या प्राइवेट राइट्स की बात करते हैं वो प्राइवेट ट्रेडर्स की होती हैं, लेकिन जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं वो कम्युनिटी को दिए जाते हैं
2: जी।
4: और ये जो बॉडीज जो होती हैं ये कस्टोडियंस होती हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फाइल होने के बाद उसका एग्जामिनेशन किया जाता है और अंडर द एक्ट एक टेक्निकल कमिटी है, उसका प्रोविजन है जो उसको एनालाइज करती है, जो उसको देखती है कि ये जो जीआई प्रोडक्ट है वर्दी ऑफ प्रोटेक्शन है या नहीं, उसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स उस फील्ड से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद फिर एप्लीकेशन एडवर्टाइज होती है, 4 महीने का टाइम दिया जाता है, कोई भी एग्रीड पर्सन वहां पर अपोज कर सकता है, और उसके बाद फिर अगर कोई ऑपोजिशन नहीं होती है तो वो रजिस्टर हो जाता है, वो जीआई रजिस्टर हो जाता है। अगर नहीं होगा तो ऑपोजिशन जो है वो चलती है। तो इस तरह से ये जीआई प्रोसेस कंप्लीट होता है
2: जी। तो पूरी प्रक्रिया इस तरह से होती है, इन बातों को जरूर ध्यान में यहाँ पर रखने की जरूरत हो जाती है। तो अब मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, धान हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की बहुत प्रमुख फसल है और उसकी बासमती की हम बात करें तो पहचान है, हमारे देश से बहुत ही अच्छे स्तर पर निर्यात भी होता है। तो ऐसे में बासमती के लिहाज से जीआई टैगिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हमारे किसान और इसकी ओर बढ़ना चाहे तो?
5: देखिए अदिति, धान जैसा आपने भी कहा और पूरे विश्व में ये जानकारी है कि धान भारत के लिए विशेष तौर पर बासमती धान बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है
2: जी।
5: इसके लिए हमारे किसान जो हैं वो विशेष तौर पर इसके इसके लिए जिम्मेदार हैं
2: जी।
5: लेकिन चूंकि धान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो उसकी उपज से लेकर और उसके निर्यात तक
2: जी,
5: उसके लिए हमें विशेष प्रयास करने होते हैं। अब धान के लिए भारत सरकार ने विशेष प्रयास किए, अपीडा को इसका अधिकार दिया कि वो बासमती को जीआई टैगिंग करे और इसी परिणाम स्वरूप 2016 में हमें बासमती धान, बासमती चावल का जीआई टैग, जो जैसा अभी राजेंद्र जी ने बताया, चेन्नई जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफिस से उसका अधिकार अपीडा को मिला
2: जी।
5: उसके बाद से अब तक पूरे जोर शोर से अपीडा इस प्रयास में कार्यरत है, इस प्रयासरत है कि हम कैसे ये जीआई टैगिंग को हम भारत से निकलकर बाहर जहां जहां हमारा हम करीब करीब 170 देशों में बासमती एक्सपोर्ट करते हैं और उन सभी देशों में जाएं और अपने इस जीआई टैग को वहां भी रजिस्टर करें जिससे हमारे किसानों को सीधा सीधा उस बात का फायदा मिले, उसका लाभ मिले, क्योंकि जितना हम निर्यात करेंगे उतना ही हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा।
2: बिल्कुल। तो जीआई टैगिंग के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का बदलाव आपने एक्सपोर्ट में देखा है, निर्यात में किस तरह का बदलाव आया है जब से जीआई टैगिंग हुई है।
5: देखिए, जीआई टैगिंग से एक बहुत बड़ा लाभ जो उस उत्पादक उत्पाद का जो मालिक है उसको मिलता है। जीआई टैग का, जैसे कि अभी बजाज साहब ने भी बताया, जीआई टैग अपने आप में एक विशेष उत्पाद है, तभी उसको जीआई टैग मिलेगा। और जब उत्पाद विशेष है तो स्वाभाविक है उसका मूल्य भी विशेष मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कारण है कि बासमती के उत्पाद से हम बहुत लाभ, पूरा देश और हमारे देश के पूरे किसान इस बात का लाभ उठाते हैं और पूरे संसार में हम लोगों को बासमती खिलाते हैं, इसके लिए श्रेय हमारे किसानों को जाता है।
2: बिल्कुल, इसका पूरा श्रेय जो है हमारे किसानों को जाता है और हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन भी रहा है और हमारे किसानों का ही इसमें बहुत बड़ा हाथ है, सहयोग है। बढ़ना चाहेंगे आगे, डॉक्टर बजाज आपके पास हम यहां पर आना चाहेंगे। आपने बताया कि 140 के करीब कृषि उत्पाद है जिनको जीआई टैगिंग मिल चुकी है, लेकिन अगर हमारे किसान या फिर कहें कि और संगठन वगैरह अलग अलग उपज की जीआई टैगिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कहां आवेदन करना होगा, क्या प्रक्रिया रहती है उसकी?
3: बहुत से ऐसे उत्पाद हैं, जैसे अभी कहा कि केवल 140 ऐसे उत्पाद हैं जो कि अभी जीआई रजिस्टर हुए हैं और हमारे तो हिंदुस्तान में बहुत सी जो उत्पाद हैं जो कि विशेषता रखते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं भारत की अतुल्य, भारत की अमूल्य निधि ये कहा जाता है। तो बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र विशेष की प्रतिष्ठा लिए हुए हैं, तो उनको रजिस्टर कराने के लिए जैसा अभी राजेंद्र जी ने कहा था कि एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे बासमती चावल है वो हर उस किसान का हकदार है जो बासमती उगाता है, तो इसीलिए जो उत्पाद है उसको एक कोई एजेंसी जो है, चाहे वो सरकारी एजेंसी हो या गैर सरकारी संस्था हो जो कि सच में हकदार है उसका कस्टोडियन बनने की, उसको लेकर वो रजिस्ट्री में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं और उसका फिर पूरा प्रोसेस है रजिस्टर कराने के लिए, जैसा भी राजेंद्र जी ने बताया था कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और उसके बाद कस्टोडियन बनना भी आसान नहीं है। मैं अगर एक उसका जीआई का कस्टोडियन बन गया तो उसकी पहरेदारी भी करनी है मेरे को, जैसे हम बासमती की पहरेदारी भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं दुनिया में कोई जो है वो बासमती ना कहलाए, हम कहते हैं जैसे ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन होता है ना कि मेरे ट्रेडमार्क को कोई दूसरा ना इस्तेमाल कर ले, इसी तरह जब एक जीआई रजिस्टर हो जाता है तो उसका एक पहरेदारी भी करनी पड़ती है, प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है, भाई दूसरे को तुम नाजायज, हम उसका बगैर हमारी मर्जी के हम उसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे क्योंकि ये एक विशेष अधिकार है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जिसका वो उत्पाद है उसको हम प्रीमियम मिलता है, दूसरे उत्पाद में उसको पता होता है कि ये जो भी खरीद रहा है उसको मालूम है कि ये एक विशेष चीज है जो मैं खरीद रहा हूं और इससे मुझे जो है एक अच्छा जो है वो और कहीं नहीं मिलता दुनिया के कोने में, एक यहीं पर ये चीज मिलती है और उसका एक प्रीमियम भी उनको दिया जाता है। तो इसीलिए इसका जो है वो रजिस्टर संस्था कर सकती है, चाहे सरकारी या गैर सरकारी हो, और फिर उसका कस्टोडियन भी बनना पड़ता है।
2: बिल्कुल। तो आपने कहा कि एक संस्था यहां पर जीआई टैगिंग के लिए आवेदन आगे बढ़ा सकती है, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या फायदा लाता है ये जीआई टैगिंग, किस तरह से फायदेमंद साबित होता है? राजेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप, हमारे किसानों के लिए जीआई टैगिंग कितना फायदेमंद है?
4: मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा।
2: जी बिल्कुल।
4: दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी का प्रोटेक्शन 1986 से फॉर्मल ढंग से स्टार्ट हुआ क्योंकि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट है ये 2003 में आया, 15 सितंबर 2003 में, उससे पहले भी इंडिया में स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन रही और दार्जिलिंग टी जो है एक सर्टिफिकेशन मार्क है। तो 2018 में वर्ल्ड बैंक और एफएओ ने एक स्टडी स्पॉन्सर की थी जिसमें 6 ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस वर्ल्ड वाइड से सेलेक्ट किए गए थे, उसमें दार्जिलिंग टी भी थी और उस स्टडी का फोकस था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन से क्या फायदा होता है। तो उसमें दार्जिलिंग टी के बारे में ये बताया गया कि जब से दार्जिलिंग टी की प्रोटेक्शन स्टार्ट हुई है तो उसका बेनिफिट जो वहां पे स्टेट्स हैं, जैसे हमारे किसान भाइयों को पता होगा कि दार्जिलिंग टी सिर्फ 87 टी गार्डन्स में ही प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि सारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ही दार्जिलिंग टी प्रोड्यूस करता है। सिर्फ 87 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे दार्जिलिंग टी होती है, और वहां पर मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स वो विमेन है, तो उनका एम्पावरमेंट जब जीआई प्रोटेक्शन से होता है तो उनके लिए स्कूल्स, हर टी गार्डन ओनर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं वो गार्डन में देता है। तो उस स्टडी का कंक्लूजन ये निकला कि दार्जिलिंग टी की वैल्यू टुडे इन कंपैरिजन टू जो ऑर्डिनरी टी है वो इतनी ज्यादा है जीआई प्रोटेक्शन की वजह से। और दार्जिलिंग टी वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्टेड है, उसको जो है यूरोपियन कमीशन ने भी ए जीआई टैग दिया था, और वो जीआई टैग मिलने के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ दार्जिलिंग टी बढ़ गए हैं, और जैसे ही एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उसका जो बेनिफिट जो है ग्रास रूट्स पर जो वर्कर्स हैं जो वहां पे काम करते हैं उन पे होता है। ऐसा ही बासमती राइस पे भी होगा, इनफैक्ट बासमती राइस का प्रोटेक्शन भी जो है उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है, और अब जो है बासमती राइस जो है वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होता है, जैसे डॉक्टर शर्मा जी ने बताया, और उसका प्रोटेक्शन भी उसी लेवल पे चल रहा है जो दार्जिलिंग टी का है।
2: जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर फायदे तो अनेक हैं अगर हम जीआई टैगिंग करते हैं। रुक करना चाहेंगे अब डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, आपने कहा कि अब यहाँ पर कवायदें चल रही हैं, कोशिशें चल रहे हैं कि अलग अलग देशों में भी जीआई टैगिंग हो सके हमारे बासमती चावल की, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जीआई टैगिंग किस तरह से काम करता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
5: देखिए अदिति, जैसा कि हमारे घरेलू सिस्टम में एक जीआई रजिस्ट्रार है, उसको हर किसी कोई भी प्रोडक्ट को रजिस्टर करने का एक तरीका है
2: जी।
5: इसी तरीके से अगर हम विदेशों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहां भी लगभग वैसे ही तरीके सामने आते हैं हमारे, और अगर हम वहां अपने जीआई टैग प्रोडक्ट को अगर वहां नहीं कराते हैं रजिस्टर, तो हो सकता है वहां कोई हमारे हमारे चीज के नाम को का दुरुपयोग करके वहां वो बेचता रहे। इसलिए यदि हमें अपने जीआई प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसको संभाल कर रखना है, तो ये जरूरी है कि हम अपने उस उत्पाद को जहां भी हमारा मार्केट है, हमारा जो मुख्य मार्केट है, उस मार्केट के उन देशों में जाएं और अपने उस उत्पाद को वहां भी रजिस्टर करें। इसी कड़ी में अपीडा ने एक बड़ी पहल की बासमती के लिए, क्योंकि बासमती हमारे लिए बहुत बड़ा उत्पाद है
2: जी।
5: अगर मैं दो दशक की बात करूं, 2002-03 के लगभग बासमती का जो एक्सपोर्ट था वो करीब करीब 7 मिलियन के करीब था, आज वो बढ़कर करीब 45-46 मिलियन टन हो गया। तो इस बड़े उत्पाद को, जिसका कि पूरा का पूरा लाभ और श्रेय हमारे किसानों को जाता है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम विदेशों में जो हमारे ग्राहक जो देश है, उन सभी देशों में प्रयासरत हैं कि हम बासमती को जैसा हमने भारत में रजिस्टर कराया एक जीआई प्रोडक्ट, उसी तरीके से हम विदेशों में भी जाएं और अपने इस बासमती को एक जीआई टैग के तहत वहां भी रजिस्टर कराएं। और इस कड़ी में हम करीब करीब 20 के करीब देशों में हम हमारी एप्लीकेशन जो है, हमारे प्रार्थना पत्र वहां चले हुए हैं, और इस कड़ी में करीब करीब 8 देशों में हम ऑलरेडी या तो जीआई ले चुके हैं या बासमती का हमारा एक लोगो है, या तो हमने लोगो को रजिस्टर कराया है। तो ये रजिस्टर कराने से क्या होगा कि हमारा उस देश में भी हमारा बासमती प्रोटेक्ट रहेगा, कोई और उसकी नकल नहीं कर सकता, उस नाम को मिसयूज नहीं कर सकता, और हमारे जो किसान है, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ जो बासमती है वो धड़ल्ले से वहां बिकेगा और उसका पूरा लाभ उनको मिलेगा।
2: हमारे किसानों ने जो कड़ी मेहनत से बासमती यहां पर तैयार किया है, उसकी पहचान बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, कोई भी उसका दुरुपयोग, उसके नाम का दुरुपयोग यहां पर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर बजाज, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जब किसी भी कृषि उत्पाद को यहां पर जीआई टैगिंग मिलती है, तो ऐसे में जो आसपास के क्षेत्र के किसान हैं या फिर उसी क्षेत्र के हम किसानों की बात करें, तो उन्हें किस तरह से फायदा मिलता है इसका?
3: सभी को फायदा मिलता है
2: जी।
3: जब जीआई टैगिंग हो जाता है तो जैसे ये कहा कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है
6: जी।
3: अब बासमती जीआई टैग हुआ तो जहां जहां बासमती उगाया जाता है वो उसका सबको लाभ मिल रहा है, ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष का लाभ रह गया। जो अपने उस क्षेत्र को जो कि आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं उस आइडेंटिफाइड क्षेत्र से अगर वो अपना उत्पाद लेकर आता है तो वो उसका वही उत्पाद है और उसको वो उसका जो प्रीमियम है वो क्लेम कर सकते हैं। खाली बासमती की हम बात कर रहे हैं, इसी तरह बहुत से जैसा मैंने कहा अभी दार्जिलिंग चाय की बात करी, आम है, हमारे अंगूर हैं, शाही लीची है और भी बहुत से ऐसे उत्पाद और प्रोसेस फूड हैं जैसे रसगुल्ला है, बहुत से ऐसे खास जो उत्पाद हैं हर क्षेत्र के जुड़े हुए, तो उनके जो उत्पाद हैं जो

0: जो उन उत्पादों को उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सदियों से उसका उत्पादन कर रहे हैं, उनको लाभ मिलता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बेचने में आसानी है, क्योंकि खरीदार को पता है कि ये विशेष है, मैं जाता हूँ वहां जाएंगे। आप छोटी सी बात समझिए, आप भी कहीं जाते हैं, बोले फला खाने की चीज बड़ी मशहूर है, तो आप चाहे थोड़ी दूर ही क्यों ना जाना चाहे, वहां जाते हैं और वहां जाके एक जरूर खाते हैं और बार बार जाते हैं। इसी तरह ये या जाते हैं जब कभी आप किसी राज्य में जा रहे हैं, किसी जगह पे जाते हैं, बोलते हैं कि वहां की एक खास चीज है। जैसे मैंने कहा बनारस की साड़ियां बहुत मशहूर हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं जरूर वहां खरीदूं और उसका जो है वो मुझे भी लाभ मिले।
1: बिल्कुल, कश्मीर जा रहे हैं तो शॉल लेना बहुत जरूरी हो जाता है,
0: केसर खरीदेंगे वहां का।
1: तो ये दक्षिण में जा रहे हैं तो यहाँ का सिल्क बहुत मशहूर है। बिल्कुल,
0: तो बेचना आसान है और दूसरा ये कि उसका फिर उसको प्रीमियम भी मिलता है, क्योंकि खरीदार को भी मालूम है कि मैं जो खरीद रहा हूँ वो एक विशेष चीज है, ये आम चीज नहीं है जो मैं खरीद रहा हूँ, ये मुझे सिर्फ इसी क्षेत्र से, इसी व्यक्ति विशेष से, इसी जो है वो एरिया से मिलती है। तो इसलिए एक उसको भी एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ, एक यूनिक प्रोडक्ट को मैं खरीद रहा हूँ।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर बजाज आप कह रहे हैं कि एक प्रीमियम मिलता है कस्टोडियन को, तो ये प्रीमियम कौन देता है और इससे फायदा क्या होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
0: खरीदार देता है ना प्रीमियम, वो खरीदार जो है वो जाता है, उसको एक तो उसको पता है कि धान, जब उदाहरण जब आपने दिया बासमती का ही, तो बासमती के जो खरीदार है वो जो रेट देगा और दूसरे जो धान है उसमें फर्क तो रहता ही है
1: जी।
0: तो बासमती का सबसे महंगा चावल, बहुत सी वजह है, उनमें से एक वजह तो ये भी है कि वो GI टैग है और दुनिया भर में बासमती को हम ठीक दाम पर बेचते हैं, लोग इसको जो है एक्सपोर्ट में हमें प्राइसेस भी अच्छे मिलते हैं, जिसका ऑफकोर्स किसानों को लाभ भी मिलता है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये GI टैग है, और भी बहुत सी बातें हैं उसकी विशेषता है, लेकिन विशेषता ये भी है क्योंकि ये GI टैग है, एक खास भौगोलिक पहचान है इसकी।
1: बिल्कुल, GI टैगिंग मिल गई है तो विश्व भर में उसकी पहचान हो गई है, विश्व की नहीं अपने देश की बात कर ले तो पहचान हो गई है। जब भी कभी वहां उस क्षेत्र में जाते हैं तो हम उसका स्वाद या फिर उस चीज को लेना जरूर पसंद करते हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि हम कोई भी उत्पाद यहां पर तैयार कर रहे हैं तो उसकी GI टैगिंग जरूर करवा लें। फायदे अनेक हैं, हर एक को इससे फायदा मिल सकता है, और किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है GI टैगिंग और इसकी जो प्रक्रिया है उसमें क्या किसी तरह की कोई समस्या भी आती है, इस पर भी हमारी चर्चा को हम जारी रखेंगे।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: कृषि उत्पादों की भौगोलिक पहचान के बारे में, जी हाँ, जीआई टैगिंग पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। क्या होती है ये, किस तरह की इसकी प्रक्रिया रहती है, इसके बारे में तो हमने जान लिया और इससे फायदे क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी विशेषज्ञों ने हमें विस्तार से बताया है। लेकिन जब हम इस प्रक्रिया में जाते हैं तो कुछ समस्याएं तो जरूर आती होंगी, जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगी राजेंद्र कुमार जी से कि जब हम जीआई टैगिंग पर जाते हैं तो कुछ समस्या तो आती होंगी, हमारी एजेंसियों को या संगठनों की बात करें तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जब जीआई एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के सामने जाती है तो एक समस्या होती है कि जब एग्जामिनेशन होता है उसका, उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स जब उसको एनालाइज करते हैं तो उनका मेन फोकस होता है कि ये स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं ये साइंटिफिकली एक्यूरेट हैं या नहीं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो ऑथेंटिक है या नहीं। क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी ऐसा होता है जैसे कोई इंटरनेट से कोई डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के तौर पे जो है पास ऑफ किए गए, वो ऑथेंटिक सोर्स बहुत जरूरी है। और उसके बाद जरूरी होता है कि इंस्पेक्शन मैकेनिज्म्स कि जो बॉडी रजिस्ट्रेशन के लिए जारी है उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस प्रोडक्ट को एनालाइज करने का, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एसोसिएट करते हैं उस प्रोडक्ट को उस रीजन के साथ, और जब तक वो इंस्पेक्शन मैकेनिज्म उसका उसके पीछे नहीं होगा तो कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कश्मीरी कारपेट्स
0: जी।
1: अब कश्मीरी कारपेट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए जो बॉडी जिसने रजिस्टर कराया है कश्मीरी कारपेट एज ए जीआई, उन्होंने क्यूआर कोडिंग की है। जब आप कारपेट लेने जाते हैं तो उसमें क्यूआर कोडिंग है और कोई भी स्मार्टफोन से किसी भी डिवाइस से उस क्यूआर कोड से ये मालूम कर सकता है कि ये कहाँ किस रीजन से है, किस वीवर ने इसको वीव किया है। तो इसलिए जब कभी भी मार्केट में कश्मीरी कारपेट बिकता है तो उसके ऊपर जो क्यूआर कोड लगाता है उससे कस्टमर जो है वो मालूम कर सकता है कि ये जेन्युइन कश्मीरी कारपेट है। तो ये जो सिस्टम है वो रजिस्ट्रार ऑफ जीआईज एग्जामिन करता है। और उसके बाद एक और मुद्दा आता है कि रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द बॉडी कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, कि कभी कभी जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो उस पूरे प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। बहुत एग्जांपल्स आते हैं, हैदराबाद बिरयानी का एग्जांपल बड़ा फेमस है जिसमें वो जब रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो जो बॉडी थी वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी और उन्होंने जो है वो अपना टाइटल प्रूव नहीं कर पाए तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का होना, इंस्पेक्शन मैकेनिज्म का होना, ट्रेसिबिलिटी का होना और फिर जो है जो ओवरऑल सुपरविजन है उसके बाद फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। और जैसे मैंने पहले समझाया उसके बाद कोई भी अपोज भी कर सकता है एप्लीकेशन, और ये अपोजिशन कहीं से भी आ सकती है, हिंदुस्तान से ही नहीं, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
0: और जैसे आपने कहा कि उसके विरोध में भी यहाँ पर सवाल उठाए जा सकते हैं, ऑपोजिशन हो सकता है, तो ऐसे में फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है, उसका जस्टिफिकेशन किस तरह से दिया जाता है?
1: उसका जस्टिफिकेशन रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के सामने जो कि क्वेजाई जुडिशियल बॉडी है, जैसे कोर्ट्स होते हैं तो उसमें वो एविडेंस एग्जामिन होता है, जिसे दूसरी बॉडी ये कहती है जो अपोज करती है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज ये नहीं है
0: जी,
1: ये होनी चाहिए, या इसका एरिया इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा होना चाहिए। तो इस टाइप की ऑपोजिशंस आती हैं और उसको भी जो है थ्रू प्रॉपर जुडिशियल माइंड एग्जामिन किया जाता है कि ये सच है या नहीं। इनफैक्ट ये जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रिप्स एग्रीमेंट डॉक्टर बजाज जी ने बताया, उसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 24.9, वो ये कहता है कि अगर कोई जीआई डोमेस्टिकली प्रोटेक्टेड नहीं है तो किसी कंट्री के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर उसकी जो स्क्रूटनी होती है, उसका एग्जामिनेशन होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे बासमती का एग्जाम्पल दिया, दार्जिलिंग टी का एग्जाम्पल दिया, ये डोमेस्टिकली रजिस्टर्ड है
0: जी।
1: और इसीलिए जो है बाहर की कंट्रीज, बाहर के कोर्ट्स उसको रिकग्नाइज करते हैं कि हमने हिन्दुस्तान में उसको प्रोटेक्ट किया।
0: बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ यहाँ पर समझाया है राजेंद्र जी ने। हम उम्मीद करते हैं कि अब भी अगर आप जीआई टैगिंग के लिए जाएंगे तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे कि किस तरह से आपको कौन कौन से हम कह सकते हैं दस्तावेजों की जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है जिससे आप जीआई टैगिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब हम डॉक्टर शर्मा के पास आना चाहेंगे। डॉक्टर शर्मा, जब हम किसी कृषि उत्पाद की जीआई टैगिंग की बात करते हैं तो उससे हमारे किसानों को ही फायदा नहीं होता बल्कि फसलों को भी उससे काफी फायदा होता है। फसल संरक्षण की हम बात करें तो उससे भी काफी मजबूती मिलती है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि फसल संरक्षण किस तरह से और बेहतर तरीके से किया जा सकता है अगर हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं तो।
2: देखिए अदिति, बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग कोई भी उत्पाद का जीआई टैग ले लेते हैं, लेकिन ये उससे भी महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए कि उस जीआई टैग को हम कैसे संभाल कर रखें
0: जी,
2: और कैसे उस उत्पाद के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि यदि हम उस टैग का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा टैग लेने का कोई विशेष लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जैसे हमने बासमती का जीआई टैग लिया, हम पूरे विश्व में बासमती चावल जो है लोगों को खिलाते हैं और लोग पसंद करते हैं। उसमें विशेष अरोमा है, उसकी एक अपनी लेंथ है, उसकी एक ब्रेड्थ है, उसमें जो बायोकेमिकल जो बासमती के साथ जुड़े हुए हैं, जो कुदरती रूप में जैसे जैसे जिन जिन इलाकों में बासमती होता है उनमें वो होगा ही होगा। तो हमें ये भी पक्का सुनिश्चित करना है कि वो सारी जो क्वालिटी, वो जो मानक जिनको हम कहते हैं या स्टैंडर्ड हम कहें, वो स्टैंडर्ड बासमती उत्पाद जो हमारा निकले, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ बासमती, वो सारे के सारे मानक उसमें पूरे हों। यदि वो मानक पूरे नहीं होंगे तो अगर मान लीजिए कल को हमने कोई बासमती के नाम पर हमने चावल भेज दिया यूके में और वहां लोगों ने देखा, या जो हमारे कंज्यूमर हैं वो बड़े समझदार हैं, कंज्यूमर को अगर कल को पता लगेगा नहीं ये तो बासमती जैसा नहीं है, तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब वो कोई भी उत्पाद, वो बासमती हो या कोई अन्य जीआई टैग उत्पाद हो, जब वो उसका उत्पादन करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करें
0: जी।
2: यदि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका एक अच्छा मूल्य मिलता है, अच्छा भाव मिलता है, उसके एक्सपोर्ट करने में कोई समस्या नहीं आती है और किसानों के रूप में अगर हम बात करें तो हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा है, माला माल है।
0: बिल्कुल, तो मानक के अनुरूप यहाँ पर उत्पादन करना बहुत जरूरी है। ऐसे में ही उपभोक्ता जो है ज्यादा से ज्यादा उस हम कह सकते हैं उत्पाद का खरीदेंगे या फिर सेवन भी करेंगे। तो ऐसे में डॉक्टर बजाज आपसे जानना चाहेंगे, जीआई टैगिंग हो गई है लेकिन उन मानकों के अनुरूप उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, इस अवस्था में क्या होगा?
3: बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा दी थी, क्योंकि जीआई टैग लेना ही खाली काफी नहीं है। अब उसके बाद जैसे बासमती, तो चलो उदाहरण हम बार बार दे रहे हैं, दार्जिलिंग चाय का भी उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि पहले से ही बहुत वॉल्यूम में उसकी उपलब्धता है
0: जी।
3: ऐसे कई उत्पाद हैं जिनकी हमारे पास है तो सही, जीआई टैग भी ले लिया हमने, लेकिन उतना जो है उसकी वॉल्यूम में उपलब्धता नहीं है और उपलब्धता अब उसकी होनी चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि हम सब एक, जो भी उस क्षेत्र के जो किसान हैं वो अब एकजुट हों, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब इसका जो है एक भौगोलिक पहचान हो गई है उत्पाद की, तो उसके साथ जुड़े किसान या किसान जो उनके साथ हैं जो प्रोसेसिंग में भी जा रहे हैं, क्योंकि खाली फसलों का ही या उन्हीं का ही जीआई टैग नहीं होता, जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उनका भी जीआई टैग होता है, तो इनके साथ भी जुड़े हुए हैं वो एक क्लस्टर अप्रोच में चलें जिससे कि वो मिलकर एक वॉल्यूम दे सके, क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा थोड़े थोड़ी चीज से उसका कोई लाभ नहीं होगा। कई ऐसे उत्पाद हैं जो महीने में, साल में एक महीना होते हैं और उसको बेच दिया और 12 महीने उसको खत्म हो गया, उसको कोई लाभ नहीं है। तो सबको मिलकर क्लस्टर अप्रोच लेके चलना है और एक FPO बनाकर, FPCs बनाकर उसको कोशिश करनी है कि हम लोग वॉल्यूम दें। जिससे कि वॉल्यूम होने से क्या फायदा होगा, एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, दूसरा हम वॉल्यूम होने से हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट के लिए वॉल्यूम चाहिए, उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और अपने घरेलू बाजार में भी हम बेच पाएंगे। उससे जब कॉस्ट कम आएगी, ज्यादा हमारा बिक्री होगी, तो उसका लाभ जो है वो नीचे तक जाएगा। बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने वॉल्यूम को बढ़ाएं, कॉस्टिंग को ध्यान रखें और अपनी जो एक विशेष पहचान है उसको बनाए रखें। उसके अलावा जो हमारी जो जीआई टैग को अगर इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहा है उसको भी बचाने की पूरी कोशिश करें। ये एक तरह का ट्रेडमार्क है आपका, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये मेरी चीज है जिसको मैं या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे।
0: बिल्कुल, तो इस बात का भी जरूर यहां पर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने बताया कि ऑथेंटिसिटी यहां पर हो जाती है जब हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उपभोक्ताओं के मन में ये सवाल रहता है कि क्या ये सच में कश्मीर का शॉल है, क्या ये सच में लखनऊ का आम है। ऐसे में क्या कह सकते हैं आप हमारे उपभोक्ताओं को कि किस तरह से ऑथेंटिसिटी यहां पर प्रूव हो?
1: जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, कश्मीरी कारपेट्स में क्यूआर कोडिंग
0: जी
1: एक वन ऑफ दी मींस चूज किया गया है, जिससे कंज्यूमर अपने आप ही ऑथेंटिकेट कर सकता है कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं।
0: जी,
1: ये प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, जैसे दार्जिलिंग टी है या बासमती राइस है या अल्फोंसो मैंगोज है, उसमें ऑथेंटिसिटी का प्रूफ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जैसे एरोमेटिक राइसेस हैं, एरोमेटिक राइसेस एक जैसे ही लगते हैं, और ये समस्या जो है हमारे सामने आई थी 1998 में। एक यूएस की कंपनी राइसटेक, उसने पेटेंट लिया और उस पेटेंट में ये कहा गया कि बासमती राइस जो है कोई नेचर का गिफ्ट नहीं है, इसको कहीं भी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उन्होंने एक राइस अपने हाइब्रिडाइजेशन से बनाया, उसकी क्वालिटी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही थी जैसे बासमती राइस की होती है, एरोमेटिक लॉन्ग ग्रेन, और उन्होंने कहा कि ये राइस जो है हम यूएस में ही ग्रो करेंगे। तो उस पेटेंट से हिंदुस्तान काफी रैटल्ड हो गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें एपीडा और सीएसआईआर का बहुत रोल था, उन्होंने वो एप्लीकेशन फाइल की, रेवोकेशन की यूएसपीटीओ के सामने, और ये प्रूफ किया कि ये जो प्रोडक्ट है बासमती राइस, ये यहीं प्रोड्यूस हो सकता है, इसमें कुछ क्वालिटीज हैं जो नेचर ने दी है और उसको जो है कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और इस एफर्ट की वजह से वो पेटेंट जो है रिवोक हो गया, वहां की अथॉरिटी ने, वहां के कोर्ट ने उसको रिवोक कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो प्रोटेक्शन है उसको इस तरह से डिफाइन करें कि हम एनफोर्स भी कर सकें। टर्मरिक पाउडर का एग्जांपल आता है, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, यूएस कंपनी ने उसको पेटेंट किया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जो है रिवोक किया, तो उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज की जरूरत पड़ी हमें। हमें ये प्रूव करना पड़ा कि जो टर्मरिक पाउडर है हमारा, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का पार्ट है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, और उसको कोई भी जो है उस पर पेटेंट नहीं ले सकता।
0: तो बिल्कुल, तो ये सब हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी प्रूफ यहां पर होता है, लेकिन यहां पर जीआई टैगिंग जो करवाते हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि मानकों का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़े। अब हम निर्यात की यहां पर फिर से एक बार बात कर रहे थे, डॉक्टर बजाज आपके पास आना चाहेंगे। हम एपिडा की बात करते हैं, तो कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए शीर्ष संस्थान माना जाता है। जीआई टैगिंग होने के बाद निर्यात में किस तरह का बदलाव देखते हैं आप लोग, इस पर क्या कहेंगे हमारे किसान, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस ओर बढ़ सके, इसके लिए हम जानना चाहेंगे।
3: अब एपिडा पूरा निरंतर प्रयासरत है कि जो भी जो जीआई टैग है, जो भौगोलिक पहचान के उत्पाद हैं, उनका अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके, और निर्यात बढ़ भी रहा है। वैसे मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, हम लगभग 3,00,000 करोड़ से ज्यादा कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं, दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में निर्यात हो रहा है, और लगभग हर साल ये निर्यात जो है वृद्धि की ओर ही जा रहा है। पिछले साल तो हमने करीब 29% की वृद्धि दी इसमें।
0: बिल्कुल, तो बहुत ही बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं, सकारात्मक बदलाव यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल, बताएं क्या कह रहे थे आप।
3: तो भौगोलिक पहचान के जो उत्पाद हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि जो भौगोलिक पहचान के हमारे उत्पाद हैं, जैसा मैंने कहा अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है ये हमारी, तो इसका लाभ जो है वो जो उसके हकदार दुकानदार हैं उन तक मिलना चाहिए और जो उपभोक्ता हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए कि वो भी इसका उपयोग कर सके। तो एक विशेष अभियान चलाया हम लोगों ने, हम बायर सेलर मीट कर रहे हैं, क्रेता विक्रेता सम्मेलन कर रहे हैं, हम यहां से जो है उत्पादों को ले जाकर उनका विशेष जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं दुनिया भर में, जिससे कि लोगों को बताएं कि ये जो विशेष जो उत्पाद है ये सिर्फ हिंदुस्तान में एक विशेष क्षेत्र का ही उत्पाद है, हर जगह से नहीं मिल सकता है। तो एक अच्छी एक जो है वो खरीदार को भी अच्छा लगता है उसको खरीदने में और उसका लाभ भी उसको मिलता है। विशेष अभियान चल रहा है, बहुत प्रमोशन हो रहा है और बैकवर्ड लिंकेज जैसे मैंने कहा उस तरफ हम काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसका वॉल्यूम मिले, उत्पादन हो और बहुत जरूरी है कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बनी रहे, इस तरफ भी ध्यान रखते हैं। और बहुत जरूरी है कि अगर जीआई ले लिया तो उसका प्रोटेक्शन भी रखना है, ये ना हो कि मैं तो जीआई लेके बैठ गया और दूसरा कोई जो है उसी उत्पाद को जो है उसी नाम से बेच रहा है, ये भी नहीं होने देना, इसको भी हम लोग प्रयास रहते हैं।
0: बिल्कुल, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है, बिल्कुल इस ओर हमें बिल्कुल ध्यान देना है। निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि डॉक्टर बजाज ने बताया है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, फायदा हो रहा है हमारे देश को, हमारे देश की एक अलग पहचान बन रही है विश्व स्तर पर। तो ऐसे में हम सभी को इस ओर भी खास ध्यान रखते हुए आगे अपने कदम बढ़ाने होंगे। हम भी फिलहाल बढ़ते हैं आगे और यहां पर मैं डॉक्टर शर्मा का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो जीआई टैगिंग बहुत सारे उत्पादों की हुई है, लेकिन खास तौर पर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में ज्यादा ऐसे उत्पाद देखने को मिलते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी के क्षेत्र के जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा?
2: देखिए, ये निश्चित रूप से आदित्य आपकी बात सही है और हमारे उत्तर भारत के जो किसान हैं उनको भी ये जरूरत है कि वो भी जैसे हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, वहाँ छोटे छोटे कई ऐसी उत्पाद हैं जिनको आगे लाके उनको जीआई टैगिंग करा के उनके उत्पादन को बढ़ा के और उनको एक बड़ा बाजार दिया जा सकता है। और उसके लिए ये जरूरी है कि वहाँ जो छोटे समूह हैं, हमारे जो किसान समूह जिनको आजकल पूरे भारत सरकार और पूरी राज्य सरकार भी जिनको पूरा महत्व देते हैं और उनके माध्यम से किसानों तक पहुंचने का एक प्रयास है, तो ये किसान समूह एक बहुत बड़ा रोल इसमें कर सकते हैं, जो हमारे किसानों को बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर लाके और जो हमारी इस तरह की जो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं उनको, जैसे कि बजाज साहब ने कहा कि इसमें जल्दी से अपना ये प्रयास करें किसान लोग, अगर कोई उत्पाद उनके आसपास के एरिया में, उनके जिले में, उनके तहसील में, या कोई जरूरी नहीं है, कुछ हो सकता है कुछ 10-12 गांव ही हो जहां पे वो विशेष रूप से वो कोई उत्पाद होता है, वो उत्पाद फल का हो सकता है, वो उत्पाद किसी सब्जी का हो सकता है, वो उत्पाद किसी अन्न का हो सकता है। जैसे अगर आप आपकी सूचना के लिए मैं बताऊं, एक भालिया गेहूं है, अब वो भावनगर जिले के थोड़े से कुछ एरिया में भालिया गेहूं के नाम से उसका बहुत बड़ा महत्व है, उसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी अलग है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा, हाँ बाद में अगर हमें उसको एक्सपेंड करना है, उसका निर्यात करना है, तो वाकई में हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादकता को ज्यादा लाना पड़ेगा, लेकिन जीआई करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने आसपास हमारे किसान भाई खास तौर पर और जो हमारे किसान समूह है वो ये सुनिश्चित करें अपने आसपास के एरिया में यदि कोई विशेष उत्पाद है तो उसको जीआई के लिए आगे लेकर आए ताकि कालांतर में आने वाले समय में वो उसका पूरा लाभ उठा सके।
0: बिल्कुल, तो जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि भावनगर का एक भालिया गेहूं है, अगर हमारे किसान उस छोटे से क्षेत्र में ही, उस दायरे में ही ना रहकर विश्व स्तर पर उसे बढ़ाना चाहते हैं तो जीआई टैगिंग की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, इससे ना केवल आपके क्षेत्र को एक पहचान मिलेगी, पूरे विश्व स्तर पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश को एक अलग पहचान मिलेगी और साथ ही साथ फायदा पूरे देश को होगा, आपको भी होगा। तो जीआई टैगिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब हमारे किसानों को ये समझने की जरूरत है।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
5: आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।
0: जीआई टैगिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे देश को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलवा सकती है। इसके लिए अब हम सभी को आगे बढ़ना होगा। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ यहां पर उपस्थित हैं, आइए उनसे और जान लेते हैं। ऐसे में हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं जानना चाहूंगी यहां पर डॉक्टर बजाज से। डॉक्टर बजाज, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि जीआई टैगिंग जो है प्रसंस्कृत उत्पादों की भी की जा सकती है। अभी तक किसान अलग अलग उपज की यहां पर जीआई टैगिंग कर रहे थे, लेकिन अगर प्रसंस्कृत उपज यहां पर लेकर आते हैं, उत्पाद लेकर आते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया कोई अलग है या फिर वही प्रक्रिया रहेगी?
3: वही प्रक्रिया
0: जी।
3: जैसे मिठाइयां हैं, कई हमारी विशेष मिठाइयां हैं, उनका जीआई टैग है। बहुत सी ऐसी मिठाइयां जिनका तो जीआई टैग हुआ ही नहीं है, और बहुत सी जरूरत है, क्योंकि ऐसी विशेष जगह चीजें हैं जिनका हम लोग अब जानते हैं। हम रोजमर्रा में बात करते हैं कि उस जगह की ये चीज बड़ी मशहूर है, वहां जाके हम लोग जरूर खाएंगे, टेस्ट करेंगे। तो ऐसी बहुत सी मिठाइयां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई हैं, उसकी प्रतिष्ठा है, अलग से प्रतिष्ठा है, उनको जो है वो जीआई टैग की आवश्यकता है। और जब जीआई टैग हो जाता है तो सबसे पहली तो एक मेरे को एक सेटिस्फेक्शन होगी कि अब ये उत्पाद मेरे ही क्षेत्र का, हमारे ही क्षेत्र का है, और उसको जो है वो जो भी आएगा हम कह सकते हैं कि ये हमारा उत्पाद है, इसी क्षेत्र विशेष से मिलता है। तो जो भी उपभोक्ता आ रहा है वो उस चीज को खरीदने में उसे भी सेटिस्फेक्शन होगी और हमें बेचने में आसानी होगी। और उसके बाद जो है वो हम लोग उसका प्रमोशन कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं कि ये उत्पाद इस जगह का है, विशेष जीआई उत्पाद है।
0: जब एक अलग पहचान मिल जाएगी तो उसके दाम भी काफी अच्छे मिलेंगे, तो इससे फायदा ही फायदा हमें सामने नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में कई तरह के कुछ बाधाएं भी होती हैं, तो राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। उपभोक्ताओं के साथ अगर किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी हो जाए या फिर ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो ऐसे में क्या किसी तरह का कोई कानूनी प्रावधान भी है?
1: बिल्कुल, हमारी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट के अंदर सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज दोनों हैं
0: जी।
1: उसमें जो जीआई ओनर होता है, जो कस्टोडियन होता है, उसको राइट दिया गया है कि वो कोर्ट में जाके एक इन्फ्रिंजमेंट एक्शन फाइल करे, और उसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। और इन्फ्रिंजमेंट के भी काफी फॉर्म्स होती हैं कि एक प्रोडक्ट जो कि जीआई प्रोडक्ट नहीं है वो मार्केट में पास ऑफ कर रहा है एज ए जीआई प्रोडक्ट। तो वो जैसे बनारसी साड़ी का एग्जांपल है
0: जी।
1: बनारसी साड़ी जैसे मेड इन चाइना हिंदुस्तान में बिक रही है, लेकिन बनारसी वो जो है बनारसी साड़ी की जीआई का इन्फ्रिंजमेंट होगा, और उसमें जो है सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और क्रिमिनल रेमेडी भी जो है अंडर द एक्ट काफी स्ट्रिक्ट है, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस मानी गई है। उसमें जो है पुलिस जो है विदाउट एनी एनेबलिंग पावर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट वो अरेस्ट भी कर सकती है, इसमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो हमारा जीआई एक्ट काफी स्ट्रांग है और काफी मॉडर्न है, और उसमें जो प्रोविजंस हैं अगर जीआई ओनर उनको एनफोर्स करे तो हमारे कोर्ट जो हैं काफी फोर्थ राइट है। इनफैक्ट एक एग्जांपल दूंगा, स्कॉच विस्की एसोसिएशन हिंदुस्तान में 1980 से इंफ्रिंजमेंट एक्शंस फाइल कर रही है, और उन्होंने जो है एक तरह से बॉडी ऑफ केस लॉ बनाई है। अगर हम जीआई लॉ के बारे में हिंदुस्तान में देखते हैं तो SWA स्कॉच विस्की एसोसिएशन ने जो कंट्रीब्यूट किया है केस लॉ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो आज तक बहुत यूजफुल रहा है
0: जी। बिल्कुल, तो काफी यहाँ पर देखिए कानूनी प्रावधान भी हैं, अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा धोखाधड़ी भी हो रही है तो आपको यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल सहयोग के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। बिल्कुल, जीआई टैगिंग लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फायदेमंद साबित हो सकती है हमारे संगठनों के लिए, हमारे किसानों के लिए, एक क्षेत्र की एक नई पहचान बनाने के लिए। तो अंतिम सवाल मैं तीनों से ही एक बार लेना चाहूंगी, उनकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, किसानों की आय को दोगुना करने में ये जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगी?
2: देखिए अदिति, ये बहुत ही अच्छे बात आपने उठाई, क्योंकि भारत सरकार विशेष रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार इस बात को इंगित करते हैं कि हमें किसानों की आय को बढ़ाना है
0: जी।
2: उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी उत्पाद वो करें वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो
0: जी,
2: और अगर वो जीआई टैग है तो निश्चित रूप से उनकी आय में वृद्धि होगी होगी
0: जी।
2: लेकिन किसी भी जीआई उत्पाद का जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके मन में, उनके दिमाग में उस जीआई उत्पाद के बारे में सही बात बैठना बहुत जरूरी है
0: जी।
2: और इसके लिए मैं कहूंगा कि हमारा जो ट्रेसिबिलिटी सिस्टम है
0: जी,
2: वो एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है। किसी भी उत्पाद का अगर हम हमारे कंज्यूमर तक
0: जी,
2: उसको ट्रेसिबिलिटी से बता पाए कि देखिए ये उत्पाद है, ये यहां से चला, यहां पैदा हुआ और उसके बाद यहां गया और उसका यहां प्रोसेसिंग हुई, यहां पैकिंग हुई और यहां जाके वो कंज्यूमर के तक पहुंचा, अगर हम ये निश्चिंतता अगर हम अपने कंज्यूमर को दे पाए तो निश्चित रूप से
0: वो खरीदेगा ही और लाभ हमारे
2: और लाभ
0: सीधा हमारे किसानों को मिलेगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपसे भी हम टिप्पणी लेना चाहेंगे, किसानों की आय को दोगुना करने में जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगा।
1: मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्शन है अगर हम इंक्रीज करने पे फोकस करेंगे
0: जी,
1: उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना की जाए
0: जी,
1: क्योंकि जीआई प्रोडक्ट्स जो हैं हिंदुस्तान की इमेज है वर्ल्ड में, अगर हम क्वांटिटी के पीछे भागेंगे और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो बदनाम हमारे देश का ही होता है। इसलिए दोनों क्वांटिटी एंड क्वालिटी को साथ साथ चलना बहुत जरूरी है और इसीलिए जो है जीआई प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन इतनी हाई नहीं होती क्योंकि उनका रीजन लिमिटेड होता है,
0: पर क्वालिटी यहाँ पर बहुत क्वालिटी मायने रखती है।
1: गुणवत्ता
0: अगर अच्छी है आपके उत्पाद की तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर अच्छा दाम मिलेगा ही मिलेगा, और जीआई टैगिंग हो गई है तो ये सोने पर सुहागा साबित हो जाता है। डॉक्टर बजाज, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए क्या संदेश है आपका।
3: सबसे पहले आपको उदाहरण दे दें, जैसे एक बलिया गेहूं की बात की गई जो घरेलू बाजार में बिकता है, प्रीमियम पे बिकता है, हमने एक्सपोर्ट किया और वो भी प्रीमियम पे किया, क्यों? क्योंकि वो जीआई टैग

0: जा रहे हैं, प्रीमियम मिलता है, आय में वृद्धि तो अवश्य होती है,
1: यहाँ पर
0: इसीलिए इसका हम बड़ा प्रमोशन करने की बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो जीआई टैगिंग देखिए कुल मिलाकर काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। आय में वृद्धि एक विशेष पहचान, और अगर हम क्वालिटी पर ध्यान देते हैं तो और भी ज्यादा हमारे लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। बिल्कुल, तो देखिए जीआई टैगिंग की ओर आप अपने कदम जरूर बढ़ा सकते हैं, हमारी सरकार की ओर से भी यहाँ पर आपको पूर्ण सहयोग देने के लिए सभी तैयार बैठे हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।
3: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पूरी परिचर्चा, कितनी बड़ी परिचर्चा इस कार्यक्रम के माध्यम से, खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से हमने सुनी है और जाने हैं कि किस तरीके से जीआई टैगिंग की जाती है और किस तरीके की फसलों में जीआई टैगिंग की जाती है, कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें जीआई टैगिंग और किस तरीके से कानून क्या कहता है, सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने प्रस्तुत की है। हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और इसका लाभ जरूर लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से हम जीआई टैगिंग से लाभ ले सकते हैं, आने वाले समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो ये सारी बातें हम कार्यक्रम खेतीबाड़ी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं, कोशिश करते हैं वो छोटी छोटी बातें हमारे किसान साथियों तक पहुंचे जो उनके लिए बेहद जरूरी है। तो यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी साथ साथ में केबीके में जाकर वहां पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का, आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
3: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
5: आज के कलाकार के इस मंच पर दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसा जानते हैं ये मंच है नए गायकों का, नई गायिकाओं का, नए टैलेंट्स का, और मुझे बहुत खुशी है आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में है मालविका दास मैम तिनसुकिया आसाम से। आपका बहुत बहुत स्वागत है दास मैम। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, आप क्या करते हैं, कहाँ हैं आप?
6: जी धन्यवाद, मैं मालविका दास तिनसुकिया आसाम से आप सभी का दिल से साधुवाद। मेरा खुद संगीत महाविद्यालय है जिसका संचालन मैं खुद करती हूँ और तिनसुकिया में ही रहती हूँ।
5: दोस्तों आपने सुना, मालविका मैम एक संगीत विद्यालय चलाती हैं। हम लोग तो इधर से उधर से किसी तरीके से संगीत सीखते हैं, लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे बीच में एक संगीत की टीचर भी है जो दरअसल हमें कई बारीकियां भी बता पाएंगी संगीत के बारे में। बहुत खूब, बड़ी ही शानदार बात मैम, थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को मालविका मैम के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत बहुत ही प्यारा गीत मैम, थैंक यू सो मच। मैम आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: मेरा बचपन से ही संगीत में रुझान रहा है, जिसको देखते हुए मेरे माता पिता ने मुझे अवसर दिया और मैं यहाँ तक पहुंच पाई। जी
0: तो बचपन से ही आप संगीत में जाना चाहते थे, आपका सपना था कि आप गायिका बने, और
1: जी।
0: मैं आपको बहुत बहुत खुशकिस्मत मानूंगा, आपका सौभाग्य है कि आपको वही दिशा आपको दिखाई भी गई, आपके माता पिता ने आपको सहायता दी और आज आप एक संगीत विद्यालय चला रहे हैं। इससे बहुत बढ़िया और बात हो भी कह सकती है, बहुत खूब दोस्तों। तो चलिए फिर एक संगीत विद्यालय को एस्टैब्लिश करने वाली मैम मालविका मैम की ही आवाज में सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा संगीत।

0: बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया मैम। आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि यूं तो अब आप एक संचालिका हैं, टीचर हैं, लेकिन आपके फेवरेट टीचर कौन रहे और क्यों?
1: वैसे तो मेरा शिक्षक शिक्षकों से काफी लगाव रहा है,
0: जी
1: क्योंकि काम के प्रति मैं हमेशा ईमानदार रही हूँ। जहाँ तक पसंदीदा शिक्षकों की बात है तो वो है मेरी माँ।
0: जी
1: माँ है जो पल पल मुझे सलाह देती रहती है।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपनी माँ का नाम हमें बताएं?
1: मेरे माँ का नाम कल्याणी घोष।
0: जी, कल्याणी घोष माँ।
1: जी
0: तो दोस्तों, आपने सुना, सबसे अच्छी टीचर मालविका मैम की जो है वो उनकी माँ है। यूं तो हम सब की टीचर सबसे पहली माँ ही होती है, लेकिन कितनी बार हम अपनी माँ को, माँ दूर भी होती है तो कितनी बार हमने अपना फोन उठाया और माँ को बोला, माँ मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। क्या बात है भाई, वाह मालविका मैम, आपके कहने से मुझे मेरी माँ याद आ गई। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगला गीत जो मैं मालविका मैम की माँ को ही समर्पित करूंगा।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। आगे बढ़ते हुए मैम आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसे कौन से तीन शब्द हैं, वर्ड्स हैं, जो आपको सबसे अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, आपकी परिभाषा बताते हैं, ऐसे कौन से तीन शब्द आप इस्तेमाल करेंगी अपने को बताने के लिए?
1: जी, मेरे जीवन को जो सबसे अधिक परिभाषित किया वो है लक्ष्य, गोल।
0: जी।
1: दूसरी है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, कड़ी
0: जी,
1: मेहनत। थर्ड वाला है हार्ड वर्क, मेहनत।
0: मेहनत,
1: जी
0: भाई वाह, क्या बात है, बड़े ही खूबसूरत तरीके से तीन शब्द मालविका मैम ने बताए। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए ना एक गीत भी सुनते हैं मालविका मैम की ही आवाज में।

0: बहुत खूब, बड़ा ही प्यारा गीत। मैम, अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार कोई भी खाने की चीज आपने क्या बनाई थी और वो कैसी बनी थी?
1: चलिए, जो सबसे पहले मैं बनाने की बात है तो वो मैंने सबसे पहले चाय बनाई थी,
0: ओह,
1: टी। हाँ, लेकिन चीनी डालना भूल गई थी।
0: अरे वाह, ओके ओके।
1: चाय बनाई लेकिन चीनी डालना भूल गई थी।
0: जी तो
1: जी,
0: ये कब की बात है मैम? आप,
1: ये मैं स्कूलिंग का टाइम में, तब मम्मी बोली थी कप चाय बना के लाओ, सबको खिलाओ
0: अच्छा,
1: खिलाओ। तो मैंने बहुत उत्सुकता से बनाई थी। मैं, मेरे पापा ऑयल इंडिया में नौकरी करते थे, तो
0: जी
1: हम लोग का मतलब ऐसे गैस थे, मतलब लाइन गैस बोलता है, तो उसमें हमने चाय बनाई। फिर बहुत एक्साइटमेंट, मैंने चाय बनाऊंगी सबको पिलाऊंगी, फिर उसमें मैंने चीनी डाला नहीं, लेकिन सबने पी लिया, बहुत टेस्टी हुआ। बोला बाद में मैं पी के देखी, तो इसमें चीनी है ही नहीं।
0: ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कितना अच्छा, अजीब सा लगा होगा, लेकिन मजा भी आया होगा। मम्मी पापा ने डांटा भी नहीं होगा कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है ऐसा। जी जी, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं प्यारा सा गीत मैम की ही आवाज में।

0: आपको थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए मालविका मैम आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए।
1: जहां तक मेरी हॉबीज की बात है तो मैं बताना चाहूंगी कि सुबह उठना
0: जी,
1: बागवानी के देख रेख करना, मैं गार्डनिंग करती हूँ, मेरा शौक है, और खाना बनाना और गाना गुनगुनाना, सारा दिन मैं गाना गुनगुनाती रहती हूँ।
0: बहुत खूब, वेरी नाइस
1: जी,
0: बहुत बढ़िया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं मालविका मैम की ही आवाज में।

0: बहुत प्यारी बात। मैम पूरे दिन में हम लोग सारा काम करते रहते हैं, आप भी करते रहते हैं, सारी दुनिया चलती रहती है, क्या कुछ किसी भी दिन में डेली रूटीन में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका मूड खराब हो जाए? कौन सी ऐसी चीज होती है जो आपका मूड खराब कर सकती है किसी भी दिन?
1: मूड खराब ऐसे तो कभी होता नहीं, मूड खराब मैं हमेशा कभी कभी होता है, जैसे कि मैं जब स्टूडेंट स्टूडेंट को सिखाती हूँ, स्टूडेंट को लेके बैठती हूँ, तो उन लोग को मैं जब होमवर्क नहीं करता, जैसे कि मैंने बोल दिया आज ये लेसन करके आओ तुम लोग गा के बताओ, तो कई कई आजकल के बच्चे तो करते ही नहीं बहुत काम, तो तब मेरा मूड बहुत खराब हो जाता है, तो मैं बोलती हूँ मैं आज नहीं सिखाऊंगी तुम लोग चले जाओ, उसी में मुझे मूड खराब हो जाता है। जी
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं समझ गया आपकी बात। सवाल दरअसल बिल्कुल सही था कि ऐसी कौन सी बात होती है जिसकी वजह से आपका मूड खराब हो जाता है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब स्टूडेंट्स को जो असाइनमेंट दिया है वो अगर नहीं होता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। आपने अच्छा बिल्कुल लगता। बिल्कुल ठीक कहा, बहुत खूब। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: मैम, आज तक की जिंदगी में, मतलब टिल टुडे, आपकी जो भी पूरी जिंदगी में सबसे अच्छी अकॉम्प्लिशमेंट, आपको क्या लगता है कि ये सबसे अच्छा मेरे को जिंदगी में मिला, मैंने पा लिया? जैसे कुछ लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने का सपना सोचते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज या आर्मी में जाने का, या कोई अवार्ड लेने का, या कोई शील्ड जीतने का। तो ऐसा कौन सा अकॉम्प्लिशमेंट आपको आपकी जिंदगी में सबसे अच्छा हुआ है, जहां आपको लगा हो बस मेरी जिंदगी का ये सबसे अच्छा दिन है?
1: हाँ, एक समझ गई मैं अभी।
0: जी
1: एक्चुअली मैं जब एक बार मैंने एक बड़ा आर्टिस्ट के साथ मैं रिकॉर्डिंग किया था,
0: जी
1: जो हमारे आसाम की जुबिन गार्ग सर से, मैं उनके साथ मैंने एक गाना गाई थी। तब मैं बहुत नर्वस भी थी, तो मैं खुद को भी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उनके साथ गाना गाने का मुझे मौका मिला है। तो उसी टाइम उसके बारे में मैं बोल सकती हूँ, गौरवपूर्ण उपलब्धि था मेरा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया मैम। आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आप सपनों में विश्वास रखते हैं? रात को सोते हुए देखने वाले सपने और खुली आंखों से देखते हुए अपने उन सपनों को पूरा करने वाले सपने?
1: जी जरूर। लेकिन उस सपनों में नहीं जो रात को सोने में आती है वो,
0: जी
1: बल्कि उस सपने में विश्वास करती हूँ जो दिन में दिखे जाए।
0: अरे वाह जी,
1: जी
0: उन सपनों में आप विश्वास रखते हैं, क्यों, ऐसा क्यों?
1: रात का सपना में मैं विश्वास नहीं करती, मतलब सपना में तो सपना तो आते ही रहते कुछ ना
0: जी
1: कुछ,
0: जी जी जी
1: लेकिन जो दिन में जो हम लोग का शुरुआत करते हैं दिन का, वो मतलब मैं उसको मैं विश्वास करती हूँ। जो आज मुझे ये करना है वो करना है, जो मैं सोचती हूँ मुझे वही करना है, कैसे काम करना है कैसे चलना है, वही मैं उसी में मैं विश्वास रखती
0: ओके बहुत बढ़िया।
1: हूँ।
0: तो दोस्तों आपने सुना कि मालविका मैम उन सपनों में विश्वास रखती हैं जिनको पूरा करने के लिए उनको मेहनत करनी होगी। क्या बात है, बहुत
1: जी
0: बढ़िया। चलिए एक प्यारा सा गीत सुना दीजिए। मालविका मैम जी की आवाज में सुनते हैं, आइए दोस्तों ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया मैम, मुझे बताए ना कि आपकी जिंदगी में अभी तक का सबसे अच्छा गिफ्ट आपको क्या मिला है और किसने दिया है?
1: वैसे तो बहुत तोहफा मिला है,
0: जी
1: लेकिन सच्चा तोहफा तो वो है जो एक मित्र बुरे समय में खैरियत पूछे और आश्वासन देते रहे कि घबराना मत, मैं हूं ना।
0: अमेजिंग, बड़ी ही खूबसूरत बात कही आपने, बड़ी ही प्यारी बात कही कि ऐसे समय में जब इस वक्त हम बहुत कभी कभी परेशान महसूस करते हैं, शायद कमजोर भी महसूस करते हैं, कोई हमारा दोस्त, कोई हमारा जानने वाला आपको, आपसे बात करता है, आपको महसूस कराता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, उसी से बहुत ताकत मिल जाती है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, फिर एक और प्यारा संगीत सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया मैम, हम अपने प्रोग्राम की उस जगह पर आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए और जो नए सिंगर्स आ रहे हैं और जो सिंगिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए कुछ कहिए।
1: जी, मैं सबको धन्यवाद कहती हूँ जो मेरा गाना आप लोगों ने सुना है
0: जी।
1: और आप सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि एक बार सुनने के बाद कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा।
0: बहुत बढ़िया जी। दोस्तों देखिए, बहुत ही छोटा सा बिल्कुल क्रिस्प मैसेज है मालविका मैम का कि सुनने के बाद बताएं जरूर कि कैसा लगा, जिससे कि फीडबैक हो तो हम अपनी प्रतिभा को और सुधार सकें, कोई गलती हुई है तो उसको ठीक कर सकें। ये एक बहुत बड़ा काम होता है। थैंक यू सो मच मालविका मैम हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू
1: थैंक यू थैंक यू।

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। आज के कलाकार के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का वापस बहुत बहुत स्वागत है और आज जो कलाकार, जो टैलेंट, जो सिंगर हमारे साथ हैं उनका नाम है अनुभा जी। बाकी अनुभा जी अपने बारे में खुद बताएंगी, अपने बारे में वो डिस्क्राइब करेंगी कि वो क्या पर्सनालिटी हैं, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं। तो अनुभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू आवर प्रोग्राम।
1: थैंक यू सो मच समीर जी।
0: तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, अपना इंट्रोडक्शन दें। आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं?

0: करते हैं?
1: जी जरूर समीर जी, मेरा नाम अनुभा है। मैं बेसिकली रहने वाली रांची की हूँ, बट मैं पिछले 18 सालों से बैंगलोर में रहती हूँ। मैं एक होम मेकर हूँ और मेरा एक छोटा सा परिवार है, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, तो बस हम तीनों ही हैं जो यहाँ रहते हैं। और फिलहाल तो मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, बेटी के कहने पर जॉब छोड़ दी है, तो आई एम वेरी सैटिस्फाइड बीइंग अ होम मदर।
0: अमेजिंग, दैट्स वेरी वेरी नाइस अनुभा जी। होम मेकर होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड। सभी लोग मानते हैं इस बात को, जानते हैं, कई बार बस इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई उन्हें अपने दिल के अंदर मालूम होती है। बहुत बढ़िया, तो दोस्तों आपने सुना, चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को अनुभा जी के ही गाए हुए इस बेहद बेहद प्यारे से नगमे से।

0: खूब। अनुभा जी चलिए बचपन में चलते हैं, आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: बचपन में मुझे पढ़ने का काफी शौक था, तो मैंने सोचा था कि मैं पीएचडी करना चाहती थी। और फिर कहीं एक, क्योंकि घर में गाने बजाने का माहौल काफी था, तो मैं सिंगर भी बनना चाहती थी। तो एमबीए किया था और उसके बाद मैंने सोचा था ह्यूमैनिटीज के स्ट्रीम में ही पीएचडी करूं, बट उसके पहले मेरी शादी हो गई और फिर मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई, तो पीएचडी का भी सपना रह गया और सिंगर तो मैं बन नहीं पाई, बट हाँ शौक के लिए जरूर गाना गाती हूँ।
0: बहुत खूब अनुभा जी, बहुत खूब। वैसे तो देखिए अनुभा जी, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, मोटिवेट करना चाहूंगा कि आप पीएचडी करना चाहती थी और ह्यूमैनिटीज के किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहती थी, तो अब कर लीजिए, इसमें क्या फर्क पड़ता है। आप होम मेकर है, मैं मानता हूं वक्त कम मिलता होगा, लेकिन फिर भी आप अपने आप को अगर मैनेज करें तो वक्त भी मिल जाएगा। कोशिश करें, पीएचडी भी हो जाएगी। बहुत खूब दोस्तों, आपने सुना अनुभा जी पीएचडी भी करना चाहती हैं। चलिए सुनते हैं एक प्यारे से गीत को अनुभा जी के ही गाए हुए।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। अनुभा जी, बचपन की बात हो रही है, आपके कोई फेवरेट टीचर रहे हैं? कौन थे वो और क्यों?
1: जी, मेरे दो फेवरेट टीचर्स हैं मुझे, जो अभी तक याद रह गए हैं। एक जो मेरी नर्सरी की टीचर थी, शायद उन्होंने शेप अप किया मुझे, स्कूल में इतने आराम से ढाला, तो उनका नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी, मिसेस नुपुर घटक
0: जी।
1: और एक मेरे नाइन्थ के और टेंथ के मैथ्स के टीचर, मैथ्स जो इतनी टफ सब्जेक्ट मानी जाती है, उन्होंने इतना इजी बनाया कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ
0: बहुत
1: और काफी अच्छे स्कोर भी आए। तो वो बहुत ही इन दोनों को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और यहाँ तक कि मैं अभी तक इस एज तक मैं उनसे टच में हूँ।
0: वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपने सुना, अनुभा जी के दो फेवरेट टीचर्स हैं। तो अगला गाना जो हम पेश कर रहे हैं, अनुभा जी की ही आवाज में गाया हुआ, इन दोनों टीचर्स को डेडिकेट करते हुए।

0: बहुत बढ़िया अनुभा जी, आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से तीन वर्ड्स हैं, कौन से तीन ऐसे शब्द हैं जो आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, आपको बयान करते हैं?
1: मुझे लगता है मैं काफी केयरिंग हूँ और थोड़ी सी चिल्ड आउट हूँ और काफी लविंग हूँ। ये मेरी फैमिली भी या मेरे दोस्त या मेरे पड़ोसी भी इस बात की गवाही दे देंगे कि ये तीनों ट्रेट्स मुझे लगता है ये मुझ में है डेफिनेटली।
0: ओके, वेरी नाइस। ऑल दीज थ्री वर्ड्स आर वेरी वेरी क्यूट एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट, बहुत ही अच्छे शब्द। तो दोस्तों, आपने सुना कितनी खूबसूरती से अनुभा जी ने अपने आप को डिस्क्राइब किया है। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अनुभा जी की ही आवाज में।

0: बहुत बढ़िया अनुभा जी, एक फन क्वेश्चन। अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार खाने की चीज कोई भी आपने क्या बनाई थी और वो कैसी बनी थी?
1: खाने की चीज तो नहीं बनाई थी, मेरी दादी मुझे किचन में जाने नहीं देती थी। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ कि जब बोला जाता है लड़कियों को खाना बनाना सिखाओ या ऐसा कुछ, मेरी दादी इसके अगेंस्ट थी और वो मुझे कभी किचन में उन्होंने जाने नहीं दिया। तो काफी जद्दोजहद के बाद मैंने पहली चीज जो बनाई थी वो चाय थी और वो लोगों को काफी पसंद आई थी, स्पेशली मेरे चाचू को काफी पसंद आई थी, तो यही एक पहली चीज मैंने बनाई।
0: Isn't that very nice, very cute? बहुत खूब। दोस्तों, इस बात को एक्सेप्ट करना कि ठीक है, कौन सी चीज हमने हमारी जिंदगी में पहली बार बनाई थी खाने की चीज, दैट इज वेरी फनी, यू नो, बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है और एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी मिलता है उसमें और मजा भी आता है। तो आपने सुना अनुभा जी ने पहली बार क्या बनाया। चलिए एक बहुत खूबसूरत सा गीत भी सुनते हैं अनुभा जी का ही गाया हुआ।

0: अनुभा जी, थोड़ा सा आपको और बेहतर समझने के लिए आपसे पूछना चाहूंगा कि जब भी आपको थोड़ा वक्त मिलता होगा, आप कौन सी हॉबीज परस्यू करती हैं? सिंगिंग के अलावा कौन सी हॉबीज हैं आपकी?
1: जी, सिंगिंग तो एक काफी बड़ा शौक है और एक्चुअली एक थेरेपी है मेरे लिए। सिंगिंग के अलावा मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। पहले तो मैं सिर्फ नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़ती थी, अभी कुछ दिनों से कभी कोई फिक्शनल अच्छी बुक मिल गई तो मैं वो भी पढ़ लेती हूँ। मुझे बस बातें करना काफी पसंद आने लगा है और तो वैसे कुछ स्पेशल मुझे और कोई मेरी हॉबीज नहीं है। मुझे स्केचिंग करना पसंद है, मैं स्केच कर लेती हूँ कभी।
0: ओके ओके, वेरी नाइस। तो इसी बात को जरा सा आगे बढ़ाते हुए मैं बस पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है?
1: रोड टू कांदाहार मैंने एक पढ़ी थी, एक नॉन फिक्शनल बुक है रोड टू कांदाहार। ये मुझे काफी ग्रास्प करके रखी इस बुक ने और जब तक वो फिनिश नहीं हुई मुझे लगा पता नहीं कुछ तो है जो रुक गया है, थम गया है, तो वो बुक मुझे काफी पसंद आई थी।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस बुक, रोड टू कांधार, वेरी नाइस बुक, बहुत खूब। दोस्तों, आपने सुना अनुभा जी ने फिक्शन नॉन फिक्शन बुक्स को पढ़ने का भी शौक शुरू किया और नाउ शी इज अ वेरी गुड रीडर, वोरिशियस रीडर। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अनुभा जी का ही गाया हुआ।

0: बहुत बढ़िया अनुभव जी। कई बार चलते चलाते हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि कोई परेशानी, कोई बाधा, कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिससे हम हमारी खुशी के रास्ते में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। रेगुलर रूटीन में कोई ऐसे डिस्टर्बेंसेस हैं जो आपको परेशान करके जाते हों?
1: जी नहीं, ऐसी तो कोई बाधा मुझे दिखती नहीं है। काफी सपोर्टिव फैमिली है, मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव हैं। और कुछ दिनों तक, क्योंकि मेरी बेटी है तो उसके उसके देखभाल में थोड़ा समय का कम अभाव रहता था, बट फिलहाल वो भी अब बड़ी हो चुकी है, खुद की पढ़ाई उसकी है, तो अभी ऐसी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं मुझे दिखती है कि मुझे किसी भी चीज को करने में टाइम निकालना या रोकना, ऐसा मुझे नहीं लगता।
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। हम सभी ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि बस ऐसा ही रहे, कोई भी चीज ऐसी ना आए आपकी जिंदगी में जो आपकी खुशी को डिस्टर्ब करके जाए।
1: थैंक यू।
0: तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अनुभा जी का ही गाया हुआ।